मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 42 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पूर्व दिशा से बिखरती स्वर्णिम किरणें, पंछियों की घुंघरुओं से धुन, शीतल पवन के साथ सुबह की बेला, प्रकृति के अद्भुत और शांत सौंदर्य में चार चांद लगा रही है और संदेश दे रही है कि नव जीवन नव ऊर्जा के लिए उठो, जागो और कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो। हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। हमारे श्रोता अपनी दिनचर्या के साथ ही रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है देश दुनिया की गतिविधियों को जानने का। तो देर कैसी, प्रातः के 6 बजने वाले हैं। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो और सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में

0: इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर आइए सुनते हैं डॉक्टर सिया राम कन्नौजिया से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में सुगंधित धान उत्पादन की योजना बनाए हैं, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा बलरामपुर से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर सियाराम कन्नौजिया साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां सुगंधित धान उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
3: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि किसान भाई परंपरागत तरीके से सामान्य धान की खेती करते हुए चले आ रहे हैं, उसमें समय पे मजदूरों की उपलब्धता ना होना और क्रांतिक निवेशों का अत्यधिक महंगा हो जाना और लाभकारी मूल्य ना मिल पाना, इससे जो सामान्य धान की खेती है वो आज किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसान भाई सुगंधित धान की खेती करते हैं तो उनको उससे अच्छा लाभ मिल सकता है।
2: तो उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं डॉक्टर साहब, जो चुन सकते हैं?
3: देखिए, किसान भाइयों को बताना है कि उन्नत प्रजातियों में सुगंधित धान की जो बासमती समूह की कुछ प्रजातियां हैं और कुछ प्रजातियां जो हमारे लोकल जो हमारे क्षेत्र विशेष की हैं, जिसमें काला नमक की हैं, अच्छी प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों का चयन करके वो अपने खेत में उसको लगा करके उससे अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा लाभ कमा सकते हैं, जिसमें बासमती ग्रुप में पूसा बासमती 1 है, पूसा सुगंध 1, पूसा सुगंध 2, 4, पूसा सुगंध 5, इस तरह की कई ऐसी बासमती ग्रुप की प्रजातियां हैं, जिसमें कुछ काला नमक की नई प्रजाति जो अभी पिछले 2 सालों से वो रिलीज हो चुकी है और वो आई है, जिसे वो बौना काला नमक है, जिसमें पूसा नरेंद्र काला नमक 1 और पूसा काला नमक CRD2, ये बौनी काला नमक है। ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है और ये शॉर्ट स्टेचर होता है इसका, लंबी नहीं होती है और एक लॉजिंग भी नहीं होती, गिरती भी नहीं है और लगभग 4 क्विंटल बीघे जो है इसका उत्पादन भी हो जाता है।
2: अगर एकड़ में बात करें तो?
3: एकड़ में बात करते हैं तो कम से कम जो है 20 क्विंटल प्रति एकड़ उपज इसकी प्राप्त हो जाती है।
2: तो जो काला नमक और बासमती ग्रुप की प्रजातियां हैं सुगंधित धान की डॉक्टर साहब, उनकी खासियत क्या आप महसूस करते हैं जो नई प्रजातियां हैं?
3: देखिए, जो हमारी काला नमक की जो नई प्रजाति है उसमें खासियत एक चीज़ आई, जो पुरानी हमारी काला नमक हुआ करती थी वो एक तो लंबी होती थी और लॉन्ग ड्यूरेशन की होती थी और आजकल उसमें एक समस्या आ रही है कि लास्ट में उसमें दाने भरने की समस्या हो रही, दाने नहीं भर पा रहे हैं उसमें और लॉजिंग की समस्या है,
2: यानी गिर जाती है
3: और ले दे करके उपज जो हमारी होती है वो बहुत ही कम होती है, 1-1.5 क्विंटल पर बीघे मान के चलिए, इससे ज़्यादा उपज नहीं हो पाती है, इसलिए जो है ये थोड़ा अब लाभकारी सिद्ध नहीं हो पा रही है। इसी का इम्प्रूवमेंट करके हमारे वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, रिसर्च करके ये दोनों प्रजातियों को निकाला है, ये सारी कमियाँ इसकी निकाल दी गई हैं, उपज भी अच्छी मिल रही है और अच्छी सुगंध भी मिल रही है इन दोनों प्रजातियों से।
2: डॉक्टर साहब, जो भी सुगंधित धान की उन्नत प्रजातियां हैं उनके नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है और कब तक नर्सरी पड़ सकती है अगर 1 एकड़ रोपाई के लिए करना है तो?
3: सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये मान लेना है कि जो सुगंधित धान की खेती अगर वो करने जा रहे हैं तो नर्सरी डालते समय उनको समय का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सुगंधित धान हमारा है और इस सुगंधित धान की बालियां जब 20 अक्टूबर के बाद में निकलती हैं तब जा करके उसमें जो है अच्छी सुगंध मिल पाती है। ऐसी परिस्थिति में उनको जो नर्सरी डालना है वो 15 जून से 30 जून तक नर्सरी डालना है उसमें, और रोपाई जो हो वो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक होनी चाहिए, तब जा करके आगे चल करके उनको 20 अक्टूबर के बाद जब उसमें बालियां निकलेंगी तो अच्छी सुगंध उनको मिलेगी उसमें।
2: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सुगंधित

0: धान के उन्नत कृषि तकनीक के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा बलरामपुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: स्वागत रहेगा सभी किसान भाइयों का। यदि उनको कोई अपने मन में शंका रह गई हो सुगंधित धान के बारे में, जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9450314371, 9450313471, 9450314371। हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे, जो किसान भाई ज़्यादा खेती करना चाहते हैं अपने धान की, ज़्यादा क्षेत्रफल उनके पास में है, उसमें कम से कम सुगंधित धान की खेती 1 एकड़ तो अवश्य रखें।
0: डॉक्टर सियाराम कन्नौजिया साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: ज्ञान के अनंत भंडार और हमारी संस्कृति का मूल आधार हैं वेद। वेदों का वैभव केवल प्राचीन इतिहास नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा, सदाचार और शाश्वत शांति प्रदान करने वाला दिव्य प्रकाश है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है वेदों में नारी का वैभव। वाचन स्वर डॉ. शिवा राकेश का।
3: वैदिक काल देवी उपासना से भरा पूरा है। सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से ये काल स्त्री आदर का है। यो देवी शक्तियां स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होती, लेकिन समाज अपने श्रद्धा भाव के चलते देवों को भी माया पिता कहता है। ऋग्वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं। ऋग्वेद में प्रत्येक सूक्त पर दृष्टा ऋषियों के नाम लिखे जाते हैं। ऋग्वेद और अथर्वेद में 25 ऋषिकाओं के नाम हैं। वे 422 मंत्रों की दृष्टा हैं। वागंभृणी, घोषा, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, शची, रोमशा, श्रद्धा, कामायनी, वैवस्वती आदि प्रख्यात ऋषिकाएं हैं। ऋग्वेद में लोपमुद्रा का कथन सारगर्भित है। सत्य की साधना करने वाले देवतुल्य ऋषियों ने भी संतति प्रवाह चलाया है। वे भी जीवन के अंत तक ब्रह्मचारी ही नहीं रहे बल्कि उनकी भी पत्नियां थीं। यहाँ गृहस्थ आश्रम की महत्ता है, संतति प्रवाह न रोकने की स्थापना है। एक मंत्र अगस्त्य का है कि हमने जीवन के तप साधनाओं पर विजय पाई है, हम दंपत्ति अब संतति प्रवाह में लगेंगे। यहाँ लोप मुद्रा ऋषिका है और वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। प्रत्यक्ष रूप में ये वार्ता व्यक्तिगत दिखाई पड़ती है, लेकिन इसकी स्थापनाएं दिशाबोधक हैं। लोप मुद्रा का जोर गृहस्थ आश्रम की दृढ़ता पर है, अगस्त्य का जोर तप साधना पर, लेकिन लोप मुद्रा और अगस्त्य का समन्वय प्रीतिकर है। वैदिक स्त्री कमजोर एवं शोषक नहीं, वो खुलकर बात करती है। लोपमुद्रा अपने ऋषि पति से भी संवाद करते समय खुलकर बोलती हैं। ऐसी ही एक ऋषिका है इंद्राणी। इंद्राणी का कथन है कि मैं मूर्धन्य और उग्र वक्ता हूँ। इंद्राणी अथर्ववेद की भी मंत्र दृष्टा ऋषिका है। यहाँ उनकी उद्घोषणा वैदिक काल से भी पहले के नारी सम्मान का यथार्थ दर्शन कराती है। वो कहती हैं, प्राचीन काल से ही नारी यज्ञों और महोत्सवों में भाग लेती रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी सभा एवं समितियां हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। सभा और समिति जैसी आदर्श संस्थाएं पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं। इसी से जान सकते हैं कि स्त्रियां गुणों की खान हैं। ऋग्वेद में ऋषिका रोमशा कहती हैं, जिस प्रकार गंधार की भेड़ रोमों से भरी होती है, उसी प्रकार मैं गुणों से भरपूर हूँ। ऋग्वेद में महिलाएं केवल ऋषिकाएं ही नहीं, यहाँ अनेक वीर महिलाओं के वर्णन भी हैं। विश्पला का पैर युद्ध में टूटा, अश्विनी देवी ने उसके कृत्रिम पैर लगाया। ऐसी ही एक योद्धा है मुद्गलानी। वह रथारूढ़ होकर युद्ध जीती, उस समय उनके वस्त्रों को वायुदेव ने संभाला। ग्रंथों और उपनिषद साहित्य में स्त्री विद्वानों के अनंत प्रसंग हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्री का सारगर्भित वाद विवाद सभी को पता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का प्रश्नोत्तर पठनीय है। गार्गी सभा नेत्री हैं, वैदिक स्त्री स्वाधीन है, वे पुरुष के सामने स्वाभिमानी हैं, वो मंत्र दृष्टा ऋषिका हैं, वो युद्ध में वीरवती हैं और यज्ञकार में बराबर की भागीदार हैं, वो देवोपासक हैं, बावजूद इसके वो मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करती। ऋग्वैदिक काल की स्त्री की स्थिति सम्मानजनक है और वे आदरणीय हैं। वैदिक काल की यही परंपरा पौराणिक काल तक अविच्छिन्न है। शिव पार्वती में पार्वती समतुल्य रूप में आदरणीय हैं, सीताराम में सीता माता हैं और श्रीराम कौशल्या, सुमित्रा के साथ कैकेयी को भी आदरणीय मानते हैं। पुराण काल की दुर्गा सप्तशती की समूची कथा ही देवी की पराक्रम।

0: गाथा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी सम्मान की उक्त उद्घोषणा विश्व समुदाय को भारतीय संस्कृति की ही देन है। भारतीय वांग्मय में हजारों नारी पात्र हैं जो उल्लेखनीय और पठनीय हैं। भारत मातृशक्ति आराधक राष्ट्र है। यहाँ गंगा माता है, गाय माता है, सिंधु माता है, वाणी माता है, नदियां माता है और वृक्ष भी माता ही है। सृष्टि का कड़कड़ यहाँ मातृ स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। भारत शब्द पुरुषवाचक है, लेकिन भारतीय अनुभूति में भारत भी माता है, पृथ्वी भी माता है, समस्त विद्याएं माता हैं और समूची स्त्री सृष्टि माता ही है। वैदिक काल की इस वैभवशाली परंपरा के प्रादुर्भाव की आज आवश्यकता है। आज नारी को भोग्या मान लिया गया है और कई बार उसका शोषण किया जाता है। जब तक हम इस मानसिकता को दूर नहीं करेंगे, तब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं संभव है। आने वाला समय संवेदना के विस्तार का है, जिसे केवल नारी में विद्यमान संवेदना से ही साकार किया जा सकेगा।
1: वेदों में नारी का वैभव, ये विषय था आज के सुविचार का। वाचन स्वर डॉक्टर शिबा राकेश का। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

दीप जले तो भक्ति जागे और सुर गूंजे तो मन भागे। प्रभु के भजनों की महिमा भक्तों के लिए विशेष है। प्रभु की शक्ति संगीत के हर धुन में, प्रभु का ही नाम है। हर सांस की लय में प्रभु का ही धाम है।

प्रभु राम की कथा इतिहास नहीं जीवन की दिशा है। प्रभु के कदम हमें याद दिलाते हैं कि व्यवहार में प्रेम, वचन में दृढ़ता और कर्म में शुचिता ही हम मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रभु राम नाम का स्मरण करें जो हर पीड़ा का समाधान है।

जिनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता का संदेश देता है और तीसरा नेत्र सत्य का प्रकाश, भगवान शिव जो शांत भी हैं और शक्ति भी, हर संकट में आश्रय भी हैं और हर समाधान का आरंभ भी शिव।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ 747 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 219 में चित्रकूट की सभा में भरत का प्रभु श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति प्रकट करने का प्रसंग।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को

सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे चतुरसेन और राजेंद्र काचरू। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ 747 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकारी शीत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट यानी एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अन्तर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35.1 संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़ पर। स्वास्थ्य ही मनुष्य की

ये सबसे बड़ी और सच्ची संपत्ति है, और अच्छी सेहत किसी जादू से नहीं मिलती है। अच्छी सेहत मिलती है अगर आप हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुनते हैं। इस कार्यक्रम में नीना सोनकर आप सभी श्रोताओं के लिए लेकर आती हैं नई जानकारियों का खजाना, जो आपकी सेहत को बनाए रखता है दुरुस्त। आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे गूलर, एक अनदेखा फल जिसमें है अनगिनत औषधीय गुण। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, हमारा आज का विषय थोड़ा सा अनोखा है, थोड़ा सा भुलाया हुआ लेकिन बेहद जरूरी और प्रभावशाली है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जो ना तो रोज की थाली में दिखता है, ना ही बाजार में हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन जब बात आयुर्वेद की हो, पारंपरिक ज्ञान की हो या देसी इलाज की, तो इसका नाम आदर से लिया जाता है। ये फल है गूलर, जिसे संस्कृत में उदम्बर भी कहा जाता है। गूलर एक ऐसा पेड़ है जो अक्सर गांवों में खेतों के किनारे या मंदिरों के पास पाया जाता है। ये बड़े पत्तों वाला घना और छायादार वृक्ष होता है। इसके फल देखने में कुछ कुछ अंजीर की तरह लगते हैं, लेकिन आकार में थोड़े बड़े होते हैं। हरे रंग के ये फल जब पकते हैं तो लाल या जामुनी हो जाते हैं और इनके भीतर छोटे छोटे बीज होते हैं। पर इसकी असली खासियत सिर्फ इसके फल में ही नहीं, बल्कि इसके पेड़ के हर हिस्से यानी कि पत्ते, छाल, दूध और जड़ इसमें छिपी है। आयुर्वेद में गूलर को एक संपूर्ण औषधि के रूप में देखा गया है। ये फल पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला, रक्तस्राव रोकने वाला और कई प्रकार के त्वचा रोगों में लाभदायक माना गया है। जिन लोगों को बार बार दस्त या आंतों की सूजन की शिकायत रहती है, उनके लिए गूलर के फल या इसके चूर्ण का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। ये आंतों की झिल्ली को शांत करता है और पाचन क्रिया को संतुलित करता है। खासकर गर्मियों में जब पेट की बीमारियां बढ़ जाती है, तब ये फल शीतलता भी देता है और शरीर को पोषण भी। श्रोताओं, इसके अलावा गूलर के फल का सेवन रक्त शुद्धि के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों को फोड़े, फुंसी, मुहासे या त्वचा पर बार बार जलन की शिकायत होती है, उनके लिए गूलर औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी छाल और दूध का उपयोग पुराने घाव भरने, मस्से सुखाने और मुंह के छालों में भी किया जाता है। कई बार पुराने वैद्य गूलर के दूध को घाव पर लगाकर उसे जल्दी भरने का उपाय बताते हैं और ये अनुभवजन्य उपचार कई लोगों पर कारगर भी साबित हुआ है। गूलर का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये महिलाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद में इसे स्त्रियों के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए गुणकारी माना गया है। गर्भाशय की कमजोरी, अत्यधिक रक्तस्राव या मासिक धर्म की अनियमितता जैसी स्थितियों में इसकी छाल और फल से बनी औषधियाँ फायदेमंद मानी जाती हैं। हालांकि इसका सेवन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए, लेकिन श्रोताओं ये स्पष्ट है कि ये पेड़ केवल जंगल की शोभा नहीं बल्कि सेहत की छाया भी है। गूलर के पेड़ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। कई मंदिरों के प्रांगण में ये पेड़ विशेष रूप से उगाया जाता है क्योंकि इसे पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि ये वृक्ष देवताओं का वास है। इसकी छाया में बैठना मानसिक शांति और ध्यान को प्रेरित करता है। शायद यही वजह है कि गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि गूलर का पेड़ जहां होता है वहां जीवन बना रहता है। अब हम बात करें इसकी उपलब्धता की, तो गूलर आज के शहरी जीवन में कहीं गुमसा हो गया है। ना तो फल की दुकान पर मिलता है, ना ही बाजार में इसकी कहीं चर्चा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी उपयोगिता कम हो गई है। गांवों में, खेतों में, पुराने बागों में आज भी ये पेड़ खड़ा है। बस जरूरत है कि हम इसे फिर से पहचानें और इसका सही तरीके से उपयोग करें। गूलर का फल स्वाद में कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ तिक्त होता है। पकने के बाद इसका सेवन सीधा किया जा सकता है या सुखाकर इसका चूर्ण भी तैयार किया जा सकता है। कई बार लोग इसे सब्जी की तरह पकाकर खाते हैं, जिसमें ये पाचन को बेहतर करने के साथ साथ भूख भी बढ़ाता है। शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने में भी इसका असर देखा गया है। इसलिए ये फल न सिर्फ रोगों के लिए बल्कि सामान्य सेहत बनाए रखने में भी उपयोगी है। श्रोताओं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम अक्सर नए नए सप्लीमेंट्स, महंगी दवाओं और विदेशी फलों की चर्चा करते हैं।

0: ते हैं, लेकिन हमारी धरती, हमारे गांव, हमारे जंगल, इन सब ने हमें ऐसे रत्न दिए हैं जिनमें केवल पोषण ही नहीं बल्कि जीवन की संपूर्णता समाई हुई है। गूलर भी ऐसा ही एक रत्न है जिसकी छाया भी लाभकारी है, फल भी पोषक हैं और अनुभव भी समृद्ध हैं। तो आइए इस स्वास्थ्य चर्चा के माध्यम से हम ये संकल्प लें कि हम अपने आसपास के पेड़ों को, औषधीय फलों को फिर से पहचानेंगे। गूलर जैसा साधारण दिखने वाला पेड़ असाधारण गुणों का भंडार है और शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान को फिर से अपनाएं और अपनी सेहत की उस जड़ तक लौटें जहां से जीवन शुरू होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए देसी तत्व के साथ जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हो और हमारी सेहत को सच्चा पोषण दे। तब तक स्वस्थ रहिए और प्रकृति की इस देन गूलर को जानिए, अपनाइए और सराहिए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। गूलर एक अनदेखा फल जिसमें है अनगिनत औषधीय गुण, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। और अब आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आज रात 10:30 से मैच की समाप्ति तक। मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल का प्रसारण किया जाएगा। आज के जिले होंगे रायबरेली और जालौन। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत समात फरमाइएगा सेहतनामा। इस कार्यक्रम में शरीके गुफ्तगु होंगे। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर आपसे बातचीत करेंगे, शमसुल आरफीन, पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम में सुना ना भूलें डॉक्टर अलका सिंह की वार्ता, वर्तमान परिदृश्य में शिमला समझौता। खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 7:31। सुबह 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा विदुषी सुलोचना बृहस्पति का राग भैरव में खयाल गायन। सुबह 9:50 पर लोकरंग कार्यक्रम में जय शंकर त्रिवेदी व साथी का आल्हा गायन सुनिएगा। प्रसंग होगा पथरीगढ़ की लड़ाई। और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर जय शंकर त्रिवेदी व साथी के गाय आल्हा गायन का प्रसंग होगा लाखन का ब्याहा। दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर नवीन जायसवाल से की गई भेंट वार्ता का विषय होगा मसूड़ों की बीमारी, कारण लक्षण एवं बचाव। भेंट करता होंगी ज्योति चंद्रा। फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती, ये विषय है डॉक्टर संजीव कुमार से की गई भेंट वार्ता का विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर नव दृष्टि क्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा एआई की हरित पाठशाला, खेतों में भविष्य की फसल। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में परवेज अहमद सिद्दीकी की वार्ता प्रसारित की जाएगी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और ग्रामीण भारत। खेती किसानी कार्यक्रम में आज शाम 6:50 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर दुष्यंत मिश्र से की गई भेंट वार्ता, फलदार पौधों की उन्नत बागवानी। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। आपकी पसंद के फिल्मी नकमे आप सुन सकेंगे आज रात 9:30 पर और पूर्वाह्न 11:00 से सुनिएगा कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। सुबह 8:45 पर आपके मेल आपके गीत फोन इन का ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम आप सुन सकेंगे। सुबह 8:45 पर सुनिएगा आपके मेल आपके गीत जो कार्यक्रम आधारित होता है आपके ईमेल पर। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 किलो हर्ट्स पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। वैशाली के साथ हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

नमस्कार। आज की विविधा में मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की विविधा में बात उन लोगों की जो मैदान में खिलाड़ी नहीं होते, लेकिन खेल की धड़कन को दुनिया तक पहुंचाते हैं, जो बल्ले की आवाज, गेंद की रफ्तार, हर खेल को खिलाड़ी के पसीने, जीत की खुशी और हार के दर्द को शब्दों में बयां कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं खेलों के खबरी यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की। जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसकी नजर लक्ष्य पर होती है, लेकिन उसी मैदान में किसी कोने में एक और खिलाड़ी बैठा होता है, हाथ में माइक, कैमरा, नोटबुक या लैपटॉप लिए। वो खिलाड़ी मैदान में दौड़ता नहीं, लेकिन उसकी खबर पूरी दुनिया में दौड़ जाती है, जो बताता है कि किसने इतिहास रचा, किसने रिकॉर्ड तोड़ा, किसने चोट लगने के बावजूद भी खेल खेला और किसने हार कर भी दिल जीत लिया। इसी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी को सम्मान देने के लिए हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ये दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के काम को सम्मानित करने, उनके योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। AIPS की स्थापना 2 जुलाई 1924 को पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों के दौरान की गई थी। खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और दर्शकों को खेलों से जोड़ने में पत्रकारों की भूमिका को सराहने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये आयोजन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, एथलीटों की कहानियों को सामने लाने और निष्पक्ष रिपोर्टिंग का जश्न मनाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। देखें तो दोस्तों, खेल पत्रकार का काम सिर्फ स्कोर बताना नहीं होता। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच है तो स्कोर तो मोबाइल पर भी दिख जाएगा, लेकिन मैदान का माहौल कैसा था, खिलाड़ी पर दबाव कितना था, दर्शकों की सांसें कहां अटक रही थीं, कप्तान के चेहरे पर विश्वास या चिंता, ये सब बताने का काम करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। एक अच्छा खेल पत्रकार खबर लिखने के साथ साथ खेल की आत्मा को पकड़ता है। जब नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं तो पत्रकार सिर्फ ये नहीं बताते कि भाला कितने मीटर गया, वो बताते हैं कि उस एक थ्रो के पीछे कितने सालों की मेहनत थी। जब कोई धावक सेकंड के 100वें हिस्से से जीतता है तो पत्रकार बताते हैं कि वो जीत सिर्फ पैरों की नहीं, हिम्मत की भी थी। जब कोई टीम हारती है तो पत्रकार ये भी समझाते हैं कि हार में गलती कहां हुई और सीख क्या मिली। और दोस्तों, जानते हैं खेल पत्रकारिता की दुनिया ना बहुत ही रंगीन है, लेकिन उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। कभी तेज धूप में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कभी बारिश में मैदान पर खड़े रहना पड़ता है, कभी मैच आधी रात तक चलता है और सुबह अखबार में खबर भी चाहिए, कभी लाइव रिपोर्टिंग में एक सेकंड की गलती पूरी खबर का मतलब बदल सकती है। और आज के दौर में तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बहुत बदल चुका है। पहले अखबार और रेडियो मुख्य माध्यम थे, फिर टीवी आया, अब मोबाइल, सोशल मीडिया, लाइव ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमाना है। पहले दर्शक अगले दिन अखबार में पढ़ते थे कि मैच में क्या हुआ, आज हर गेंद, हर गोल, हर पॉइंट और हर रिकॉर्ड तुरंत दुनिया के सामने आ जाता है। खेल पत्रकार मैदान और दर्शकों के बीच सेतु की तरह होता है।

कई बार खेल पत्रकार ही ऐसे खिलाड़ियों की कहानी सामने लाते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। कोई छोटे गांव से निकला खिलाड़ी, कोई सीमित साधनों में अभ्यास करने वाली बेटी, कोई कोच जो सालों से बच्चों को तैयार कर रहा है। ऐसे चेहरों को पहचान दिलाने का काम खेल पत्रकार करते हैं। कह सकते हैं कि खिलाड़ी मैदान में इतिहास बनाते हैं और खेल पत्रकार उस इतिहास को हम आम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई मैच देखें, कोई स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ें या किसी खिलाड़ी की प्रेरणादायक कहानी सुने, तो याद रखिएगा कि उस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे भी किसी की मेहनत है। कोई सुबह से मैदान में खड़ा था, कोई देर रात तक रिपोर्ट लिख रहा था, कोई खिलाड़ी के एक जवाब में पूरी कहानी खोज रहा था। यही है हमारे खेलों के खबरी, जो तालियों की कहानी दुनिया तक पहुंचाते हैं। वे मेडल नहीं जीतते, लेकिन मेडल जीतने वालों की चमक को शब्दों में अमर कर देते हैं।

विश्व स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर सभी खेलों के खबरियों को सलाम, क्योंकि खेल मैदान में खेला जाता है दोस्तों, लेकिन उसकी कहानी पत्रकारों के शब्दों से इतिहास बनती है। आज की विविधा में बस इतना ही, दीजिए अनुमति हमें, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी गोरखपुर से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार

0: बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहां के विकास को और गति देगा।
2: मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था, घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है, और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर से प्रदेशव्यापी डीजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
4: अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डीजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवाद को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा।

0: होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में कल जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
2: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा। विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं, तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर

0: लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
1: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा, विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं, तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
0: गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह के दौरान हॉस्टल्स और मलिन बस्तियों में डेंगू से बचाव के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि 30 जून को समाप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी में 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें।

0: बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी लखनऊ से। और अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विदुषी सुलोचना बृहस्पति का राग भैरव में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी सुलोचना बृहस्पति का राग भैरव में ख्याल गायन। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे वाइंड अप करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए इजाजत हमें, आप सभी को नमस्कार। श्रोताओं बने रहिए मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स के साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। ये आकाशवाणी लखनऊ है, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल

0: नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे

0: सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain.

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हममनसब सानाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायज़ा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत खारजा ने कहा कि यह दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इक्तसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमीकंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इत्तलात व मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकतदारी के कलीदी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5 लाख अमले का तबादला का मंसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान की वज़ीर-ए-आज़म सानाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद वसत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वज़ीर-ए-आज़म के भारत दौरे पर उनकी मेज़बानी करना उनके लिए बायस मसरत होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के जरिए भारत और जापान भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमनो इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। EPF स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। EPFO ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के EPF खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ज़राए ने बताया कि वजारत ने व्हाट्सएप की जानिब से किए गए अवामी ऐलान को नोट किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने भारत समेत आलमी सतह पर यूज़र नेम फीचर का मरहलेवार तरीके से आगाज़ किया है। व्हाट्सएप ने बताया कि यूज़र नेम फीचर के फ़ाल हो जाने के बाद पैगाम भेजने वाले का मोबाइल नंबर पहली मरतबा रबता करने वाले शख्स को नज़र नहीं आएगा और इख्तियारी यूज़र नेम की इजाफी कंट्रोल के लिए सेट की जा सकती है। ज़राए ने बताया कि इस बारे में तशवीश है कि यूज़र नेम फीचर के जरिए ऑनलाइन धोखादही, जालसाजी, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों और जाली शनाख्त जाहिर करने जैसे जराइम में इजाफा हो सकता है। इस बारे में भी तशवीश है कि यूज़र नेम फीचर जाली शनाख्त जाहिर करने और ख़ुद को कोई और जाहिर करने जैसे मामलों को बढ़ावा देगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने मेटा को यह भी हिदायत दी है कि वो इस मामले पर मुशावरत ख़त्म होने से पहले यूज़र नेम फीचर की शुरुआत ना करे। नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा में फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया।

0: है, जो कौमी राजधानी में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि नया फ्रेमवर्क आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मौजूदा इकदामात को जवाबित के वाहिद सेट के तहत यकजा करेगा और हर मौसम सरमा में अलग अलग अहकाम जारी किए बगैर इन जवाबित के बरवक्त निफाज को यकीनी बनाएगा। ये नोटिफिकेशन हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQR के नजर सानीशुदा GRAP रहनुमा खतूत और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी यकजा करता है। नए जब्तों के मुताबिक मजाज पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को पूरी दिल्ली में साल भर पेट्रोल पंप CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली से बाहर रजिस्टर BS6 इखराज से कम दर्जे की गाड़ियों का दिल्ली में दाखला ममनू रहेगा। न्यूज़ डेस्क से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल की तौसी दे दी है। जनाब मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। वो जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के सफीर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर, रिवायती नुनवन पहलगाम और गंदरबल जिले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। CCTV कैमरे और RFID ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सती सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH44 पर सफ़र करेंगे। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले 2 दिन तक साहली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कन्नूर और कासरगोड, जो कि गुज़िश्ता 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड जिले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। CBI ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को 2 मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से ज़रूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रुपये रिफंड भी किए गए थे। CBI ने आवाम को मशवरा

0: दिया है कि वो धोखाधड़ी पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकरात कल दोहा में ख़त्म हो गए। कतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामिनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुजाकरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने बताया कि दोहा मुजाकरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुजाकिरात एक मुस्तहकम मौकफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 2-3 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्जेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलावामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि ये एक इनकलाबी कदम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने नई समत अता करते हुए तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। जापान की वजीर आजम सिनाई तकेशी ने 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की खबर है, बैन अलावामी बाजार में गैस की कीमतों में तखफीफ के बाद मुल्क में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में कमी। इसी अखबार की एक और खबर है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी दरअंदाजी और आबादी के बदलते हुए ढांचे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुजाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। और फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनी खेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत का। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी गीतों को तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज सबसे पहले हमने मेल लिया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। ये भेजा है हमारे श्रोता टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप। और कालका से मेल है शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज का। और एक और मेल है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, इन्होंने प्यार भरा नमस्कार लिखा है आपको। हमारा प्यार भरा नमस्कार मारहरा दरवाजा एटा से ये मेल है। नबी हसन, शहनाज नवेद, अनम यशव, सुहेल और रसीद वारसी का। और खिदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से मेल है जुबैर अली और उनके परिवार के बहुत सारे

सदस्यों का। बडिंग खेड़ा पंजाब से मेल भेजा है मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने। और एक मेल है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से, वली उल्लाह, डब्लू, रेशमा, बेबी अंसारी और इनके बहुत सारे साथी। और ये मेल है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी, हर्षद देशमुख का। और आप सभी की फरमाइश पर प्रस्तुत है विजय फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों ने।

धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से हमें मेल भेजा है निसार नौशाद बिबियालिया अयान, और इन्होंने नमस्कार के साथ लिखा है, आपका हर पल खुशियों भरा हो। मालियान सरदना मेरठ से मेल है अनिल जैन, संयम मुस्कान जीवियम और सरथना मेरठ से मेल भेजा है आदि अंश भव्य और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने, और ये मेल हमारे श्रोता हैं, इन्होंने भेजा है हमें जिला नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति गुरमंत कौर मनु और इनके बहुत सारे मित्र बंधु, इन्होंने मेल भेजा है। ग्राम व पोस्ट हर हरपुर मटकली जिला बरेली से मेल है शाहनूर नूर शकील मोइन तस्लीम और इनके बहुत सारे साथियों का। एक मेल और है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, और इन्होंने नमस्कार के साथ अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है, और आप सभी सुनना चाहते हैं वारिस फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर किशोर कुमार ने।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मॉडल टाउन करनाल से हमें मेल भेजा है सुधीर, नूतन, संदीप, गुगलानी, जगमोहन, नरेंद्र, किरण और मीनाक्षी जी ने, और इन्होंने लिखा है राम राम, आपको भी राम राम। और ये मेल है, इन्होंने लिखा है प्यार भरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। एक मेल और है जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल और इन्होंने नमस्कार के साथ अपने फरमाइशी फिल्मी गीत को हमें लिख भेजा है। अगला मेल जो है हमारे श्रोता हैं, इन्होंने भेजा है दुर्गेश नागनपुर ने, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, कुसुम बाई, दिव्यांश, सूरज कुमार, इन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से ये मेल आया है और इन्होंने अपनी फरमाइशी नगमे की हमसे गुजारिश भी की है। दाऊद सराय सहारनपुर से मेल है अनवर,

शन्नो, मुजक्किर, ज़रीफ, और इन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा कर नमस्कार लिख भेजा है। और आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर, बाबला मेहता और साथियों की आवाज़ में चांदनी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है।

0: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वागत है आपका कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में, और ये मेल है जिला खरगोन सनावत से अर्चना, अनुज, आयुषी, अशोक, रमेश, शेख मूसा भाई और राजकुमार बुड़ाना का। और सुदामा नगर खंडवा से मेल भेजा है लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने, और इन्होंने अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। ये है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सोनाली, सोनम, आशीष, तारा देवी और ब्रजेंद्र विश्वकर्मा। आपने मेल भेजा है और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। ये मेल है ग्राम कुवारियापुर सांडी हरदोई उत्तर प्रदेश से मुदित, अनवी, रमा और उनके बहुत सारे मित्र बंधुओं का। आप सभी सुनना चाहते हैं मंजिल फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

विजय सुरलकर, रतन, ओम दादू और इनके बहुत सारे मित्र बंधुओं ने हमें मेल लिख भेजा है और अपने फरमाइश की है गीत को सुनने की। और एक मेल और है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से, विजय, रतन, गौरी, ओम कुमार और इनके बहुत सारे मित्र बंधु। और ये मेल है बीड शहर महाराष्ट्र से भेजा है संगीता

साक्षी, जयश्री, अंजलि और इनके परिवार के सदस्यों ने, और आप सभी सुनना चाहते हैं बंदिश फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

0: श्रोताओं, बंदिश फिल्म के इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाजत लें, तो दीजिए अनुमति हमें। नमस्कार। अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए रायबरेली और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
2: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने गिघासू गंगा पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें पुल पर कराए गए मरम्मत कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत पुल को फिलहाल हल्के वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुल पर शेष तकनीकी परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही भारी वाहनों के आवागमन के लिए भी खोल दिया जाएगा। गिघासू गंगा पुल के पुनः संचालित होने से रायबरेली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि
3: 1970 के दशक का जो निर्मित पुल है वो काफी दिनों से बंद था, जिसमें रिपेयर वर्क चल रहा था। अब अभी वो लाइट व्हीकल्स के लिए खोला गया है और

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दोतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR प्रतियोगिता 2025-26 में विजेता बनकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु देश के कक्षा 1 से 12 तक के कुल 14,75,000 समय सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में से यह प्रतियोगिता निर्धारित मानकों पर जनपद राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आकलन कर अंतिम रूप से पूरे देश के कुल 191 विद्यालयों को इस पुरस्कार हेतु विजेता घोषित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय दोतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत

0: रखने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व तो है कि वह गंगा सहित सभी जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाए जाने की अपील की। महागंगा आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद, दीपों की अलौकिक आभा एवं भक्ति रस से ओतप्रोत भजन कीर्तन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार कर दिया। इस अवसर पर आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण में सराहनीय योगदान देने वाले नाविकों व गोताखोरों को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सांसद केएल शर्मा ने जनपदवासियों से टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि टीबी मुक्त जनपद का सपना जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, लगातार वजन कम होना, रात में अत्यधिक पसीना आना अथवा बलगम के साथ खून आना जैसे लक्षण दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीबी की जाँच करानी चाहिए। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी बैरकों का भ्रमण किया तथा कारागार की पाकशाला में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार दुरुस्त रखी जाएं और बंदी गृह में रह रहे मरीजों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेल की सभी व्यवस्थाएं जेल मैनुअल के अनुरूप ही संचालित हों। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोकार द्वारा रायबरेली विकास प्राधिकरण के माध्यम से बरखापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर और बिल्डिंग का अवलोकन करते हुए निर्माण गुणवत्ता एवं मूलभूत सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया। उन्होंने भवनों के बाहरी एवं आंतरिक हिस्सों का निरीक्षण करते हुए पाया कि कुछ कार्य अभी भी अवशेष हैं।
1: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जालौन में आयोजित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में 41 विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी आध्यात्मिक स्थलों के विकास, कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ मॉडलों को पहले और अब की थीम में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को चित्रों एवं जानकारियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री सूरघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि के लाभार्थियों को अनुदान चेक और आवास स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और आज करोड़ों गरीब किसान, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद जालौन के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में 100 युवा उद्यमियों को लेकर जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह भ्रमण कार्यक्रम युवाओं को उद्यमियों की वास्तविक कार्य प्रणाली से परिचित कराने एवं उन्हें स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य से आयोजित किया गया। भ्रमण के दौरान युवाओं के राजकीय औद्योगिक संस्थान कालपी स्थित हथकरघा, हाथ कागज उद्योग की इकाइयों तथा खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान

0: का अवलोकन किया गया। जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्ण सुबह पर जनपद मुख्यालय उरई में योग के प्रति अभूतपूर्व जन उत्साह देखने को मिला। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नागरिक स्वयं सड़कों पर उतरकर दूसरों को योग के प्रति जागरूक करते नजर आए। लगभग 4000 लोगों ने टाउन हॉल के चौक, घंटाघर और रेलवे स्टेशन मार्ग होते हुए करीब 5 किलोमीटर लंबी भव्य जागरूकता रैली निकालकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। रैली को सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने टाउन हॉल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उरई के सभी वार्डों से 100 से अधिक लोगों ने सहभागिता रखी। शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर नागरिकों ने रैली का स्वागत किया तथा योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास की सराहना की। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि योग भारत की संस्कृति विरासत ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का आधार है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि इसकी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता यह दर्शाती है कि जनपद में योग के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल, और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आइए सुनते हैं सेहतनामा। सेहतनामा में शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर। आपसे बातचीत की है शम्स आरफीन ने। पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: सामिन, कुदरत ने इंसान को एक खूबसूरत सांचे में ढाला है। उसको तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है और जिस्म को कंट्रोल करने के लिए एक ताकतवर दिमाग, दुनिया को देखने के लिए खूबसूरत आंखें, चलने के लिए दो पैर और खून की गर्दिश और रफ्तार देने के लिए दिल, इन सब से मिलकर बनता है एक खूबसूरत जिस्म। लेकिन इस जिस्म की जब हम हिफाजत करना छोड़ देते हैं तो न जाने कितने अमराज इसी खूबसूरत जिस्म से वाबस्ता हो जाते हैं। इसलिए आज का प्रोग्राम जिस्म के नाम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ की खास पेशकश सेहतनामा। मैं हूं आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। आज के खसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, जनरल फिजिशियन तिब्बे यूनानी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम बिलखसूस सेहतनामा में खैर मकदम है।
2: अस्सलाम वालेकुम
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कोलेस्ट्रॉल, आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। कोलेस्ट्रॉल है क्या, इसको आम जबान में क्या कहेंगे और इसकी वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, या घरेलू नुस्खे से अगर हम इलाज करें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं?
2: देखिए, आज की जो जिंदगी हम लोगों की है, जो भी चीज हम नॉर्मल जिंदगी में खाते पीते हैं
1: जी,
2: उसके अंदर मोस्टली जो चार चीजें जो होती है एब्जॉर्प्शन के लिए होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया,
1: राइट,
2: दूसरा आपका प्रोटीन हो गया, तीसरा आपका विटामिन्स और मिनरल्स हो गए, चौथा आपका लिपिड यानी के
1: जी
2: फैट हो गया।
1: फैट हो गया,
2: ये भी एक तरीके चर्बी की एक किस्म है जो

0: खाने से ही हमें मिलती है
1: जी।
0: इसमें यह इक्विलिब्रियम जो होता है वो शरीर को बनाना पड़ता है उसके हिसाब से, जिसमें में अल्लाह पाक ने जो भी चीजें दी हैं सबका कोई ना कोई काम है। ऐसा नहीं किसी को कोई चीज बढ़ी हुई है या किसी चीज घटी हुई है, बस जो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो पाता उसकी वजह से कुछ डिजीज वगैरह लाहक हो जाती है।
1: मतलब जो आप बता रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल आम जबान में से हम चर्बी की शक्ल
0: कह सकते हैं,
1: राइट डॉक्टर साहब? बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरीड, ये सब क्या चीज है और इनके क्या मुख्तलिफ काम है, इनके बारे में जरा रोशनी डालें तो हमारे सामने ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे।
0: देखिए ये भी हमने बताया कि ये किस्म है
1: जी,
0: चर्बी की
1: जी।
0: जैसे आपने बताया कि LDL, ये भी एक तरह की चर्बी होती है और बेसिकली जो भी चीजें जिसमें होती है उसका कोई ना कोई काम होता है। जो LDL होता है इसका जो मेन काम होता है कि ये हमारे हार्मोन्स को बनाने के लिए और हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए या बहुत से एंजाइम्स होते हैं उन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। और अगर ये सही मात्रा में शरीर में ब्लड में पाई जा रही है तो ये फंक्शन काम करेंगे, और अगर ये इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो रही है तो फिर ये डिसरेगुलेशन में डिजीज के रूप में हमारे सामने आ जाती है।
1: अच्छा
0: जी, जी।
1: क्या ऐसा भी होता है कि किसी के ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो तो उसको ट्राइग्लिसराइड हो जाता है, ऐसा सही है?
0: देखिए इसमें जो आपने बताया कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो एक मेन इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज होता है।
1: ओके,
0: इंसुलिन रेजिस्टेंस ही एक डायबिटीज का मेन वजह है इसकी
1: जी। तो डॉक्टर साहब अगर मान लेते हैं हमारे सामने जो सुन रहे हैं इस वक्त, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, 200 से ऊपर निकल गया, 250, 270, 300, ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले उन्हें के अपने घरेलू कौन से नुस्खे जो आसानी से मिल सके हम उसका इस्तेमाल करें? आमतौर पर लोग इस वक्त एस्ट्रोवास्टाटिन, रोसुवास्टाटिन तो ये कॉमन है और जिस डॉक्टर को भी दिखाएंगे वो लिखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सामने अपने घर पर इसका इलाज करें लेकिन एक माहिर तिब्बे यूनानी से मशवरा लेके।
0: देखिए मेन जो होता है जो हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, लिपिड प्रोफाइल की करते हैं
1: जी,
0: देखिए हमारी बॉडी में सबसे मेन ऑर्गन्स जो होता है हमारा लीवर होता है जो कि किचन होता है मेरा।
1: हाँ हाँ।
0: अगर उसमें कुछ डिसफंक्शन हो रहा है तो हमारा ये मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। इसमें मेन है कि जब लीवर में हरारत बढ़ती है, हम लोग के यूनानी टिप के हिसाब से हम लोगों को चार चीजों में कैटेगराइज किया गया है।
1: ओके।
0: एक तो एक सफरा है, सौदा है, बलगम है और दम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके हिसाब से ये देखना होता है कि किसकी मात्रा कम या किसकी मात्रा ज्यादा हो रही है। अगर बॉडी में बलगमियत बढ़ती, बलगमियत का मतलब ये होता है कि आदमी की जो फंक्शन है वो स्लो हो रहा है, जब प्रोसेस स्लो होता है यानी कि लीवर जो होता है थोड़ा सा कम फंक्शन में आता है तो ये सब चीजों की मात्रा बढ़ने लगती है खून में, क्योंकि लीवर का मेन काम होता है इन चीजों को मेटाबोलाइज करके और उसके रीनल यानी कि गुर्दे के जरिए उसको शरीर के बाहर निकाल
1: देना। बिल्कुल।
0: अगर वो चीज कम काम कर रहा है इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो धीरे धीरे ब्लड में आके जमने लगती है। तो मेन वजह हमें कि जो मेरा लीवर है उसको सबसे पहले हमें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा लीवर सही होगा तो उम्मीद है कि ये जो मेटाबॉलिज्म होगा धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। तो मेन लीवर को करने के लिए बहुत से दवाएं हम लोग के पास होती है, इसमें हम लोग जो होता है मेन दवाएं जो होती है वो गर्म खुश्क दवाएं देते हैं।
1: अच्छा।
0: और ये सब जो होती है पेशेंट के मिजाज के ऊपर डिपेंड करती है। पेशेंट के मिजाज अगर गर्म है तो उसको हम ठंडी दवाएं देते हैं।
1: ओके।
0: ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल के मिजाज हम लोग देखते हैं कि वो उस किस लेवल का हो रहा है तो उसी के हिसाब से उसकी दवाएं हम लोग तजवीज करते हैं।
1: अच्छा।
0: इसमें सबसे मेन चीज हमारे पास बहुत अच्छी ड्रग है अफसंतीन। अफसंतीन जो होता है उसको हम लोग उसका जुशादा बना के उबाल के उसको पेशेंट को पिलवाते हैं।
1: सब ये ब्रांड नेम तो नहीं है अफसंतीन?
0: अफसंतीन एक मुफरत दवा है, अफसंतीन सिंगल ड्रग है, बहुत अच्छी है ये, और अर्क कास्नी होती है, कास्निक तरीके की मुफरत दवा हम लोगों की होती है, बहुत अच्छी ड्रग है।
1: डॉक्टर साहब अक्सर ये कहा जाता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उन्हें अर्जुन छाल, लहसुन का इस्तेमाल करना, अदरक, और जिनको लीवर की प्रॉब्लम है बिलखसूस वो पलाकी है या एक अर्क मकोह है इनका इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके बारे में जरा रोशनी डाले।
0: देखिए हमने बताया कि हम लोग का जो पेशेंट जो होता है इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जो ट्रीटमेंट जो होता है हर पेशेंट का अलग अलग होता है, क्योंकि उसके मिजाज के हिसाब से हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
1: जी जी।
0: अगर हमने आपसे पहले ही कहा कि लीवर में हम देखते हैं कि लीवर में लीवर की हरारत बढ़ी हुई है या लीवर में बरूदत बढ़ी हुई यानी कि उसका डिसफंक्शन थोड़ा कम स्लो काम कर रहा है तो उसके हिसाब से दवाओं की तजवीज हम लोग करते हैं।
1: अच्छा
0: जी जी।
1: डॉक्टर साहब एक तो ये परसेप्शन बना हुआ है कि सेहत किसी की देख ली, पेट निकला हुआ देख लिया, ओबेसिटी उसकी है, अब हम पहले ही से गेस कर लेंगे कि ये बंदा इसका तो कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ा होगा, लेकिन क्या पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा आपने देखा है? क्या हो सकता है ऐसा? क्या इसके चांसेस रहते हैं?
0: बिल्कुल रहते हैं। मेन जो वजूहत हमने बताई है कि भाई जो लाइफ स्टाइल हमारा आज हो रहा है उसकी वजह से मेन एक वजूहत, लेकिन एक इसका जेनेटिक कॉज भी होता है जिसको मौरूसी बोलते हैं। तो कुछ पेशेंट जो आप दुबले बता रहे हैं कि दुबले पेशेंट में ये चीज होने के चांसेस इसलिए रहते हैं कि वो हो सकता है जेनेटिक हो उनका, वो उनके पेरेंट्स में या उनके पूर्वज में वो चीज रही हो, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर उसमें रहता है।
1: अगर जेनेटिक नहीं है तो
0: उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। एक हम लोग का ये एक नॉर्म्स होता है कि भाई अगर ओबेसिटी किसी को है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि ज्यादा चांसेस रहते हैं होने के चांसेस रहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब अगर ये पतले लोगों में चीजें हो रही हैं जब तब तो समझ में आ रहा है कि उसके कोलेस्ट्रॉल हो गया है भाई, उसकी ट्रीटमेंट जैसा कि अभी आपने तिब्बे यूनानी के हवाले से बताया, अगर हमारे साथ जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है बहुत सेहतमंद लोग हैं उनको दिन भर में कितने मिनट या कितने घंटे एक्सरसाइज करना

0: चाहिए जिससे उनका जो फैट है वो कम हो सके, खत्म हो जाए, और उनका सुबह और शाम की जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, शाम का खाना कितने बजे, इन सब पर भी रोशनी डालें।
1: देखिए ओबेसिटी का अगर देखें कि ये एक सिंगल बीमारी नहीं है
0: जी,
1: इसको हम लोग पूरा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम टाइप बोलते हैं। ओबेसिटी में बेसिकली एक जो आप देखेंगे तो अगर ऊपर से आप शुरू करेंगे दिमाग एक उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारा दिमाग जो होता है एक इसका मेन हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं, तो वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये वो भी एक फैक्टर होता है उसका। और सेकंड पे आपका आता है कि आपका जो रहन सहन है कि ये बिल्कुल डल आपकी लाइफ हो रही है, आप आराम से अपना उठते हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, जो आपका ये चीजें हैं ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और आपका तीसरा आपका खान पान हो गया कि आप किस तरीके की चीजों को खान पान आप ले रहे हैं, किस तरीके नाश्ता कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं, मतलब उस डाइट की भी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट होती है। और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट किस टाइम खाना खा रहा है, कितना खा रहा है और क्या चीज खा रहा है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, हम डे वन शुरू कर देते हैं। समझ लीजिए मैं आपके सामने पेशेंट हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे सुबह का नाश्ते में सबसे पहले क्या लेना है और कितने बजे नाश्ता करना है।
1: देखिए सुबह का बेहतर है कि नाश्ता अराउंड 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए।
0: okay.
1: और मॉर्निंग की शुरुआत जो होना चाहिए आपको प्रोटीन डाइट से करनी चाहिए।
0: right.
1: सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन डाइट हमारे लिए, प्रोटीन ऐसी चीज होती है जो कि मेरी सारी रिपेयरिंग के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनको रिपेयरिंग का काम करती है, बॉडी बिल्डअप करती है। तो हमें सबसे पहले प्रोटीन डाइट से शुरू करना चाहिए। प्रोटीन में स्पेशली आपका हो गया स्प्राउट्स हो गए आपकी, और आपके चने हो गए, चने में स्पेशली काबली चना हो गया आपका, और मूंग दाल हो गई आपकी, ये अंकुरित चीजें जो होती है सुबह की मॉर्निंग डाइट में आपको लेना बेहतर है।
0: ओके, क्या हम सुबह के नाश्ते में अंडा ले सकते हैं?
1: अंडा ले सकते हैं बिल्कुल, प्रोटीन डाइट उसमें बढ़िया।
0: सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने के बीच में तकरीबन कितने घंटे का फर्क होना चाहिए?
1: कोई भी खाना हजम करने कम से कम 4 से 5 घंटे उसमें लगते हैं पूरा उसको मेटाबोलाइज होकर एक नॉर्मल उसमें खाना। आप जनरली आप मॉर्निंग में यह है कि आप 12 बजे तक की 11 बजे तक खाना ले सकते हैं।
0: ओके, एक परसेप्शन और यहाँ मेरे सामने आ रहा है, अक्सर ये कहा जाता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या जो मोटे होते हैं, कहा जाता है कि भाई आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पी सकते, ये परसेप्शन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहां तक सही है?
1: देखिए खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना चाहिए, एक चीज रखिए पहले, या खाना खाइए या पानी पीजिए।
0: अच्छा,
1: तो खाने एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा, 40 मिनट से 1 घंटे तक की, उसके बाद आपको पानी पीना चाहिए।
0: चलिए सुबह के नाश्ते में डॉक्टर साहब आपने हमें बता दिया, अब हम आते हैं दोपहर के खाने में। दोपहर के खाने के में किस तरह की डाइट होनी चाहिए?
1: देखिए दोपहर में आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं।
0: ओके,
1: आप दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, जो एक नॉर्मल डाइट है वो आपको ले लेनी चाहिए।
0: ठीक है,
1: दोपहर का खाना तो आप स्ट्रॉन्ग थोड़ा ले सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा छूट है।
0: अब रात के खाने पर बात करते हैं कि रात का खाना कितने बजे होना चाहिए और क्या होना चाहिए।
1: देखिए हम लोग में यूनानी और आयुर्वेद दोनों चीजों में ये कॉन्सेप्ट है कि सूरज ढलने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए,
0: ये इम्पोर्टेंट चीज है। और मेरे ख्याल से आजकल 90% लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं मेरे ख्याल से, कि वो रात के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं खाना खाते हुए। डॉक्टर साहब अब इन चीजों का जो असर होता है, एक और चीज सामने आ रही है बिलखसूस नौजवानों में, हमारे हम सब में देखा जा रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह क्या है? कई 20 से 30 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो नौजवान तबका है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है?
1: देखिए ब्लड प्रेशर की वजह पे आ जाए तो आज भी मॉडर्न साइंस है जो भी वो कह रहे हैं कि 80% जो होती है वो जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है वो नॉन इडियोपैथिक कॉज होता है उसका।
0: हाँ
1: 20% में कुछ वजूहत होती है आपका, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल एक वजह हो सकती है, इसके अलावा ओबेसिटी एक वजह हो सकती है, कुछ रीनल कॉजेस भी होते हैं उसके अंदर। तो एसेंशियल, लेकिन हम लोग जो यूनानी मेडिसिन है उसका एक ये कि हमारा लाइफ स्टाइल है एक उसकी बड़ी वजह हो गई है। हमने बताया स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज है कि स्ट्रेस की वजह से आजकल हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है।
0: बिल्कुल,
1: जो हमारी सोच है हमारी वो है कि हर वक्त हम उसी में मुब्तला रहते हैं कि भाई रात में सो रहे हैं तो भी हम इजी नहीं है, जो डीप स्लीप हमारी नहीं हो रही, जो हमारा रात में रिपेयरिंग का काम होता है, बॉडी सोने के टाइम सब रिपेयरिंग का काम करती है, वो बॉडी पूरी तरीके से नहीं आती, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल की वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में होने लगता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से एक वजह ये भी है कि हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है।
0: अच्छा, ये जो सूजन हो रही है उसकी वजह से हाइपरटेंशन?
1: बिल्कुल, एक बहुत बड़ी वजह है।
0: ओके, ये एक नई चीज हमारे सामने के लिए सामने आई है कि जो इंटरनल सूजन है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है।
1: जी जी
0: जी जी डॉक्टर साहब, आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बात आ रही है, तो सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है?
1: देखिए मेरे पास जो मेन मेरा हार्ट है वो एक बड़ा ऑर्गन, मतलब एक जो प्राइम ऑर्गन कहलाता है उसको, ठीक है, उसमें चैंबर्स होते हैं, 4 चैंबर्स होते हैं, सभी को पता है वो, और उसमें एक काम होता है कि बॉडी को पूरा ब्लड जो होता है शरीर तक पहुंचाना,
0: बिल्कुल,
1: और एक उसमें एक रिलैक्सिंग पॉइंट होता है कि जब रिलैक्स करता है, जब वो हार्ट जो होता है हमारा सिकुड़ता है यानी कंट्रक्शन करता है, तो पूरा हार्ट ब्लड जो होता है पूरे शरीर को जाता है।
0: हाँ।
1: तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, आर्टरीज में जो बढ़ता है, वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और उसके बाद में जब वो रिलैक्स होता है यानी कि अपने रिलैक्सिंग पॉइंट पे, तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग।
0: मतलब जो दबाव के वक्त जिस्म के अंदर फ्लो बढ़ रहा है उसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, वो जो सिस्टोलिक हो गया और वापस जो आराम की पोजीशन में आ रहा है वो हमारा डायस्टोलिक हो गया। अगर मान लीजिए किसी का सिस्टोलिक नॉर्मल है लेकिन डायस्टोलिक बढ़ रहा है, ये सूरत हाल किस चीज के

0: इंडिकेट करती है।
1: तो देखिए डायस्टोली हमने बताया ना कि जब रिलैक्सिंग होता है हार्ट, कोई भी चीज अगर रुकेगी ज्यादा देर तक की शरीर में, यानी कि वो पूरी तरीके से नहीं जा रही है, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उस पे, इसको देखना जरूरी होता है कि ये मेजर वजह होती है कॉम्प्लिकेशन की।
0: ओके,
1: तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए।
0: अभी हमने एक साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया, उनका 122 और 95 ये आया, यानी कि डायस्टोलिक उसका 95 था, तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है।
1: जी जी, वो अलार्मिंग साइन है हमारे लिए,
0: अलार्मिंग साइन है। तो उसको हम किस तरह से, उसको कैसे मतलब एग्जामिन करें कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही, कौन सा टेस्ट करें उसके लिए हम?
1: देखिए जनरलाइज जो ब्लड प्रेशर है इसके लिए हम लोग कराते हैं लिपिड प्रोफाइल,
0: होगी
1: और आपकी FT करा लेते हैं उसमें, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करा लेते हैं कि उसमें देख लेते प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रही है, कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस तो नहीं है।
0: जी,
1: मेन वजूहत यही होता है, इसको देखते हैं पहले हम लोग।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी का ये डायस्टोलिक बढ़ रहा है, ये 95 और 99 और 100 के आसपास हो गया है, तो क्या उसको मेडिसिन लेनी चाहिए?
1: जी देखिए, उसको वेट एंड वॉच करने के लिए उसको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करानी चाहिए।
0: जी,
1: और साथ में उसको एक्सरसाइज प्रमोट करना चाहिए और उसकी स्लीप वगैरह को प्रॉपर करना चाहिए। और अगर थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है तो हल्का हम लोग मुदिरात वगैरह, कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं उसमें हम लोग मुदिरात देते हैं, तो उससे उम्मीद है इंशाल्लाह वो चीज कंट्रोल हो जाती है।
0: ऐसे कोई मसाले मौजूद हैं जिनसे इस तरह का ब्लड प्रेशर घर में हम काढ़ा बना लें या कुछ बना के उसको कंट्रोल किया जा सकता है?
1: देखिए जो आप बता रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छी जो हम लोग को रेमेडीज है वो आपका चुकंदर, जो होना नाम सुना
0: होगा। अच्छा, चुकंदर, चुकंदर, जी, जी, जी, जी, बिल्कुल।
1: उसमें NO2NO होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो की आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करता है।
0: ओके,
1: तो बेहतर है उसको या तो एज ए सलाद या उसकी सब्जी बना के या इवन उसका जूस बना के आप उसको लेंगे तो उम्मीद है उससे फर्क पड़ जाता है
0: चुकंदर को।
1: और उसमें मेन डाइटरी में उसका आपका पोटेशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम होगा, इन चीजों को प्रमोट करते हैं, इन मिनरल्स को प्रमोट करते हैं, जिससे कि इनकी जो आर्टरीज होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं हम लोग हैं।
0: अच्छा,
1: कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो प्रेशर कम पड़ेगा उसको।
0: जी जी डॉक्टर साहब, स्ट्रेस को किस तरह से कम किया जा सकता है?
1: देखिए स्ट्रेस, हम एक हार्मोन आपका बेर में वही नाम ले रहे हैं, कॉर्टिसोल, बहुत बड़ी चीज है, आदमी इसको अब उस पर मॉडर्न साइंस भी काम कर रही है, उसको लगता है कि हाँ भाई बहुत बड़ी चीज है, इसको हमें मैनेज करना चाहिए।
0: जी जी,
1: देखिए एक सबसे अच्छी चीज जो ब्रिस्क वॉक आपकी है, सुबह उठ के कम से कम 30-45 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉक सुबह मॉर्निंग में करनी चाहिए, उससे आपके जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और आपको वो लेवल थोड़ा सा बेहतर होता है स्ट्रेस के लिए।
0: जी, क्या आजकल जो लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं जिससे रात के 2 बज जाते हैं 3 बज जाते हैं और फिर उनको जो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी कंडीशन में भी स्ट्रेस और इसका जिस्म पर क्या असर पड़ता है? हमारे नौजवान तबके जो है उस तबके को आप खास तौर से ये पैगाम दीजिए कि क्या कर सकते हैं उसको।
1: हमें एक चीज आपको पहले बताई कि भाई जो रात का टाइम ऊपर बनाया वो सोने के लिए बनाया,
0: बिल्कुल,
1: उसमें कुछ हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन हो गया, सेरोटोनिन, ये बैलेंसिंग हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, और ये हमने कहा बॉडी रिपेयरिंग का काम जो होती है रात ही में करती है।
0: ओके,
1: तो रिपेयरिंग का जो काम रात में होता है अगर हम उस टाइम पे अपना हम एक्टिविटी करते रहेंगे, जाहिर है वो रिपेयरिंग बॉडी की नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन फिर वही कॉज होगा। हाँ। इन्फ्लेमेशन आएगा तो इन्फ्लेमेशन के बीपी है, शुगर है, आपको ये सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी।
0: बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान लंग्स पर हम बात करना जरूरी समझते हैं कि लंग्स की एक्सरसाइज के लिए जो हम क्या कर सकते हैं कि उनके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाए और वो पूरे बॉडी को सर्कुलेट हो जाए, आप उसके बारे में जरूर हमारे सामने को बताएं कि फेफड़े की ऑक्सीजन को कंप्लीट ऑक्सीजन लेने के लिए क्या किया जा सकता है।
1: देखिए सुबह का जो मॉर्निंग वॉक बता रहे हैं आपको, सुबह में जो ताजगी होती है जो चीजों में होती है उसमें आप केवल जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, कुछ लंग्स की एक्सरसाइज होती है और कुछ ऐसे सिंपल अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसका आपका जो लंग फंक्शन होगा बेहतर होगा उससे।
0: अच्छा, कहते हैं कि आप सांस खींच के एक बार छोड़ दीजिए और आप उसके बाद वेट करते रहिए सेकंड की तरह की कितने सेकंड आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबकी लाइफ स्टाइल बहुत ही भागदौड़ भरी हो गई है, आप खुद जब थक जाते हैं अपने खुद के शेड्यूल से, रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी से, तो रिलैक्स करने के लिए आप खुद क्या करते हैं?
1: देखिए हर आदमी का एक अपना शौक होता है।
0: बिल्कुल, वही मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली।
1: जी, एक शौक होना चाहिए और बेहतर है कि उसमें आउटडोर गेम आप जरूर शामिल करें।
0: जी,
1: आप आधे घंटे के लिए ऐसी चीज रखें कि आप जाके उस टाइम अपने सारे काम को भूल गए, अपना एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले गए आप।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो उसमें आप रिलैक्सिंग एक फील करेंगे कि आप लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, एक वो अलग एक माहौल एटमोसफेयर क्रिएट करने की कोशिश करें उसको, और अपने दोस्तों के साथ और एक टाइम एक जरूर फिक्स करें, वो एक ऐसी चीज होती है जो आपकी बहुत सारी चीजों को दूर करेगी।
0: मतलब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, हंसी मजाक होता है इस दौरान और बाहर घूमते हैं फिरते हैं, उससे बॉडी पे काफी बेहतर असर पड़ता है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमारे दोस्त लोग जैसे डॉक्टर सईद अख्तर साहब बैठे हैं या हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्रिकेट मैच खेलने निकल जाते हैं और जाके एक दो घंटा पसीना हमने बहा लिया और उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है वो यकीनन एक अलग ही उसका मजा होता है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे कुछ सामयिन को पैगाम देना चाहेंगे?
1: देखिए आज की लाइफ हम लोग की बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हमने खुद बना रखी है उसको,
0: बिल्कुल,
1: तो थोड़ा सा उसको इजी कर लीजिए। इजी का मतलब इन सेंस ये हो गया कि भाई सुबह उठिए तो कम से कुछ टाइम अपने लिए आप जरूर रखिए। भाई सेहत ऊपर वाले ने सबसे बड़ी नेमत दी है, ये तो मान के चलिए आप, जब तक आपके पास सेहत तभी आप सबके लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने देश के लिए

0: सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: ठीक है, तो उसके लिए एक टाइम बना लीजिए, एक्सरसाइज जरूर आप कम से कम 30-45 मिनट्स की एक मॉर्निंग वॉक ब्रिस्क वॉक जरूर रखिए।
1: ओके,
0: और इसके लिए डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डाइट को बहुत सिलेक्टेड, बहुत क्वांटिटी क्वालिटी ये सब मेंटेन रखिए डाइट की, क्योंकि जो चीज हमारे जिस्म में जाएगी जाहिर है उसके असरात मेरे ऊपर होंगे। तो अगर उसको हम सही से रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो चीज सही।
1: कहते हैं कि डाइट में नॉनवेज ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्या सही है? हफ्ते में एक बार लेना चाहिए आपको, ये सारी चीजें डॉक्टर साहब सही है?
0: देखिए, अति किसी चीज की भी नुकसान देती
1: है। हां ये तो है।
0: और हर बॉडी का, देखिए हमने बताया था कि हम लोग यूनानी मेडिसिन के हिसाब से या अपना कॉन्सेप्ट जो होता है कि हर आदमी का एक इंडिविजुअल मिजाज होता है और उसकी इंडिविजुअल डाइट होती है।
1: बिल्कुल,
0: सब आदमी के लिए जरूरी कि वही चीज हमको हो सकता है फायदा कर,
1: ये बात तो है।
0: तो ये इन चीजों का हम लोग तो उस तरीके से टेलर डाइट भी देते हैं उसी तरीके सब लोगों की अलग अलग।
1: डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसके लिए, इसके इलाज के लिए कोई घरेलू नुस्खा जो हो वो आप हमारे सामने को बताएं जो घर पर इस्तेमाल करें।
0: जी जी, देखिए आपका सौंफ हो गई, आप बादियान जिसको कहते हैं हम लोग, सौंफ हो गई और आपकी इलायची हो गई,
1: जी
0: ये बहुत अच्छी मुदरी बॉल दवा होती है। इनको सिंपल सिर्फ बॉयल करके आप सुबह ले ली, नहर मुल लीजिए, तो उससे ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल।
1: ये बॉयल करके और इसका जो पानी होता है उसको साइड कर देंगे या कैसे?
0: इसको आपने
1: बॉयल किया,
0: बॉयल कर लिया,
1: हाँ।
0: एक चम्मच सौंफ हो गई आपकी, हाँ। चार पांच पीस आपकी
1: इलायची हो गई,
0: इलायची होगी, उसको बॉयल कर लीजिए, उसको छान के पी लीजिए आप।
1: पानी पीना है उसका?
0: पानी पीना है उसका,
1: हाँ, यानी कि वो काढ़ा एक तरह एक शक्ल में हो गया।
0: जी जी,
1: हाँ, ये एक अच्छी चीज है जो हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हमारे सामईन हैं जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया इसको आप इस पर अमल कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि आप अपने पड़ोसी डॉक्टर से लगातार ब्लड प्रेशर अपना मॉनिटर कराते रहें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत की, आपकी जो शिरकत रही वो हमारे सामईन के लिए बहुत मुफीद है, और इस खूबसूरत और खैरामद गुफ्तगु के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया
1: सामिन, ये था हमारा आज का खसूसी उर्दू प्रोग्राम सेहतनामा, जिसमें शिरकत करने वाले मेहमान थे डॉक्टर मोहम्मद अख्तर साहब। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप करने चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 7991778157। एक बार फिर सुने, 7991778157। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए अपने मेजबान शम्सुल्लाहफीन को। आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सेहतनामा के अंदर शरीक गुफ्तगु थे डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, इनसे बातचीत की थी शम्सुल आरफीन ने, पेशकश आसिफ इकबाल की थी। 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में आइए सुने जयशंकर त्रिवेदी और साथी का आल्हा गायन। प्रसंग है पथरीगढ़ की लड़ाई।

0: वाला निगरानी मानो कहा हमार
1: क्या।

¡Ay, qué va!

रत्न का ब्याह। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं अक्सर फिल्म का गीत, जिसे गाया है के और सुनिधि चौहान ने।

0: अभी आप सुन रहे थे द डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत कमाल खान की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। 10:20 से पुनः सुन सकेंगे चित्रपट से कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 10:10 होने वाले हैं, सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाए ताकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस

0: जानकारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल के लिए बढ़ाया। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के 2 तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ताकायची इस समय राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। श्री मिश्री ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के एक मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 4 250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कल न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे पहले INS सुदर्शनी ने ब्लाटीमोर बंदरगाह पर प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। विदेश मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय मानव संसाधन गतिशीलता मंच कल संपन्न हो गया। इस मंच का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने किया। मंच का उद्देश्य भारतीय पेशेवरों और कामगारों के लिए सुरक्षित और वैध विदेश रोजगार के अवसर बढ़ाना और इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना था। डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सुरक्षा

0: शिक्षित और कानूनी आवाजाही को बढ़ावा देना और शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने ई माइग्रेंट 2.0 पोर्टल की भी सराहना की, जो सुरक्षित और व्यवस्थित विदेश रोजगार में मदद कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता कतर की राजधानी दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। कतर सरकार के अनुसार दोनों पक्षों ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के 9 जुलाई को अंतिम संस्कार के बाद चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोहा वार्ता ठीक तरह से आगे बढ़ रही है और तकनीकी वार्ता भी चल रही है। उन्होंने कहा कि अगले चरण की वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री ने बताया कि वार्ता में 14 सूत्री सहमति पत्र पर अमल का मुद्दा मुख्य रहा। ईरान और कतर ने ईरान की $6 अरब की परिसंपत्ति को मुक्त करने पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में जारी तनाव पर भी विमर्श हुआ। ईरान ने कहा कि जहाज को वही मार्ग अपनाना चाहिए जिसे ईरान ने मंजूर किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिया जाएगा। ईरान के अधिकारियों के अनुसार अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है और सारी वार्ताएं कतर और पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से हो रही है। विश्व दर्पण के लिए मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार हमले किए। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस ने मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे रिहायशी इमारतों में आग लग गई और काफी नुकसान पहुंचा। पूरे शहर में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और कई लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लेने लगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 3 और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं है। मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए संबंधित लोगों की सुरक्षित और तत्काल रिहाई की मांग की है। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। 11,000 से अधिक लोग घायल हैं, जबकि लगभग 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस त्रासदी पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई और लगातार 17 मैचों में अजय रहने का सिलसिला जारी रखा। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है, जहां अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाया ताकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल के लिए बढ़ाया। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से वो लम्हे। इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए KK और साथियों की आवाज में।

और अब आइए सुनते हैं गैंगस्टर फिल्म का गीत, जिसे गाया है केके ने।

अभी आपने अलीशा चिनॉय की आवाज़ में मर्डर फिल्म का ये गीत सुना, और अब आइए सुनते हैं चमेली फिल्म से एक प्यारा सा गीत जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने।

मोहित चौहान नेहा भसीन की आवाज में अब आइए सुनते हैं इरफान सिद्दीकी की गीत रचना। संगीत सलीम सुलेमान का है और फिल्म का नाम है फैशन।

अभी आप सुन रहे थे फैशन फिल्म का ये गीत, और अब आइए सुनते हैं जन्नत फिल्म का गीत जिसे गाया है केके ने।

अभी आपने केके की आवाज में जन्नत फिल्म का गीत सुना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से। अब लीजिए सुनिए आतिफ असलम की आवाज में रेस फिल्म का गीत।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। फोन इन कार्यक्रम के साथ कुछ तुम कहो कुछ हम कहें लेकर हाजिर हूँ मैं भाषा। स्वीकार कीजिए भाषा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको अपना फ़ोन नंबर बता दें। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। नंबर एक बार फिर से सुने 0522-223-8825। आप हमें कॉल करें और सुनें अपनी पसंद का गीत। तो देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए।
1: जी कहते हैं वाणी से ही विष झरे, वाणी से ही रसधार, मीठा वाणी बोलिए, जीवन का इसी में छुपा है सार। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ आकाशवाणी लखनऊ को सुनने वाले सभी साथियों को संतोष कुमार राव की ओर से स्नेहिल अभिवादन। उमरिया मध्य प्रदेश से बात कर रहा था।
0: क्या बात है संतोष जी, क्या खूबसूरत लाइन आपने सुनाई। बिल्कुल, वाणी को हमेशा मीठा ही रखना चाहिए। ठीक है, और क्या सुनना चाह रहे हैं आप संतोष जी?
1: जी मैम, सबसे पहले तो ये कार्यक्रम में पहला कॉल मेरा लगा, मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। हाँ। और जो आकाशवाणी लखनऊ से आते हैं कार्यक्रम, आपके पत्र, आपके मेल, विविधा जैसे कार्यक्रमों का निर्माण होता है और इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रसार किया जाता है आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे सुनकर आत्मज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है।
0: चलिए, हमारी यही कोशिश रहती है कि आप सभी हमारे कार्यक्रम से लाभान्वित हों। धन्यवाद, आप हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और क्या सुनना चाह रहे हैं संतोष जी?
1: मूवी का नाम है मोहरा, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम, टिप टिप बरसा पानी, और इस समय मध्य प्रदेश पर मौसम मेहरबान है और लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है।
0: क्या बात है, क्या बात है, यानी मानसून मध्य प्रदेश में आ चुका है।
1: जी मैम, दस्तक होते ही मध्य प्रदेश का मौसम सुहाना बन चुका है और जी, जी, जी। आनंद ले रहे हैं अपने मनपसंद कार्यक्रम इसे फोन इन कार्यक्रम के, जिसका नाम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और आपकी मधुर वाणी पहुंच रही है डीटीएच के माध्यम से हम तक।
0: क्या बात है, आपने मेरी बात तो आपने कह दी। चलिए धन्यवाद, आपने कॉल किया संतोष जी। चलिए, आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: हेलो, कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो।
1: जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। आप नाम तो बताइए अपना।
1: शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम।
0: एमपी विदिशा से?
1: जी
0: जी
1: मैम,
0: जी बहुत अच्छी जगह से आप बात कर रहे हैं। अपना नाम बताइए।
1: शिवा लोहट मैम। जी
0: शिवा? क्या बात है, भगवान शंकर का नाम है शिवा।
1: जी मैम, बहुत
0: जी
1: अच्छा हूँ मैम। यहाँ पे सुहानी सुहानी, अभी जबलपुर में हूँ तो बारिश, रात भर से बारिश हो रही है, मौसम में ठंडक घुल गई है, काफी अच्छा लग रहा है मैम।
0: क्या बात है, जाहिर सी बात है, मौसम सुहाना होगा, मौसम में ठंडक होगी तो अच्छा तो लगेगा ही।
1: जी मैम,
0: यानी मानसून आ गया है आपकी तरफ।
1: जी मैम।
0: चलिए तो क्या

0: हेलो कार्यक्रम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हेलो,
1: दीदी को नमस्कार।
0: नमस्ते, नाम बताइए।
1: दीदी, ग्राम नरेला दामोदर, भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा जी।
1: जी दीदी।
0: चलिए रामबाबू शर्मा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी दीदी, किसानी करता हूँ मैं, और बारिश नहीं हो रही है। बोनी तो हो गई है यहाँ पर।
0: जी जी जी।
1: लेकिन बारिश यदि हो जाए तो हम धान लगाने की तैयारी पूरी पूरी है, तो धान लगाने लगे।
0: हाँ, बारिश नहीं होगी तो धान कैसे लगेगा?
1: हाँ जी दीदी, हाँ
0: तो
1: जी,
0: बारिश होना बहुत जरूरी है।
1: बारिश हो रहे हैं, बदल होगी।
0: हाँ हाँ, हो जाएगा एक आध दो दिन में जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि कई जगहों पर बारिश हो रही है, मानसून वहाँ पहुँच गया है। तो राम बाबू जी, आप कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं?
1: जी दीदी, बारिश नहीं हो रही है तो फिल्म का नाम है प्यासा सावन। उसमें गाना है मेघारे मेघारे मत परदेश जा रहे, क्योंकि इधर उधर गांव में बरस रहा है, दूर गिर जाता है, लेकिन हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है अभी।
0: चलिए भाई, आप मेघारे मेघारे हैं परदेश जाने से, मेघा को आप मना कर रहे हैं हमारे यहाँ बरसो। चलिए, हम आपकी
1: मित्रों को याद करना चाहूंगा।
0: देखिए राम बाबू जी, होता ये है कि बहुत सारे लोग आपकी तरह ही याद करते हैं, कॉल करते हैं कि उनकी भी कॉल लग जाए और वो अपनी पसंद का गीत सुन सकें।
1: तो हाँ जी दीदी, दो चार मित्र हैं।
0: चलिए ले लीजिए।
1: जी दीदी, केसरी सिंह राजपूत जी सुन रहे हैं, गजराज सिंह लोधी जी और पूनम जी हैं कानपुर से, भगवान सिंह परमार जी और मांगीलाल चंदेल जी। दीदी आपके लिए
0: धन्यवाद। चलिए, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का ये गीत।
1: जी दीदी,
0: धन्यवाद
1: नमस्कार।
0: कॉल करने के लिए। नमस्कार।

0: हेलो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम। हेलो हेलो हेलो,
1: नमस्ते,
0: नमस्ते।
1: मैं दीक्षा पाली बोल रही हूँ।
0: दीक्षा जी कहाँ से बोल रही हैं? दीक्षा जी

0: जी मैं ग्राम पाली पोस्ट वाली ब्लॉक विजयपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से।
1: उन्नाव से दीक्षा बोल रही हैं
0: जी।
1: अच्छा जी दीक्षा, आपके यहाँ मौसम कैसा है?
0: मौसम कल बारिश हुई थी मैम, आज तो बादल हैं लेकिन बारिश वाले नहीं हैं, ऐसे अच्छा, हैं बादल।
1: अच्छा,
0: कल
1: अच्छा
0: अच्छी बारिश हुई थी उन्नाव में, हमारे यहाँ भी हुई थी बारिश।
1: अच्छा जी, तो क्या करती हैं दीक्षा आप?
0: जी मैम
1: आप करते क्या हैं दीक्षा?
0: आवाज आ नहीं रही,
1: आप करती क्या हैं? थोड़ा रेडियो अपने आप से दूर रखिए।
0: रेडियो तो हमसे बहुत दूर है मैम, मैं
1: आपकी आवाज मुझे
0: छोटे
1: बहुत
0: बच्चों को
1: अच्छे
0: कोचिंग
1: से।
0: पढ़ाती हूँ शाम को।
1: अच्छा, शिक्षित करती
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ
1: बच्चों
0: दोपहर
1: को।
0: में सिलाई सिखाती हूँ और आप रेडियो भी सुनती रहती हूँ और
1: अरे
0: रेडियो के
1: वाह,
0: कार्यक्रम भी सुनती हूँ
1: क्या बात है।
0: जो जमाते हैं सुबह से लेके जब भी समय मिलता है सुनती रहती हूँ, और अच्छे भी लगते हैं, उनसे मैं लाभ भी उठाती हूँ
1: क्या बात है।
0: और दूसरों को भी बताती हूँ। और ये जो फोन मेरा लगता है रेडियो में, मैं दूसरे फोन में रिकॉर्ड करती हूँ फिर दूसरे को सुनाती हूँ, तो सब लोग कहते हैं अच्छा है, अच्छा लगता है सब,
1: अरे
0: और भी लोग
1: वाह, अरे
0: लगाने का
1: वाह,
0: प्रयास करते हैं।
1: क्या बात है। तो दीक्षा जी, क्या सुनना चाह रही हैं आप?
0: जी मैं निकास फिल्म का गाना सुनूंगी, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, ये मेरा सबसे अच्छा गीत है, पसंदीदा सारे
1: ओहो, क्या
0: गीतों
1: बात
0: में।
1: है। नहीं, गाना तो भाई,
0: और
1: गाना तो वाकई प्यारा है। चलिए
0: जी
1: आपकी
0: मैं नाम ले लूं अपने परिवार का।
1: देखिए, बहुत सारे लोग आपकी तरह दीक्षा जी इंतज़ार करते रहते हैं कि उनकी कॉल लगे,
0: नहीं मैम
1: तो
0: मैं
1: बार बार ये
0: सिर्फ
1: कहना
0: अपने
1: अच्छा
0: परिवार
1: नहीं
0: का नाम
1: लगता है।
0: लूंगी।
1: चलिए, अच्छा ले लीजिए।
0: मेरे पति हैं श्री भीमलाल पाली, मेरे बड़े बेटे हैं उल्लास पाली, छोटे बेटे हैं उत्कर्ष पाली और मैं दीक्षा पाली बस मैम,
1: चलिए
0: और
1: चलिए,
0: आपको भी डेडिकेट रहेगा।
1: धन्यवाद धन्यवाद दीक्षा जी। चलिए, आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
0: जी मैम धन्यवाद,
1: धन्यवाद धन्यवाद,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते।

0: हेलो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी, मैं रामराज, जिला राजरैली, ग्राम पहाड़ीपुर से रामराज बोल रहा हूँ।
0: रामराज,
1: जी
0: क्या बात है रामराज जी, और बताइए क्या करते
1: जी
0: हैं
1: मुझे
0: आप?
1: जी, हम तो घर पर रहते, बकरी वकरी चराते हैं।
0: बकरी बकरी चराते
1: जी,
0: हैं।
1: हमारी उम्र 60 साल की है। जी,
0: 60 साल की है।
1: हम बहुत दिनों से आपका कार्यक्रम सुनते हैं।
0: धन्यवाद आपका, आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और सिर्फ बकरी
1: जी
0: बकरी
1: मुझे
0: चराते
1: गाना
0: हैं।
1: सुनना है।
0: अच्छा, जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं।
1: जी मुझे फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे, क्या होती है ऊंची जात, लोग बड़े और छोटी बात। जी
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम
1: एक दो दो तीन लोगों के नाम ले ले, बहुत जल्दी से। जी
0: ले लीजिए।
1: रामशंकर साहू, रसूलपुर वाले, रक्षा मौर्या भाई, रामशंकर पत्रकार भाई वाले, राजू भानु। और जी पूरा गाना नहीं सुनाना क्योंकि दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, आधा गाना हमारा सुनाना।
0: अच्छा, चलिए,
1: जी
0: धन्यवाद
1: सभी
0: आपने।
1: के, हमें तो कहते हैं सभी को आधे आधे गाने सुना तो सभी के फोन लगेंगे। जी
0: चलिए, हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, कुछ तुम
1: हेलो
0: कहो कुछ हम कहें। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताइए।
1: मैं अशोक कुमार बोल रहा था जबलपुर एमपी से। जी
0: जबलपुर एमपी से अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका
1: जी
0: इस कार्यक्रम
1: जी
0: में।
1: धन्यवाद।
0: क्या करते हैं?
1: मैं बिजनेस करता हूँ मैडम। हाँ,
0: बिजनेस करते हैं? किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप?
1: अभी मौसम कैसा है लखनऊ में?
0: मौसम बारिश बहुत तो नहीं है, लेकिन बारिश जैसा मौसम बना हुआ है।
1: अच्छा, यहाँ भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, मौसम बना हुआ है।
0: जी जी जी
1: एक हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। तो क्या है कि लोग हर मौसम में परेशान रहते हैं। ठंड गई तो बोलते हैं बहुत ठंड है,
0: जी
1: गर्मी आई तो बोलते हैं बहुत गर्मी है।
0: देखिए, अति तो किसी भी
1: अभी
0: चीज़ की बुरी ही होती है।
1: अभी बारिश आएगी, बस भगवान से यही दुआ है कहीं प्रलय ना आए,
0: अरे
1: लिमिटेड
0: ईश्वर ना
1: पानी
0: करे।
1: गिरे और किसान भाई खुश रहे।
0: हाँ भाई, देखिए किसान भाई खुश रहेंगे, अच्छी बारिश होगी, अच्छी खेती होगी, तभी हम खुश रहेंगे,
1: जी जी
0: क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, हम सभी का पेट वही भरते हैं। तो बताइए, क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
1: मैं लोफर फिल्म है,
0: जी,
1: आज मौसम बेईमान है।
0: आज मौसम बड़ा बेईमान है, मोहम्मद रफ़ी
1: जी
0: साहब की
1: जी जी
0: आवाज़ में।
1: जी मोहम्मद साहब का आवाज़ है।
0: जी चलिए, हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी, बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत धन्यवाद, बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते, वेरी
1: गुड मॉर्निंग मैम
0: गुड मॉर्निंग। नाम बताइए।
1: जी। मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ मैम।
0: हरियाणा से बात कर रहे हैं। श्री,
1: हाँ जी,
0: आप अपना नाम एक बार
1: आपकी
0: फिर
1: आवाज़
0: से
1: बहुत कम आ रही है मैम
0: आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए।
1: जी। मैम श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा
0: श्रीपाल
1: से। हाँ
0: गोयल, हरियाणा से। अच्छा लगता है आप
1: जी
0: लोग
1: मैम
0: इतनी दूर से हमें कॉल करते हैं, हमारे कार्यक्रम
1: जी
0: सुनते हैं।
1: जी
0: तो श्रीपाल जी, क्या करते हैं आप?
1: मैम दिल्ली में काम करते हैं कंपनी में।
0: जी
1: अभी
0: जी
1: ड्यूटी पे ही थे, बस ट्राई कर रहे थे, कॉल कॉल भी लग गई तो काफी अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई। आप लोग इतनी शिद्दत से हमें कॉल लगाते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: कैसा मौसम है दिल्ली का?
1: मैम, आज सुबह से मतलब बारिश हो रही है, रात के 2 बजे से करीब।
0: अच्छा जी।
1: अभी थोड़ा मतलब धूप निकली हुई है, लेकिन सुबह जो मतलब अच्छी बारिश हुई है आज।
0: अच्छा, चलिए।

0: तो थोड़ा सा मौसम हल्का सा ठंडा हुआ होगा।
1: हाँ जी बिल्कुल मैम।
0: चलिए शिपाल जी, हम आप क्या सुनना चाह रहे हैं ये तो बताइए।
1: हाँ जी मैम, फिल्म आज का बॉस से है दिल ना लगाना, दिल दा साया झूठे है।
0: चलिए हम आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं आपको।
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए। धन्यवाद।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हेलो।
1: आई है बरसात भीग जाएंगे हम, आई है बरसात भीग जाएंगे हम, याद करेंगे उन गुजरे हुए पलों को, एक बार फिर से मुस्कुराएंगे हम। मैम गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। कितनी खूबसूरत लाइनें आपने सुनाई
1: जी मैम, थैंक यू सो मच।
0: तो
1: और
0: इतनी
1: मैं कानपुर
0: खूबसूरत
1: से पूनम
0: लाइन।
1: बात कर रही हूँ।
0: जी
1: मैं पूनम बोल रही हूँ कानपुर से। मैम कैसी हैं?
0: पूनम जी, बढ़िया हूँ मैं। आप कैसी हैं पूनम जी?
1: जी मैम, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आपसे बातें आज हो रही हैं, और बहुत दिनों बाद भाषा मैम आज से बातें करने का मौका मिला है।
0: धन्यवाद पूनम जी।
1: जी
0: और
1: तो
0: जी पूनम।
1: मैम, आज बारिश भी हो रही है और भीगी भीगी सी रुत है, और आप उसमें से इतने अच्छे अच्छे गाने की बारिश करवा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको।
0: आप सभी का शुक्रिया। आप इतने अच्छे अच्छे गाने बता रहे हो
1: जी
0: कॉल करके।
1: बिल्कुल
0: तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाह रही हैं आप पूनम?
1: मैम, आज गीत सुना दीजिएगा। संग्राम फिल्म का गाना है, भीगी हुई है रात मगर, ये गीत तो मुझे अच्छा लगता है। और ये गीत मैं भाषा मैम आपको और जितने भी लाइव श्रोता सुन रहे हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कार्यक्रम, सभी को सुनाना चाहती हूँ।
0: चलिए, आपकी पसंद का ये गीत सभी सुनेंगे, मैं भी।
1: जी थैंक यू मैम, बाय बाय।
0: बाय।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी
1: हेलो
0: हेलो हेलो
1: जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: दीदी मैं ग्राम बिड़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया से लोकचंद गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में लोकचंद जी।
1: जी दीदी धन्यवाद। और आज मेरा कॉल दीदी 2 माह बाद लगा है, क्योंकि जी नए नए श्रोताओं को मौका देना, अपन तो पुराने श्रोता है दीदी, तो लेकिन नए नए श्रोताओं को मौका देते रहे तो अच्छी बात है।
0: जी जी आपने बिल्कुल,
1: ऐसे हैं कि वो कंटिन्यू लगाते रहते हैं सदा कॉल, तो उनसे निवेदन करूंगा कि भाई आप लगाते हो चलो अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम तो देना चाहिए हर किसी श्रोता को कि वो नए नए श्रोता जुड़ सके।
0: जी बिल्कुल, और अच्छा लगता है आप सभी कॉल करते हैं, और आप ही की तरह अगर हमारे नए श्रोता भी हमसे जुड़े। जी
1: जी दीदी
0: कह रहे हैं आप ही की तरह हमारे नए श्रोता भी हमसे जुड़ेंगे, हमसे बातें करेंगे, अपनी पसंद का गीत सुनेंगे, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी।
1: जी दीदी बिल्कुल यही मैं चाहता हूँ कि नए नए श्रोता जुड़े, जो कि पुराने श्रोता हैं भी तो जुड़ते ही माने रहते हैं, लेकिन नए नए श्रोता जुड़े तो और अच्छी अपनी खुशी की बात होगी कि चलो नए नए श्रोता जुड़ते हैं, क्योंकि अपने पुराने जो भी श्रोता हैं वो इतने ज्यादा लगाते हैं कि कंटिन्यू डेली ना ही लगाते रहते हैं, तो हालांकि आकाशवाणी तो सबकी है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी को मौका ना देने चाहिए, क्योंकि उनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनसे मेरी निवेदन है गुजारिश है कि नए नए श्रोताओं को मौका दें। तुम्हारा कॉल तो लगता रहता है, लेकिन नए नए श्रोताओं को लग जाए तो और अच्छी बात।
0: जी जी चलिए लोकचंद जी, आप कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं?
1: जी दीदी जुनून फिल्म का एक गीत है, मिलते मिलते हसीं वादियों में, और 2-4 दोस्त है उनको याद कर सकता हूँ दीदी।
0: फटाफट कीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल, टाइम कम है और मैं जल्द से जल्द हूँ। जयपाल यादव जी हैं, सतीश जी है फरुखाबाद के, अंजलि जाटव हैं, उदिता विश्वकर्मा जी हैं, पूनम जी हैं, और शबनम अब्बासी हैं, और मेहरबान नागल जी हैं।
0: चलिए चलिए सुनवा रहे हम आपकी पसंद का गीत, धन्यवाद।
1: जी दीदी

ये है आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। आप सुनिए ये गीत और दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से भाषा को नमस्कार।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम, प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
0: इसे तराशा जाता है,

0: और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी जी जी, मैं समझ गई। ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी,
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और

0: शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
4: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दूं?
5: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
4: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो, इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
6: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम

0: आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है
3: महाराज। मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: ये हंस कैसे बताएगा?
6: घड़ी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
7: किसके पास जा
6: रहा है?
7: देवदत्त तो कह रहे हैं उनका है।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
8: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: महाराज की जय हो।
12: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
13: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
6: आदित्य

0: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
1: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
2: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
1: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
2: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
3: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
2: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
3: जी मेरा नाम श्रुति है।
2: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
4: सूर्य ग्रह है या तारा?
2: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
1: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
2: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
1: अच्छा सर।
5: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
3: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
2: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
5: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
2: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
5: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
2: शाबाश, समझ गए ना?
1: जी सर।
3: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
5: सर आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
2: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
1: जी जी सर।
2: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
2: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
5: सर मेरा नाम दिवाकर है।
2: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
1: जी सर।
2: जी दिवाकर आपका प्रश्न क्या है?
5: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
2: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
1: जी सर।
3: सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
2: देखो बेटी L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है।

0: पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
2: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे सुनने वाले कर श्रोताओं को भाषा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं चालाक फिल्म के इस खूबसूरत चुलबुले गीत के साथ, जिसमें अपनी आवाज दी है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत गणेश का।

चालाक फिल्म का अभी आपने सुना ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। प्यासा सावन, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और लीजिए सुनिए रिश्ता कागज़ का, फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में, संगीत राजेश रोशन का।

आप सुन रहे थे रिश्ता कागज़ का फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बड़े दिल वाला, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने तीसरी आंख फिल्म का गीत सुना। इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1 बजने को हैं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंचे।

0: रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिडिल वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। चक गुमानी सूर्यामा से उर्मिला ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री नीतू, जिनकी उम्र है 18 वर्ष, रंगे हुआ, कद 152 सेंटीमीटर, चेहरा लंबा है, ये लापता हो गई हैं। इनके मिलने के संबंध में यदि कोई भी जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना सूर्यामा, जनपद भदोही। रेशमा कुमारी के लापता होने के संबंध में उषा देवी ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री रेशमा कुमारी, जिनकी उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंगे हुआ, चेहरा सामान्य है, ये दिनांक 23 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके मिलने के बारे में यदि कोई भी सूचना हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना गोपीगंज, जनपद भदोही। विकास कुमार गौतम ने सूचित किया है कि सुमन देवी, जिनकी उम्र है 22 वर्ष, कद सामान्य, रंग सांवला, शरीर पतला है, ये दिनांक 27 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके मिलने से संबंधित यदि कोई भी सूचना हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना गोपीगंज, जनपद भदोही। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
7: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से

शुक्रवार दोपहर 12 बजे। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं, कुछ पलों में इलाकाई खबरें नश्र की जाएगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले से मुल्क गिर विकसित भारत रोजगार और रोजी रोटी मिशन देही VBG रामजी का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज ज़िले से ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हुए। VBG रामजी गारंटी एक्ट 2025 कल से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है। इस एक्ट के तहत अहल देही कुनबों को अब 125 दिन की ज़मानत शुदा उजरत मुलाजमत का कानूनी हक मिलेगा। हुकूमत ने VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए मुआवजे की नज़रसानी शुदा शरहों का भी नोटिफिकेशन जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकज़ी काबीना ने कल उत्तर प्रदेश में कौमी शाहराह नंबर 34 के तकरीबन 118 किलोमीटर तवील एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को मंजूरी दे दी। काबीना के फैसले पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इत्तिलात और नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की तखमीनी लागत 7,145 करोड़ रुपये होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये अहम प्रोजेक्ट PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को बग़ैर किसी रुकावट के राबता फराहम करेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को फ़जाई रबते से जोड़ा जाएगा जिससे उसकी तरक्की में मज़ीद तेज़ी आएगी। इससे कबल वज़ीर आला ने सहारनपुर के हायर प्राइमरी कंपोजिट स्कूल इस्माइलपुर से रियासत गिर स्कूल चलो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने स्कूल चलो मुहिम को अवामी तहरीक बनाने की अपील की।
1: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से रियासत गिर मुतादी बीमारी पर काबू पाने की मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने वबाई अमराज से बचाव के लिए आगाही रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने दस्तक मुहिम का भी आगाज़ किया जो 11 से 31 जुलाई तक चलाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमती कोशिशों के साथ साथ आवाम की शिरकत भी ज़रूरी है। कल रियासत के तकरीबन सभी अजला बशमूल वाराणसी गोरखपुर चंदौली देवरिया और अम्बेडकर नगर में अवामी बेदारियाँ रैलियां निकालकर लोगों को मुतादी बीमारियों से बचाव का पैगाम दिया गया। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक रियासत के 60 अजला के 955 इम्तहानी मराकज पर मुनक्किद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की

0: समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: इस सिलसिले में शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीज़न आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के दरमियान बग़ैर रिजर्वेशन वाली इम्तहान खसूसी 2 ट्रेनें चला रहा है। इस ट्रेन में 12 बिना रिजर्वेशन वाले डिब्बे होंगे। रियासती हुकूमत ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के इल्ज़ाम की जाँच करने वाली खसूसी तफ्तीशी टीम SIT को मज़ीद 15 दिन की मोहलत दी है। 15 जून को तश्कील दी गई इस SIT को 7 दिन के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन आखिरी तारीख 30 जून को ख़त्म हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: मिडवेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

अन्न हो, धन हो, स्वस्थ तन मन हो, हरा भरा खेत हो, खुशहाल घर आंगन हो। यह कामना के साथ हमरी सभा सखियन का प्रतिभा त्रिपाठी क्यार नमस्कार। श्रोता सखियों, देखो हमरे जोन बूढ़ पुरनिया हैं, जो हमरे हितुआ हैं, अगर आप उनका जब भाई देखो और ध्यान दो तो वही हमका जब भी कभो आशीष देते हैं तो का कही हैं भाई, यह कहते ना खुश रहो हैं। और काहे कहते, काहे से कि देखो खुशी के सीधा संबंध जो है वही हमरे स्वास्थ्य से है, और स्वास्थ्य जो है वही सबसे बड़ा धन होत है। मूल हम पंचन का करी थन कि रुपया पैसा गाड़ी बंगला हेन तेन मने जोन भौतिक सुख सुविधा है वह का असली धन मान बैठी थन, और या भूल जाए थन कि या सब क्षणिक सुख है या बस हमका कुछ देर खातिर जो उन्हें सुख के एहसास कराए सकत है। मूल असली धन जो उन्हें वही तो हमार अच्छा स्वास्थ्य है। तो जीवन में स्वास्थ्य के पूंजी जोड़े के प्रयास करे का चाहिए, और यही के खातिर देखो भाई कुछ कामों करे का है। जैसे जब धन संपत्ति की बात आवत थी तो काम करे के पड़ा था कि नहीं, तो या ना सोचो कि या जो स्वास्थ्य रूपी हमारा धन है तो यही का हम अगर देखभाल ना करबे या कुछ ना करबे तो यह बना रही, हाँ यह गलती कर दी थन। तो हमार जो स्वास्थ्य रूपी धन है वही बना रहे, यही के लिए हमका जीवन में अनुशासन के पालन करब बहुत जरूरी है। अनुशासित जीवन जो होते वह स्वस्थ होते, और यही का मतलब है देखो, यही का मतलब यह है कि हम समय से अपने जो दिनचर्या है वही कर, हर काम समय से करी, समय से सोवे का है, समय से जागे का है, समय से खाए का है। हाँ बहुत बड़े लोग होत का है ना कि उनका अगर मान लो रात है जैसे, तो वही सोचिए कि भाई अब रात में तक हो तो हमको कुछ काम करे करे ना, अब वही लिए मोबाइल जो उन्हें देख रहे हैं उनका या नहीं पता कि भाई समय से सोई हैं, तब तो सवेरे समय से जगी हैं, और यह चक्कर में पूरा दिन के जो उन्हें उनका दिनचर्या गड़बड़ाई जाती, और यही कर सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़त है। जब देखो नींद पूरी नहीं होता तो आप थके थके रह, तो सोए के उठिए वह के बाद तो थकान रहती, हाँ जो चेहरे पर एक रौनक रहती वही नहीं रही, कोनो काम करे में मन नहीं लागत है, भूख नहीं लागत है, तो यह सब जो ने हमरे दिनचर्या की गड़बड़ी के कारण होती है। तो हमका भाई अपने जो सबसे पहला ध्यान देवे का है वही अपने स्वास्थ्य पर, अपने दिनचर्या पर, वही माँ जो ने एक अच्छा अनुशासन के पालन करे का है। कहे कि देखो जौन भी कुछ हमारे पास सुख सुविधा के संसाधन है ना, जो हम जुटाई थन वही कर सुख हम तबह ले पाऊ जबकि हम स्वस्थ रह। कहे कि देखो बीमार मनई जोन होते हैं वही तो भाई ना तो अच्छा भोजन कही सकते हैं, ना वो कहूँ घूमे फिरे जाए पही हैं, ना वो कहूँ अच्छा पही रोड़ पही हैं, कैसे कि मने ना लगी भाई, जब बीमार मनई तो का नीक लगी है। तो यह लिए हमका सबसे पहले अपने सेहत पर, अपने तन और मन के स्वास्थ्य पर ध्यान देवे का है। और हाँ देखो एक बात और बताई कि कौबेर होते ना कि मान लो अगर कोनो परेशानी हो गई भाई, कौ समय है कबो कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती शरीर में, तो यही के लिए का करे का है कि हमका अपने से अपन इलाज ना करे का चाहिए। आपन डॉक्टर जो उन लोग खुद बन जाते हैं ना, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो यही के लिए भाई अपनी जो है समस्या का एक डॉक्टर से मिलके और उनके सलाह के अनुसार इलाज करावे का चाहिए।

और देखो डॉक्टर के बाद चली तो आप सबका बतावत चली कि काल यानी कि 1 जुलाई का चिकित्सक दिवस भी मनावा गवा है, और यह दिवस के माध्यम से हम सब का जो उन्हें अपने जो चिकित्सक हैं उनके प्रति सम्मान और आभार प्रकट करे का चाहिए। कहे कि देखो जो डॉक्टर लोग हैं ना उनका धरती के भगवान कहा जाते हैं, और यह बात सही भी है। आप सब भी महसूस की हो कि कऊ बेर ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती कि हम ऐसी समस्या में फंस जाए थन कि जगह कहा जाता ना कि मौत के मुंह से हमका निकाल के ले आवत हैं, हमार चिकित्सा करत हैं, हमारे स्वास्थ्य के देखभाल करत हैं, तो ये डॉक्टर होते हैं। तो यह से देखो डॉक्टर का प्रति आभार प्रकट करे के चाहिए, उनका सम्मान करे के चाहिए, और उनसे एक बात सीखे का भी चाहिए कि जब भी कभी मौका मिले तो हमहूँ जो है दूसरे की जो सहायता कर सके वही जरूर करे के चाहिए हमका। तो आपका भी यह मौका है कि भाई अपने डॉक्टर के प्रति अपन जो सम्मान है वो जरूर प्रकट करो। और एक बात और यह मैं जोड़ा चाहती थी कि कोविड आपंचन भी अगर अस्पताल गए हुई हो तो देखे हुई हो कि अगर मान लो तनुक डॉक्टर साहब व्यस्त हैं या भीड़ ज़्यादा है तो कौ लोगों जो उन्हें वही अपन आपा खोई देते हैं ना, तो यह सोचो कि भाई वही आपे के तो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि जो अगला मन नहीं है वही हमसे ज़्यादा परेशान हो, वही का पहले जरूरत हो। हाँ, तो थोड़ा सा भाई जीवन में धैर्य भी रखे का चाहिए, या नहीं कि बस एकदम जो उन्हें आपा मन नहीं खोई देते हैं और फिर या नहीं सोच पाते नुत्ती बेरिया कि हम जो यह काम कर रहे हैं ये कितना सही है कितना गलत है। तो इन बातन के ध्यान रखो, और साथ में एक और बात के ध्यान रखो कि जब आप अपने डॉक्टर की सलाह जो उन्होंने दिए हैं वही का पूरा पूरा मानो। कुछ लोगों भाई पर्चा पर दवाई लिखवा के ले आई है वही के बाद आधा खाएं छोड़ दी ना बिना डॉक्टर की सलाह के। अब का होते कि जब आप दवाई पूरी नहीं खाते हो तो वैसे आपकी जो बीमारी है ना वही कुछ दिन बाद और बढ़ के आवत ही। तो यही से देखो एक तो पैसा रुपया के भी नुकसान होते, समय के भी नुकसान होते, और सबसे बड़ा जो भ्रम फैलत है वही का हुई कि भाई वही तो फला डॉक्टर रहे दवाई ठीक से नहीं दी ना, और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़त है। तो यह काम नहीं करे का है हमका, हमका डॉक्टर की सलाह के अनुसार जितने दिन की दवाई वो बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं वही का पूरा पूरा पालन करे का है। तो इन बातन के ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। कैसे कि प्रसन्नता जो है बहुत भाई बड़ी चीज़ है। और आपका एक बात पता है कि हमका प्रसन्न रखे में, हमका स्वस्थ रखे में संगीत जो है ना वही की भी बड़ी बहुत बड़ी भूमिका होती। कैसे कि देखो कऊ बेर अगर मान लो कोनो कारण से मन खराब है या कुछ हमका नीक नहीं लग रहा है और वही समय अगर आप बढ़िया से संगीत सुन लियो तो कई देखो मन खुश हो जाते, और संगीत जो है वही हर उत्सव की जान होती है ऐसे ना। तो भाई देखो मौका भी है कार्यक्रम में, तो चलो हम अपने श्रोता पंचन का एक बढ़िया सा गवनी सुनवा रहे हैं 12 मासा। आप सब आनंद उठाओ या लोकगीत के।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोता पंचो, देखो आज हम जैसे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और हमारे शरीर का स्वस्थ रखे में हमारे जो दांत हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कहे से कि भाई जोन हम खाई पीत हैं वही वह से हमारा स्वास्थ्य बनत है, और अगर हमारे दांत जोन है वही स्वस्थ ना रही तो फिर हम नीके तान से खाई पी नहीं सकते हैं ना। तो यह लिए हमका अपने दांतन की जोन है देखभाल कर बहुत ज़रूरी है कि हमारे दांत जोन है वही स्वस्थ रहें। और देखो अगर हम ठीक से देखभाल करी ना अपने दांत की तो या जोन है बाल्यावस्था से लेके और वृद्धावस्था तक हमारा साथ देते हैं, और भाई अगर साथ दी हैं तो हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा रही है। लेकिन कई बार कुछ जानकारी के अभाव में कुछ गलती करे के कारण हाँ होता है कि दांत संबंधी बहुत सी समस्या हमका हो जाती हैं, और दांत खराब होए में हमारे मसूढ़े जो है ना उन्होंने उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कहे से कि दांत जो है वही मसूढ़े के साथ ही रहते हैं, वो इनका एक तरह से सुरक्षा कवच देते हैं। तो अगर मसूढ़े में कोई समस्या हुई तो दांत में भी समस्या हुई, तो इन सब से कैसे बचा जा सकत है, कैसे अपने दांत मसूढ़े इनका स्वस्थ रखा जा सकत है, तो इन सब तमाम बातन की जानकारी के लिए आज हम अपने श्रोता पंचन का एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं, जो ने के विषय है कि मसूढ़ों की बीमारी कारण लक्षण एवं बचाव, और ये के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नवनीत जायसवाल भैया, और इनसे बतवानी है ज्योति चंद्रा बहनी। तो चलो सुना जाए या भेंट वार्ता।
6: घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज स्टूडियो में हमने बुलाया है डॉक्टर नवनीत जायसवाल जी को, जो कि दंत चिकित्सक है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद।
6: श्रोताओं, आज हम मसूड़ों की बीमारी के कारण लक्षण और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले श्रोताओं को डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल दांतों में इतनी समस्या

0: वो क्यों रही हैं, खासकर जो बच्चे हैं उनको दांतों में आजकल बहुत समस्याएं होती हैं शुरुआत में ही, जैसे छोटा बच्चा है दूध की बोतल से ही उसको इतना इन्फेक्शन हो जाता है।
1: देखिए, अब बच्चों के दांत निकले तब से ही हमें ध्यान देना चाहिए।
0: जी
1: जब बच्चों के दांत लगभग 6 महीने के आसपास पहला दांत नीचे का आ जाता है,

0: कर देने चाहिए, फिंगर ब्रशेस आते हैं,
1: जी
0: हमें उससे भी क्लीनिंग करना चाहिए, लगभग 6 मंथ के आसपास स्टार्ट कर देना चाहिए। और एक सबसे प्रॉब्लम वाली बात है बॉटल फीडिंग।
1: जी
0: बॉटल फीडिंग आजकल माओं को बहुत इजी रहता है बच्चों को बॉटल पिला के सुला देने के लिए। आप
1: जी
0: बॉटल फीडिंग करा सकते हैं, बट रात में जब बच्चा सोने जा रहा हो उस समय बॉटल फीड ना कराइए। अगर बहुत कंपलसरी है तो आप बॉटल फीडिंग कराने के बाद एक फ्रेश बॉटल रखिए जिसमें कि प्लेन वाटर हो, एक
1: जी
0: सादा पानी हो, उससे भी फिर बच्चे को लगाइए, ताकि जो मुंह में उस दूध के साथ में जो शुगर जा रहा है तो उसके बाद एक प्लेन वाटर से भी बच्चा पी ले, ताकि कैविटीज़ के चांसेस काफ़ी कम हो जाएं, दांत में कीड़े लगने की समस्या काफ़ी कम हो जाए।
1: ये कहा जाता है कि मीठी चीज़ें बच्चों के दांतों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती
0: हाँ,
1: हैं।
0: देखिए होता क्या है कि जो मीठी चीज़ें हैं वो दांतों पे जाके स्टिक कर जाती है, जिससे
1: जी
0: कि जो बैक्टीरियाज़ हैं वो ग्रो करने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं और कैविटीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बच्चों में कीड़ा लगने की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आप दोनों टाइम ब्रश कराना बच्चों को, सुबह भी और रात में सोने से पहले भी
1: जी
0: दोनों टाइम ब्रश भी कराना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, बॉटल फीडिंग जितना हो सके जल्दी से जल्दी छुड़वाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, ये जानना था क्या जो दूध के दांत आपने बताया बच्चों के आ जाते हैं, तो उनके खराब होने पर इलाज कराना जरूरी है कि हम इंतजार करें कि टूट जाएंगे, गिरे?
0: देखिए आजकल बहुत बड़ा ये एक मिथ है कि अगर दूध के दांत हैं तो वो गिर ही जाएंगे, हम उनका इलाज ना भी कराएं तब भी चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक दांत के निकलने का पैटर्न होता है, वो जो दूध का दांत है वो जो निकलेगा गिरेगा, उसके बाद जो उस बच्चे के परमानेंट दांत आएंगे
1: जी
0: वो एक सीक्वेंस पे आधारित होता है। अगर हम पहले भी उस बच्चे के दांत जिसमें कीड़ा लगा है हमने उसको निकाल दिया या खुद से वो गिर गया,
1: जी
0: तो फिर जो दांत निकल रहा है, जो एक परमानेंट दांत आ रहा है, वो फिर आगे पीछे टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या बच्चों में बहुत कॉमन हो जाती है।
1: जी
0: इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर शुरुआत में ही उसमें कोई कीड़ा हमें दिख रहा है बच्चों के दांतों में, तो उसका किसी दंत चिकित्सक के पास जाके उसका इलाज करवाइए, उसको समय से पहले मत निकलवाइए।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही प्रश्न करने ही वाली थी।
0: जी
1: चलिए, तो ये मतलब कि हमें पहले से ध्यान रखना चाहिए, दूध के दांत अगर गिर गए हैं, उसमें कीड़े लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, उसका हमें प्रॉपर
0: हमें
1: इलाज
0: बिल्कुल
1: करना
0: इलाज
1: है।
0: हमें कराना है और समय से कराना है।
1: जी, बच्चों को बोला जाता है कि मीठा कम खाएं, और रात में तो खासकर, और ठंडी चीज़ों से क्या परहेज़ करना ज़रूरी होता है?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है, और मीठा आप कितना ही बच्चों को रोक सकते हैं मीठा खाने के लिए, लेकिन आप उनकी हाइजीन पे बहुत ध्यान रखिए, ओरल हाइजीन पे।
1: जी
0: आप मीठा भले ही बच्चे खा रहे हों बट उसको ब्रशिंग करना सिखाइए,
1: जी
0: आप बच्चों के सामने खड़े होकर ब्रश करिए तो बच्चे आपको देख के सीखते हैं।
1: जी मतलब बच्चों में स्वस्थ दांतों के लिए रोजाना हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी, जैसे कि ब्रश कराना पड़ेगा 2 टाइम,
0: दो टाइम
1: जरूरी
0: देखिए,
1: है।
0: शुरुआत में जब बच्चा छोटा है तो आप कोशिश करिए कि खुद अपने हाथ से ब्रश कराइए, जब तक कि
1: जी
0: वो 4-5 साल का ना हो जाए,
1: जी
0: और उसके सामने खड़े होकर खुद भी ब्रश करिए,
1: जी
0: तो उससे बच्चों में एक अच्छी हैबिट आती है ब्रशिंग
1: जी
0: करने की।
1: डॉक्टर साहब, अभी तक तो हमने बच्चों की बात करी, आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कुछ गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको भी दांतों में कुछ समस्याएं होती हैं, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं,
1: जी
0: जिसकी वजह से भी मसूड़ों में और दांतों में कैविटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बहुत सी दवाइयां चलती रहती हैं
1: जी
0: उसकी वजह से भी मसूड़ों में इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि रेगुलर चेकअप, मतलब एक नियमित दंत चिकित्सक के पास जाके चेकअप कराते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है मसूड़ों से खून आने की,
1: जी
0: जो कि गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके मसूड़े से खून आने की, नॉर्मल टर्म में बोलें तो टार्टर आ जाता है, दांत हैं और मसूड़े के बीच में
1: जी
0: जहाँ पे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं,
1: जी
0: और वो गर्भवती महिलाओं में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए।
1: जी
0: तो हमें नियमित सफाई हर 6 महीने पर जाके एक बार कराना ही चाहिए, और ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए।
1: जी तो बहनें हमारी जानेंगी कि गर्भावस्था में अगर उनको कोई दांत की समस्या होती है, तो उनको दंत चिकित्सक के पास जाके रेगुलर चेकअप कराना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: चाहिए।
0: कराना चाहिए।
1: अब हम बुज़ुर्गों के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे कि आजकल सुनाई देता है, और हम लोग देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों में, गांव वाले एरिया
0: बिल्कुल
1: में,
0: बिल्कुल
1: रूरल एरिया में, तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट
0: हाँ,
1: पीने की वजह से काफ़ी दांतों की समस्या
0: दांतों की
1: होती
0: समस्या
1: है।
0: होती है। ये सिर्फ बुजुर्गों में नहीं, गांवों में तो अक्सर जो यंग एज में भी, युवावस्था में भी लोगों को आदत पड़ जाती है
1: जी
0: जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा, पान मसाला, इन सब की आदत बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इन सबसे सबसे पहले तो दिक्कत आती है, अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो जो मसूड़े हैं

0: इनमें कमजोर होने की, या दांत हमारा है वो मसूड़े के साथ साथ जो अंदर हड्डी है उससे भी जुड़ा हुआ रहता है।
1: जी
0: तो ये जो तंबाकू है या पान मसाला या फिर बीड़ी सिगरेट, ये सिर्फ हमारे मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये हमारे हड्डी जहाँ पे हमारा दांत लगा हुआ है
1: जी
0: उस पर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो खास तौर से जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं लोग, उनमें अक्सर दांत ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बीड़ी सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं
1: जी
0: उनमें खुद से ही वो दांत अपने आप ही गिर जाता है।
1: जी
0: ठीक है, तो इस समस्या को हम लोग पायरिया बोलते हैं
1: जी
0: कि वो
1: जी
0: पायरिया दांतों में लग गया है।
1: जी
0: और वो जो शहरी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वहां पे लोग ज्यादा दंत चिकित्सक के पास जा सकते
1: जी
0: हैं इन कंपैरिजन टू जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
1: जी जी
0: तो उनको खुद से ही अपना ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ हड्डी के ऊपर नहीं, बहुत से आजकल कैंसर्स भी बहुत जल्द तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में जितना देखा जाता है, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा इंसिडेंस आते हैं,
1: जी
0: क्योंकि वो लोग इतना जागरूक नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है। शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं वो लोग अगर कहीं भी थोड़ा सा भी उनको लगता है कि कुछ व्हाइट पैचेस या रेड पैचेस जैसे कुछ लाल धब्बे या सफेद धब्बे मुंह के अंदर दिख रहे हैं, तो वो
1: जी
0: तुरंत अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत लेटर स्टेज में पहुंच जाता है,
1: जी
0: तो फिर हमें उसको ट्रीट करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने ये दांतों की मसूड़ों की बीमारी पायरिया के बारे में बताया, इसको कैसे पहचाने, क्या
0: हाँ,
1: लक्षण हो
0: देखिए,
1: सकते?
0: पायरिया स्टार्ट होता है सबसे पहले हमारे मुंह से बदबू आना
1: जी
0: या मुंह से खून आना, खून
1: जी
0: आने की समस्या, ये सबसे
1: जी
0: पहला लक्षण है पायरिया का।
1: जी
0: और खून हमें पता कब लगता है, जब हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, हमने ब्रश करके स्पिट किया तो हमें दिखाई पड़ता है कुछ लाल लाल सा उसमें आ रहा है, तो
1: जी
0: हमें तुरंत अपने दंत चिकित्सक से मिलना चाहिए कि ये इस खून का कारण क्या है।
1: जी पायरिया में ठंडा गर्म भी
0: ठंडा
1: अवॉइड
0: गर्म
1: करना।
0: लगने का कारण क्या होता है कि अगर दांत और मसूड़े के बीच में काफी ज्यादा हमें गैप दिख रहा हो या हमारे मसूड़े कट रहे हों,
1: जी
0: अक्सर जो सुबह ब्रश करते हैं काफी तेजी से करते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत भी कटने लगते हैं।
1: जी जी घिस
0: ठीक
1: जाते
0: है,
1: हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, दांत हमारे घिस जाते हैं, उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी दांतों में आने लग जाती है।
1: जी
0: तो सिर्फ पायरिया ही एक कारण नहीं है, कुछ येलो कलर का कुछ टार्टर सा हमारे दांतों के ऊपर जम रहा है, तो हम लोग बहुत तेजी से ब्रशिंग करने लगते हैं कि शायद वो उससे चला
1: जी
0: जाएगा,
1: जी जी
0: तो उससे वो तो नहीं जाता है लेकिन हमारे दांत घिस जाते हैं,
1: जी जी
0: तो वो समस्या तब आती है जब वो पायरिया के एडवांस सिम्टम्स में आता है वो चीज़।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मुंह से दुर्गंध आए तो ये पायरिया के लक्षण हो सकते
0: हाँ,
1: हैं, इसके अलावा भी किसी और कारण से भी क्या मुंह से बदबू आ सकती
0: देखिए,
1: है?
0: बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम करता है या फिर कुछ हमारे लीवर में इन्फेक्शन होते हैं
1: जी
0: या बहुत एसिडिटी कुछ लोगों को रहती
1: जी
0: है।
1: जी कई
0: ठीक
1: बार देखा जाता है दांतों के बीच में जैसे काली काली लाइन टाइप की बन जाती
0: हाँ,
1: है,
0: इसको
1: तो
0: नॉर्मल टर्म है जो लोग बोलते हैं, टार्टर हमारे मुंह में जम गया है,
1: जी जी
0: टेक्निकल टर्म इसका कैलकुलस होता है, जो कि हमें खुद से नहीं हटाया जा सकता और वो डॉक्टर के पास ही
1: जी
0: जाके स्केलिंग के द्वारा उसको आप हटा सकते हैं। और जैसा कि लोग सोचते हैं कि स्केलिंग के बाद में कुछ सेंसिटिविटी आ जाएगी या हमारे दांत बहुत कमजोर हो जाएंगे, ये एक
1: जी
0: बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। स्केलिंग के बाद सबसे पहली चीज़ तो हम दांतों के मुंह की सफाई कर रहे हैं, मशीन जो यूज़ होती है उससे सिर्फ वाइब्रेट करके उस टार्टर को ही हटाती है। और
1: जी
0: अक्सर ये होता है कि जब दांतों के ऊपर ये टार्टर धीरे धीरे करके हमारे जड़ों तक पहुंचता रहता है,
1: जी
0: जब हम उसको हटाते हैं तो ये 4-5 दिनों के लिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी आती है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ ऐसा पेस्ट वो आपको रिकमेंड करते हैं कि वो सेंसिटिविटी
1: कम हो
0: बंद रुक
1: जाए।
0: जाती है।
1: जी
0: बिल्कुल, तो हमें स्केलिंग तो कराना चाहिए हर 1 साल में 2 साल में, डॉक्टर से कंसल्ट करके स्केलिंग कराते रहना चाहिए।
1: कई लोग कहते हैं कि सफाई कराने से दांत घिस जाते हैं,
0: बहुत बड़ा मिथ है,
1: मिथ है।
0: स्केलिंग कराने के बाद या दांतों की सफाई कराने के बाद दांत
1: जी
0: हमारे घिस जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस मशीन से सफाई की जाती है, अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, वो सिर्फ जितना टार्टर है उस पोर्शन को ही हटाती है। अच्छा, जब ऐसा भी होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा येलो डिपॉजिट्स जिसको कि टार्टर बोला जाता है,
1: जी
0: कुछ येलो सा वो डिपॉजिट हो जाता है, वो डिपॉजिट कहाँ पे होता है, आपके दांत और मसूड़े के बीच में, और वो लगातार नीचे बढ़ता रहता है आपकी हड्डी की तरफ में।
1: जी
0: तो जब हम उसको हटाते हैं तो कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि दांत हमारे थोड़े से हिल रहे हैं,
1: जी जी
0: कुछ टाइम के लिए ऐसा महसूस होता है। और बहुत सी ऐसी दवाएं आती हैं जो कि मसूड़ों पे लगाने के लिए, आप उसको लगाइए तो फिर धीरे धीरे दांत आपके फिर से जमने लगते हैं वहां पे।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कारण क्या होते हैं, दांतों की बीमारियों के लक्षण क्या हो सकते हैं। अब ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हमारे हैं, ग्रामीण बहनें हमारी हैं, वो दांतों के ख्याल रखें ये?
0: देखिए, जितनी टेक्नोलॉजी शहरी क्षेत्रों में है, ये तो नो डाउट कि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ा सा हमें खुद भी अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
1: जी
0: सबसे पहले तो

0: हमें ब्रश नहीं बंद करना है,
1: जी
0: ठीक है। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग होते हैं कुछ पाउडर्स भी अभी भी यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए।
1: अच्छा
0: कुछ ऐसे भी पाउडर्स होते हैं जिसमें तंबाकू भी होता है।
1: जी,
0: काफ़ी ग्रामीण महिलाएं भी यूज़ करती हैं इस ऐसी चीज़ों को। वो एक हैबिट फॉर्मिंग चीज़ है, मतलब
1: अच्छा
0: हमें उसकी आदत पड़ जाती है। जब
1: जी
0: तक
1: जी
0: हमें वो पाउडर नहीं मिलेगा, हम ब्रश करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो
1: जी
0: सबसे पहले तो हमें उसको बंद करना है।
1: जी
0: ये सबसे प्राइमरी कॉज है। जितने भी मुंह की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही हैं, आप अगर देखेंगे तो 10 में से 5 घरों में आपको इस तरह के लोग ही मिलेंगे जो उस पाउडर को ही यूज़ कर रहे हैं।
1: जी
0: बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि तंबाकू के कुछ प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, निकोटीन
1: जी
0: रहता है। वो एक हैबिट फॉर्मिंग होता है, तो हमें उसको बंद करना है थोड़ा।
1: जी अगर किसी वजह से दांतों में कोई समस्या हो जाए और हमें दांत निकलवाना पड़े, तो दांत निकलवाने के बाद हमें क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी?
0: देखिए, आप जब दांत निकलवाने जाएंगे तो जो आपके दंत चिकित्सक हैं आपको पूरा एक लिस्ट देंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं।
1: जी
0: सबसे पहली चीज़ तो अगर बहुत सूजन है और आपने दांत निकलवाया है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत सूजन है तो हम दांत नहीं निकलवा सकते। आप दांत निकलवा सकते हैं। जब आप
1: जी
0: दांत निकलवाएंगे तभी आपको वो रिलीफ मिलेगा।
1: जी
0: तो जब आप दांत निकलवाइए, सबसे पहली चीज़ डॉक्टर को दांत निकलवाने से पहले आपको सब चीज़ें बतानी है कि हम कौन कौन सी मेडिसिन्स हम ले रहे हैं।
1: जी पूरी इस
0: पूरी
1: हिस्ट्री
0: हिस्ट्री
1: बतानी
0: आपको
1: पड़ेगी।
0: बतानी है। ख़ास तौर से महिलाओं में अगर वो गर्भवती हैं तो आपको पहले से ही डॉक्टर को बताना है।
1: जी
0: तो जैसे कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में ही
1: जी
0: उसको ट्रीट किया जाए,
1: जी
0: पहले और आखिरी में ना किया जाए। बहुत स्पेसिफिक दवाएं भी होती हैं, बहुत सी दवाओं को हम लोग अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में देने के लिए।
1: जी जी
0: अच्छा, दांत निकालने के बाद अगर कहीं सूजन है भी तो आपको गर्म चीज़ से सिकाई नहीं करनी है,
1: जी
0: बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने किसी गर्म कपड़े से भी सिकाई कर लिया तो सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ठंडी चीज़ों से सिकाई करनी है, और बार बार कुल्ला नहीं करना है दांत निकलवाने के बाद में, या फिर जहाँ से हमने दांत निकलवाया वहाँ पे हमें दोबारा कुछ भी रुई या कोई भी दवा फिर नहीं लगानी है
1: जी
0: जब तक कि डॉक्टर ना कहे आपको।
1: जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही हमारे श्रोता इसका लाभ उठाएंगे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद ज्योति जी।
2: तो अब है देखो श्रोता पंचन सुनिन या भेंट वार्ता की, मसूड़ों की बीमारी कारण लक्षण एवं बचाओ। जानकारी दिहिन डॉक्टर नवनीत जायसवाल भैया और इनसे बातचीत करें ज्योति चंद्रा बहनी। और हमका पूरी आशा है कि हमारे श्रोता पर जो ने ध्यान से या भेंट वार्ता सुने हुई हैं और डॉक्टर साहब जौन जौन बातें बताई नहीं वही का अपने जीवन में अपनाई हैं भी। अच्छा कुछ एक आदतन के बारे में भाई देखो हमहू देखे हैं तो वह हम थोड़ा जिक्र कह दी। कऊ बेर होत का है ना कि जो हमारे कुछ लोगों का इस देखा गया है कि वही का करी है कि मान लो कोनो ढक्कन खोले का है, कोनो बोतल है, चाहे डिब्बा है, बस वही पट्ट से ना जो दांत लगाई है वैसा खोल देते हैं। तो भाई यह बात का ध्यान रखो कि दांत जो है वही ढक्कन खोले के लिए नहीं बने हैं। हाँ, यह के अलावा अगर कुछ खाइन पीन मान लो दांते में फंस गया है तो वही का करी है कि कोनो भैया नहीं देखते हैं कि पिन है, चाहे वही सेफ्टी पिन है, वह से लेके दांत खोद लेते हैं। तो यह बहुत गलत बात है। यही से दांत जो मसूड़े हैं वही में जख्म हो जाते हैं और यह से फिर पायरिया वरिया की शुरुआत हो जाती। तो यह बिल्कुल ना करे के चाहिए। लड़कन जो ना अंगूठा चूसत हैं तो बहुत से दांत के जो आपके भाई वो है ना डिजाइन होती जो दांत बाहर निकल जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उन पर भी समय पर ध्यान देवे के चाहिए कि लड़कन की अंगूठा चूसे की आदत जो उन्हें समय रहते छुड़ा दिया जाए। और एक काम और भाई हम देखा है कि लोग गाँव गिराव में खास करके अगर दांते में दर्द भवा और बता पता ला के दांत में कीड़ा लाग है तो ये बजाय दंत चिकित्सक के पास जाए के वही का करे थे झाड़ फूक करावे चले जाते हैं और झाड़ फूक कह के वही जो है कीड़ा निकाल के दिखाओ देते हैं और वही सोचते थे कि भाई ठीक होएगा। तो देखो यह सब अंधविश्वास है, यहीं पर भरोसा न करे के चाहिए। अगर दांत में कोनो भी तकलीफ हो तो आप दंत चिकित्सक के पास जाओ और अपन पूरा उपचार कराओ। तो भाई चलो आज के यह भेंट वार्ता आपका कैस लगी यही कर जानकारी हमका आप ईमेल के द्वारा जरूर बतायो। और एक ईमेल हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर ले, या ईमेल हमारे पास आई है ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से। भेजे वाले हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, ऋचा, गुड़िया, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी। और लिखी नहीं कि इनका कार्यक्रम बहुत निक लागत है, इनके घर की सभी महिलाएँ बैठ कर साथ में यह कार्यक्रम सुनती नहीं। और 25 जून के कार्यक्रम में जो अवधि कहानी सुनवाई गई रही शारदा शुक्ला बहनी द्वारा वही भी इनका बहुत पसंद आई है, कार्यक्रम इनका बहुत निक लाग रहा। और साथ ही मैं एक विवाह गीत के फरमाइश भेजी नहीं, तो चलो भैया हम आपका सुनवा रहे हैं, आप आनंद लो या बदना गीत गिर।

और श्रोता बंचो देखो, यह जो मौसम है जैसे कि पता है कि भाई देखो बारिश कहूँ कहूँ शुरू हो ही गई है, बारिश आगे आवे वाली भी है, तो यह मौसम में संचारी रोग जो है उनके बढ़े के फैले की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती। और आपका बताइए कि संचारी रोग जो है वही दूषित भोजन पानी या फिर मच्छर से होने वाली बीमारी इनका कहा जाते, जैसे कि हैजा है, कालरा है, पीलिया, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, या मतलब इसके अलावा त्वचा की जो दाद, खुजली, या सब इतने नाम हैं इन बीमारी के। मूल पता है कि इन सब बीमारी से बचे के एक आसान उपाय है और वही है साफ सफाई रखब, माने कि एक उपाय अपनाए के हम इन तमाम संचारी रोगन से बच सकी थन। और लोगन का यह विषय में जागरूक करे बदे ही काल यानी कि 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो ने वही शुरू किया गवा है। और आपका बताइए कि यह अभियान पूरे 1 महीना तक चले वाला है। यह अभियान के तहत डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर जैसी जो बीमारी हैं बड़ी खतरनाक हो जाती, तो इन पर पूर्ण नियंत्रण पावे के बदे ही लोगन का जागरूक किया जाए। और साथ ही साथ ये जो अभियान है यही के अंतर्गत साफ सफाई, नाली के सफाई, मच्छर के जो लार्वा होते हैं उनका खत्म करे बदे एंटी लार्वा के छिड़काव, हाँ या सब काम जो उन्हें ये किया जाए। पानी के भी जांच हुई कि भाई कहूँ पानी तो दूषित नहीं आ रहा है, तो देखो यह सब काम जो उन्हें सरकारी तौर पर तो किया जाए, लेकिन यही माँ जन सहभागिता जो उन्हें बहुत बहुत जरूरी है। काहे से कि लोग जागरूक ना हुई हैं, लोग अपने आप अपने आसपास साफ सफाई ना रखी हैं, तो कितनों सरकारी प्रयास कर लो काम जो उन्हें अधूरा रह जाते। तो भाई यह आप सबसे निवेदन है कि आप यह माँ जन सहभागिता जरूर दो, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखो। और साथ ही साथ एक और काम भी करे का है कि देखो यह नियंत्रण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वही के सदस्य घर घर जाते हैं, आपसे जानकारी लेते हैं, तो जब सदस्य घर पे पहुंचे जानकारी लें तो भाई आप उनका सही सही जानकारी दो। कई बार होता है ना कि लोग बात छुपाए लेते हैं, अगर मान लो कोनो मनई ऐस हैं घर में कोनो सदस्य जिनका बुखार आ रहा है तो वो बतौते नहीं, तो यही से होता है ना आपा के नुकसान हो जाते। देखो अब होता है कि अगर उनका पता चले कि भाई बुखार है कोनो मनई का, तो वही सही समय पर वही के जाँच कर ली है, पता चल जाए कि कहूँ ये डेंगू तो नहीं ना, यू मलेरिया तो नहीं ना, और जौन भी बीमारी हुई तो वही कर सही सही भाई उपचार मिल जाए। तो आपसे बस यह करे का है कि आप अपने घर के जो भी कुछ हुई आपसे जानकारी मांग रहे हैं तो उनका सही और पूरी जानकारी दो, जो उन्हें रोगी का सही समय पर सही इलाज मिल सके। और यह के साथ आज के कार्यक्रम की बिरिया समाप्त हो रही है, तो आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी का दियो अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। अब फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों जय हिंद। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हूँ मैं भाषा। फौजी भाई, आप इस देश की आन और बान हो। आप जब सरहद पर देश की रखवाली करते हैं, सरहद पर होते हैं, तभी हम अपने घर में सुरक्षित होते हैं और अपने घरों में चैन से सोते हैं। देखते हैं आज किस फौजी भाई ने क्या फरमाइश की है। तो पहले गीत की फरमाइश हमें आई है सिमरी पुरुषोत्तमपुर ज़िला सुल्तानपुर से, राजेश कुमार मिश्र की, राकेश कुमार मिश्र, अनुराग मिश्र, अंशुल मिश्र, आस्था अंजलि केशरी मिश्र। और आप सभी सुनना चाहते हैं सुहाना सफ़र फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत है, जिसे अपनी आवाज़ दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत रचना आनंद बख्शी की है, सुरों में पुरोया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

सुहाना सफर फिल्म का भी गीत सुन रहे थे आप। कार्यक्रम चल रहा है जवानों के लिए और ये मेल हमें आई है ग्राम अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर की। और जो गीत हम ये सुनना चाहते हैं, इसी गीत को सुनना चाहते हैं, अकोला महाराष्ट्र से गणेश अने, ललिता अने, आशीष अने, शेखर अने, सलोनी अने, प्रियंका पुरी, एरा पुरी और अभिमन्यु पुरी। आप सभी सुनना चाहते हैं आसपास फिल्म का ये गीत, जिसे अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये गीत था आसपास फिल्म से। लीजिए सुनिए फकीरा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में भी अपनी फ़कीरा फिल्म का गीत सुना। अगली मेल हमें आई है कटरा चांद खां से। अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य और खुशबू मौर्य, रोही मौर्य, आप सभी सुनना चाहते हैं आस का पंछी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना शैलेंद्र की, तर्ज शंकर जयकिशन की।

ये गीत था आसका पंछी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के शब्द और सुरों में पिरोया शंकर जयकिशन ने। इसी गीत के साथ जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति भाषा को। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहरा

0: अनेक आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों

0: के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और AI सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा।

0: इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है विज्ञान और किसान कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती विषय पर डॉक्टर संजीव कुमार से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।

0: में आप सुनेंगे फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती विषय पर डॉक्टर संजीव कुमार से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से उप महानिदेशक डॉक्टर संजीव कुमार साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती की क्या कुछ संभावना है अपने प्रदेश में?
2: किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। प्रदेश में फल फूल सब्जियों की संरक्षित खेती की प्रचुर संभावनाएं हैं। फलों में विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी की खेती जाड़ों में जब करते हैं, सब्जियों में टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, करेला है, कभी कभी धनिया की भी खेती की जाती है, राजमा की खेती कर लेते हैं जिसको फरास बीन बोलते हैं
1: जी,
2: और कभी कभी छप्पन कद्दू और परवल की भी खेती इसमें की जाती है। अगर फूलों की बात करें तो गुलाब, जरबेरा और कभी कभी गुलदावदी की खेती भी संरक्षित खेती के रूप में की जाती है।
1: तो संरक्षित खेती से फायदे क्या क्या हैं डॉक्टर साहब?
2: संरक्षित खेती से कई फायदे होते हैं। एक तो जब हम संरक्षित वातावरण में फल फूल सब्जियों की खेती करते हैं तो उससे जो जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं वो नहीं पड़ते हैं। दूसरे, जो कीट और बीमारियां लगने की संभावना रहती है वो भी बहुत क्षीण हो जाती है। उत्पादकता बहुत अच्छी प्राप्त होती है। यदि हम बाहरी खेत की तुलना करें तो 4 से 5 गुना से लेकर के 10 गुना तक किन्हीं फसलों में पैदावार बढ़ जाती है,
1: यानी खुले खेत के अनुपात में।
2: इसकी गुणवत्ता जो हम संरक्षित खेती में पैदा करते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है और इन फसलों की उपलब्धता एक लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें कम क्षेत्रफल में लाभ भी अधिक होता है और इससे हमारे किसान भाइयों को रोजगार भी संपूर्ण समय प्राप्त होता रहता है।
1: कुछ और कुछ बेमौसम भी हो जाएगा,
2: बेमौसम भी पैदा होता है।
1: डॉक्टर साहब, संरक्षित खेती के लिए कुछ खास स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, तकनीक की आवश्यकता होती है?
2: जी, संरक्षित खेती के लिए मुख्य रूप से 4 तरीके की संरचनाएं इस्तेमाल में लाई जाती है। पहली होती है जलवायु नियंत्रित ग्रीन हाउस। ये थोड़े महंगे होते हैं, सामान्यतया इनका उपयोग नहीं किया जाता है। इनके संचालन में विद्युत का भी उपयोग होता है और इनके रखरखाव पे भारी खर्च आता है, इसलिए सामान्य रूप से संरक्षित खेती में इनका उपयोग नहीं करते हैं।
1: लेकिन किसानों के खेत पे कौन कौन से पाली हाउस या ग्रीन हाउस उपयोगी होंगे?
2: जी, किसानों के खेत पर मुख्य रूप से प्राकृतिक वायु संवाहक पाली हाउस और वॉक इन टनल और नेट हाउस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जो किसानों के प्रक्षेत्र में आसानी से लगाए जा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो प्राकृतिक वायु संवाहक पाली हाउस होते हैं,
1: यानी नेचुरल हवा,
2: इसमें एक पाइप के सहारे पॉलीथीन की सीट लगा दी जाती है कि जब हवा की जरूरत हो तो उसको ऊपर उठा दिया जाता है और नेट के थ्रू हवा अंदर आती जाती रहती है, और जब जरूरत नहीं होती है तो उसको नीचे गिरा दिया जाता है। विशेष तौर से जाड़ों के मौसम में तापमान नियंत्रित रहता है और इनके बनाने पर अगर हम 1,000 वर्ग मीटर का इस तरीके का पाली हाउस बनाते हैं तो लगभग 10 से 15 लाख तक का खर्चा आ जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने वॉक इन टनल का नाम लिया, ये किस मौसम में अच्छा रहेगा?
2: सर्दी के मौसम में विशेष तौर से जब हम बेमौसमी सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो वॉक इन टनल में इसका हम खेती कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सुरंग नुमा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर चलते चले जाएं सीधे। इसकी ऊंचाई लगभग 1.8 मीटर तक रहती है और चौड़ाई आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ा लेते हैं। ये लगभग 100 वर्ग मीटर आकार के क्षेत्रफल के होते हैं और इसमें जो सब्जियां होती हैं जैसे टमाटर है, बीन है और भी कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनको सबको इसमें उगा सकते हैं।
1: तो इसी तरह का स्ट्रक्चर तो लो टनल पाली हाउस में?
2: जी, लो टनल में क्या होता है कि हम अंदर घुस नहीं सकते हैं। वॉक इन टनल में हम जाके अंदर कृषि क्रियाएं कर सकते हैं, निराई गुड़ाई कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन लो टनल में क्या होता है कि ये साधारणतया पौध तैयार करने के लिए ही किया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने नेट हाउस का नाम लिया, इसके क्या फायदे हैं और इसमें तकनीक क्या है?
2: नेट हाउस में मुख्य रूप से सब्जियों की पौध तैयार की जाती है। इससे सुरक्षा कीटों से हो जाती है, कीट बीमारियों का प्रकोप इसमें नहीं होने पाता है और इससे जो पौध तैयार होती है वो आगे चलकर कीट और विषाणु रोग से बची रहती है।
1: डॉक्टर साहब, फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती की बात हो रही है तो जैसा आपने कहा कि संरक्षित खेती में टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, करेला उग सकता है, तो इसकी कुछ खास वेराइटीज होंगी जो उपयोगी होंगी?
2: जी, दोनों तरीके की प्रजातियां होती हैं, कुछ सामान्य किस्में हैं और कुछ संकर किस्में हैं। किसान भाई अधिकांशतया संकर किस्मों को ज्यादा लगाते हैं संरक्षित खेती में, चूंकि इनकी पैदावार सामान्य किस्मों की अपेक्षा ज्यादा होती है। लेकिन मैं दोनों प्रकार की किस्में बताना चाहूंगा। टमाटर में जैसे पंत 3 है, पूसा गौरव, VL टमाटर 1, ये सामान्य किस्में हैं। और अगर संकर

0: किस्मों की बात करें तो इसमें नवीन है, अविनाश 2 है, रूपाली है, मनीषा है और जीएस 600 है। ये कुछ संकर किस्में हैं जो टमाटर में की संकर संरक्षित खेती के लिए अनुकूल हैं।
1: और शिमला मिर्च,
0: शिमला मिर्च में संकर प्रजातियों में अगर हम बात करें तो पूसा दीप्ति, भारत, इंदिरा, स्वर्णा, ओरोवेली और बाम्बी है। जबकि सामान्य किस्मों में कैलिफोर्निया बंडर, योलो बंडर, अर्का मोहनी, अर्का गौरव और अर्का बसंत प्रमुख रूप से हैं।
1: और खीरा मिर्च,
0: खीरे में दो तरीके की होती है, एक तो सामान्य प्रजातियां, दूसरी संकर प्रजातियां और तीसरी होती हैं बीज रहित प्रजातियां। जो संरक्षित उसमें उगती हैं वो ज्यादातर बीज रहित प्रजातियां होती हैं। तो हम तीनों तरीके की प्रजातियां,
1: सीडलेस खीरा,
0: जी सीडलेस खीरा। तो इसमें पूसा संयोग जो है सामान्य प्रजाति है, संकर प्रजातियों में प्रिया, पंच संकर खीरा एक है और बीज रहित किस्मों में कियान और इसेटिस जैसी प्रजातियां हैं।
1: तो जहां संरक्षित खेती करनी है सब्जियों की तो शुरुआत कब करें?
0: सामान्यतया मई जून जुलाई से ये पौध पड़ जाती है और अगस्त से इनकी रोपाई संरक्षित खेती में शुरू हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ फूलों की संरक्षित खेती करनी है तो वहाँ आपने जरबेरा, गुलदाउदी और गुलाब का नाम लिया।
0: जी, इनकी खेती जो है पुष्प वाली जो फसलें हैं इनकी खेती की जा सकती है। गुलाब विशेष तौर से सबसे ज्यादा मांग गुलाब की रहती है, इसके बाद जरबेरा की मांग रहती है अगर देखा जाए, और उसके बाद गुलदावदी की मांग अपेक्षाकृत कम रहती है। गुलाब की जो प्रमुख किस्में हैं इसमें फर्स्ट रेड, ग्रैंड गाला, बेंडी, कैरामिथा, गोल्डन टाइम, लेम्बाडा कुछ ऐसी किस्में हैं जिनकी संरक्षित खेती की जा सकती है। जरबेरा में सांगरिया, जाफा, कबाना, डायना, एलन ये कुछ किस्में हैं जिनकी खेती कर सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, फूलों की संरक्षित खेती जहां करेंगे वहां इनकी अवधि क्या होगी?
0: गुलाब की खेती 3 से 4 वर्ष तक कर सकते हैं, गुलदावदी की खेती 8 से 9 महीने में समाप्त हो जाती है, जबकि जरबेरा की खेती 2 से 3 वर्ष तक चलती रहती है।
1: तो इसमें रोपाई का समय क्या होगा और पहली तुड़ाई कब होती है?
0: इसमें जो तुड़ाई होती है गुलाब में 60 दिन के बाद से, लगाने के 60 दिन बाद शुरू हो जाती है, गुलदावदी में 45 दिन के बाद और जरबेरा में लगभग 60 दिन के बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है।
1: इसमें लाभ की क्या संभावना है?
0: अगर शुद्ध लाभ देखा जाए, अगर हम 1000 वर्ग मीटर का पाली हाउस बनाते हैं, प्राकृतिक वायु संवाहक पाली हाउस, तो लगभग जो शुद्ध लाभ गुलाब पर हमको 3 से 3.5 लाख रुपए तक मिल जाता है, जरबेरा पर लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में मिल जाता है और गुलदावदी पर लगभग 2.5 से 3 लाख तक मिल जाता है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ वॉक इन टनल है वहाँ बेमौसमी सब्जियों में क्या हो सकता है?
0: बेमौसमी सब्जियों में मैंने बताया कि वॉक इन टनल मुख्य रूप से बेमौसमी सब्जियों के लिए और खासतौर से जाड़े के मौसम के लिए बहुत मुफीद होता है। इसमें लौकी, खीरा, कद्दू है, टमाटर है, फरास बीन है, इनकी खेती की जा सकती है। इनकी बुआई का समय अधिकतर नवंबर, अक्टूबर, नवंबर से दिसंबर का समय रहता है और इनकी फसल उपलब्धता दिसंबर से लेकर के मई तक अलग अलग फसलों की रहती है।
1: और उस समय भाव भी अच्छा,
0: उस समय भाव बहुत अच्छा मिलता है, चूंकि जाड़े के मौसम में अधिकांश फसलों की पैदावार जो खुले क्षेत्र में होती है उसमें पैदावार बहुत कम हो जाती है या उस समय पैदावार बहुत कम मिल पाती है।
1: डॉक्टर साहब, फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती में कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जिनको ध्यान में रखना होगा, जैसे फूलों की बात करें?
0: अगर फूलों की बात करते हैं या हम सब्जियों की भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमें संरक्षित खेती का जो पाली हाउस है या हमारा वॉक इन टनल है
1: या नेट हाउस है,
0: मृदा उपचार सबसे जरूरी होता है। इससे कई बीमारियों से हमें निदान मिलता है। इसके लिए या तो काली मिट्टी को काली पॉलीथीन से ढक करके 1 सप्ताह के लिए छोड़ दें, और अगर ऐसा ना हो सके तो फार्मलिन से या मिथाइल ब्रोमाइड से इसका उपचार कर लें। फार्मलिन की 10 से 10 लीटर मात्रा लगभग 1000 वर्ग मीटर के लिए पर्याप्त होती है, और इस करने के बाद वहाँ पर जिस भी पुष्प की खेती करनी है उसके हिसाब से बेड तैयार कर लें और बेड में ही रोपाई करेंगे जो जमीन के धरातल से थोड़ा 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर होंगी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 94-151-95-278, 94-151-95-278, 94-151-95-278।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में?
0: संरक्षित खेती में थोड़ा सा जो हम ढांचा तैयार करते हैं उसमें जरूर कुछ खर्चा ज्यादा आ जाता है प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन जब हम उसका उपयोग वर्ष दर वर्ष करते हैं तो ढांचा हमको बहुत फायदा देने लगता है। और फिर उसमें क्या होता है कि जो लोहे की चीजें यूज की जाती हैं वो कई साल तक चलती हैं, क्योंकि वो सब चीजें जंगरोधी होती हैं। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है तो पॉलीथीन सीट का और नेट का ही बदलाव करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि संरक्षित खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है और इसको जरूर करना चाहिए।
1: डॉक्टर संजीव कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती कैसे करें किसान भाई बहन, कम क्षेत्रफल में बेमौसम कैसे फल फूल और सब्जियों को तैयार करें, इसके बारे में आपने ढेर सारी

0: जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: विज्ञान और किसान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फल फूल और सब्जियों की संरक्षित खेती विषय पर डॉक्टर संजीव कुमार से की गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्यामधर मौर्य के लापता होने के संबंध में राजकुमार मौर्य ने सूचित किया है कि श्यामधर मौर्य, जिनकी उम्र है 58 वर्ष, कद 167 सेंटीमीटर, रंग सांवला, चेहरा गोल है, ये दिनांक 3 मई सन 2026 से लापता हैं। इनके मिलने के बारे में यदि कोई भी जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर दें, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही। देवनाशपुर लक्ष्मण पट्टी से सुनील कुमार मौर्य उर्फ राजू ने सूचित किया है कि प्रमिला देवी, जिनकी उम्र है 60 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है, ये दिनांक 25 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं, ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इनके मिलने के बारे में यदि कोई भी जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही। शिवाजी तिवारी ने सूचित किया है कि उनके पुत्र अंतिम तिवारी, जिनकी उम्र है 24 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, ये दिनांक 22 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। इनके मिलने के बारे में यदि कोई भी जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

श्रोताओं, आपको बता दें कि शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे परवेज़ अहमद सिद्दीकी की वार्ता प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और ग्रामीण भारत।

और रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर अलका सिंह की वार्ता। विषय होगा वर्तमान परिदृश्य में शिमला समझौता।

फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जयशंकर त्रिवेदी व साथी का आल्हा गायन। प्रसंग है

0: पन बोले तब बंगलामा मालिक सुनो बुंदेला राए ने गु हमारा तुम अब तई थी हो अब का राखो द्यारे
1: लगाए
0: कि कौने त्यास के तुम रहवैया बारी हम का दियो हो बताए तबई बतावा है बारी ने राजा सुनो हमारी।

कथा लाखन का ब्याह। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। सायंकालीन कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची

0: ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

इस सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आज रात्रि 10:30 पर, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और जिसे आप हमारे DTH और DRM मोड पर सुन सकेंगे। कार्यक्रम खेती किसानी आप सुनेंगे शाम 6:50 पर। आज आप सुनेंगे डॉक्टर दुष्यंत मिश्र से की गई भेंटवार्ता, फलदार पौधों की उन्नत बागवानी। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार।

राय। लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे परवेज अहमद सिद्दीकी की वार्ता, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और ग्रामीण भारत। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:30। हिंदी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अलका सिंह की वार्ता, वर्तमान परिदृश्य में शिमला समझौता।

खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:31। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस पर आज आप सुनेंगे खेल पत्रकार अनंत मिश्र से की गई भेंटवार्ता, खेल की कहानी के कथाकार भेंटकर्ता होंगे रमनप्रीत सिंह और प्रस्तुति होगी आसिफ इकबाल की। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नई उड़ान। आज नव दृष्टि सेगमेंट में हम आपको सुनवाएंगे एआई की हरित पाठशाला, खेती में भविष्य की फसल विषय पर ओबी भेंटवार्ता। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर।

सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:10 पर। आज हम आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह की गाई कुछ चुनिंदा गजलें। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आपके पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये था विवरण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। कल शाम 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी। कल आप सुनेंगे कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी। आलेख एवं वाचन होगा अभिषेक कुमार सिंह और संपादन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। हमारा अंग्रेजी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर नीलम अग्रवाल असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी JNPG कॉलेज लखनऊ से की गई भेंटवार्ता जिसका विषय होगा द थारू कल्चर इन उत्तर प्रदेश और आपसे इस विषय पर बात करेंगी डॉक्टर शीबा राकेश। हमारे उर्दू प्रोग्राम का वक्त रहेगा सवेरे 9:30 पर। कल समाप्त फरमाइएगा। हमारे मेहमान होंगे शायरा शबीना अदीब, पेशकश होगी आसिफ इकबाल की और प्रेजेंटर होंगी शमसुल आरफीन। विज्ञान और किसान कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। कल आप सुनेंगे डॉक्टर अमरीश सिंह यादव से की गई भेंटवार्ता, खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अभी आप सुन रहे थे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में, जहां आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त अनुष्ठा। दोस्तों, एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सही और आसान रास्ते में से किसी एक को चुनना पड़ा हो? आसान रास्ता उस समय अच्छा तो लगता है, लेकिन मन के किसी कोने में हमें ये भी पता होता है कि सही क्या है। असल में यही नैतिकता है, सिर्फ किताबों का विषय नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा भी। घर में बड़ों का सम्मान करना, अपने काम की जिम्मेदारी लेना, किसी का हक न मारना, गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना, ये सब छोटी छोटी बातें ही हमारे व्यक्तित्व को बड़ा बनाती हैं। दोस्तों, आज का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, नए सपने हैं, नई तकनीकें हैं, नए अवसर हैं, लेकिन अगर इन सब के साथ अच्छे

संस्कार और सही सोच भी हो तो सफलता का आनंद अलग ही हो जाता है, क्योंकि लोग आपकी पहचान सिर्फ आपकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से भी करते हैं। तो आज क्यों ना हम खुद से एक छोटा सा वादा करें कि जहाँ भी मौका मिले सही बात का साथ दें, ईमानदारी से अपना काम करें और एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें जिस पर सभी को गर्व हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नैतिकता की। वैसे अगर ध्यान से देखें तो खेल में भी नैतिकता का सबसे बड़ा रोल होता है। मैदान पर सिर्फ अच्छा खिलाड़ी होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अच्छा इंसान होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। नियमों का सम्मान, अनुशासन, जिम्मेदारी, टीम भावना और हार जीत दोनों को सहजता से स्वीकार करना, यही तो खेल की असली भावना है। आज खेल सिर्फ एक शौक नहीं है दोस्तों, बल्कि युवाओं के लिए करियर के भी अनगिनत अवसर लेकर आया हुआ है। खिलाड़ी बनने के साथ कोचिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिटनेस, कमेंट्री और खेल पत्रकारिता जैसे कई क्षेत्र में युवाओं के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। दोस्तों, इस विषय पर हम आराम से अपने प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवा तरंग और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र की जो खेल के रोमांच को लोगों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का विषय है खेल पत्रकारिता और युवाओं का भविष्य। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शरददीप जी। आपका नाम खेल पत्रकारिता में आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा। तो शरददीप जी, सबसे पहले तो युवा तरंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद अनुष्ठा जी।
3: सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेल पत्रकारिता को आप कैसे परिभाषित करेंगे?
4: देखिए, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव इतने 35 सालों का है, खेल पत्रकारिता को मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये सबसे एक्साइटिंग विधा है। अगर कहीं भी अखबार में या किसी टेलीविजन चैनल में या किसी समाचार के माध्यम में अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा एक्साइटिंग बीट होती है जिसको हर आदमी कवर करना चाहता है, क्योंकि इसमें केवल हार जीत होती है और हार के बाद दुख नहीं होता और जीत के बाद कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, क्योंकि फिर हार का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हार जीत से और खेल पत्रकारिता और खेल से जो फायदा है वो होता है, जैसे अगर आपने खेल में देखा है तो खिलाड़ी बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेता है अपनी लाइफ के कि बॉल इधर जा रही, कैसे कूदना है। उस तरह एक खेल पत्रकार होने पर भी आपको जीवन में अपने बारे में तमाम चीजों में निर्णय लेने में बड़ी तेजी और चपलता आ जाती है।
3: जी सर। सर, आज के समय में खेल पत्रकारिता युवाओं के लिए एक अच्छे करियर विकल्प के रूप में कितनी संभावनाएं रखती है?
4: बहुत संभावना, अगर आप देखें तो पिछले 10-15 सालों में जो खेल है वो इस देश में केवल खेल नहीं एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो गई है। और मैं खुद देखता हूँ कि हमारे सिखाए हुए कितने ट्रेनीज, कितने लड़के लड़कियां आज जो है पीआर के क्षेत्र में स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में अगर आप देखें तो 10 से 15 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास कम से कम 50 से 60 से 100 लोगों का स्टाफ है और वो सारे युवा हैं। हिंदी अंग्रेजी में लिखना, पीआर में डील करना, तमाम इवेंट्स में जाना, उनके बारे में समझना, तो इसमें युवाओं के लिए तो मुझे लगता है कि अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो जहाँ पे हम कंप्यूटराइजेशन और तमाम चीज़ों की बात करते हैं, खेल में तो बहुत संभावना है, असीमित संभावना है। और लगातार खेलों का जो तमाम लीग्स आती जा रही हैं हर चीज़ की, अगर इंडियन आईपीएल से भी जोड़ के देखें तो इतनी संभावना है कि उनके लिए जॉब की कमी नहीं है।
3: जी, अगर कोई युवा स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उन्हें किन जरूरी कौशलों पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए?
4: देखिए, कोई भी युवा अगर स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो सबसे अच्छी बेसिक चीज है कि वे किसी अच्छे संस्थान से अपनी डिग्री या डिप्लोमा ले। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप पहले से खिलाड़ी हैं तो काफी मदद होती है आपकी उसमें। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी होती है कि करीब 80 खेल हैं अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक और नॉन ओलंपिक गेम्स को मिला के, क्रिकेट को मिला के 80 से ज़्यादा खेल हो गए हैं अब, और सबकी टेक्निकलिटीज अलग अलग हैं। तो युवा खेल पत्रकारों के लिए मेरी एक नसीहत तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि सजेशन है कि एक तो ग्राउंड पे जाएं, जहाँ पे भी इवेंट हो रहा है वहाँ पे जाएं। ये आज की तारीख में घर पे बैठ के या टीवी पे देख के, अगर आपके टीवी पे आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके शहर में हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, वहाँ जाएं जरूर, क्योंकि जाने पे जो होता है वो एक अलग चीज़ दिखती है, जो रियलिटी जिसे हम कहते हैं रियलिटी बाइट, वो एक अलग होता है। और दूसरा चीज़ है कि उनको जानने की चीज़ें का मौका मिलता है। तो जब भी वो किसी इवेंट में जाएं तो उसकी पूरी तैयारी करके जाएं, उसके बारे में पढ़ के जाएं। जरूरी नहीं है कि आप ताइक्वांडो कवर कर

0: तो आप ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ताइक्वांडो में किस किस तरह की डिसिप्लिन होते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं, किन बाउट्स को क्या नाम दिया जाता है, इस बारे में तो होमवर्क जिसे कहते हैं ना, बचपन में कहते थे ना, मैम देती थी कि होमवर्क करके आओगे तो कल अच्छा लेसन पढ़ोगे, तो ये बेसिक है इसका भी खेल पत्रकारिता का।
1: जी सर, अगला सवाल मेरा यही है कि क्या खेलों में रुचि होना काफी है या फिर पत्रकारिता की समझ भी होनी उतनी जरूरी है?
0: दोनों ही चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए पत्रकारिता, मैं इस बात को कतई ही नहीं कहूँगा कि टीवी या आकाशवाणी या किसी अन्य जगह पे क्या है, लेकिन पत्रकारिता जब हम खेल की पत्रकारिता करते हैं तो उसमें हम झूठ नहीं लिख सकते। तो हमें जैसे अगर विराट कोहली ने 99 रन बनाए हैं तो मैं ये नहीं लिख सकता कि विराट कोहली स्कोर्स 100।
1: जी
0: पॉलिटिक्स में या किन्हीं और चीज़ों में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन खेल में जो सत्य है, अगर उसने 10.37 सेकंड में अगर 100 मीटर की दूरी पूरी करी है तो 3.37 ही होगा, 10.37 आप बदल नहीं सकते हैं।
1: जी
0: तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है।
1: सर, पत्रकारिता में एक और चीज बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहती है जो है येलो जर्नलिज्म, तो खेल पत्रकारिता में इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए मुझे येलो जर्नलिज्म तो वही हुआ कि आप अपने प्रोफेशन से बेईमानी कर रहे हैं, मतलब आप किसी को झूठ मूठ का चढ़ा दिया कि ये बहुत अच्छे हैं और किसी को जानबूझ के किसी अच्छे व्यक्ति को गिरा दिया, उसके पीछे आपका आशय, उसका मंतव्य आपका क्या है वो डिफरेंट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि येलो जर्नलिज्म का जो बहुत कम स्थान है खासकर खेल पत्रकारिता में, यहाँ पे जो दिख रहा है वही सबको दिख रहा है, आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते। जो मैंने अभी आपसे पहले बात कही ना कि किन्हीं किन्हीं विषयों में या किसी किन्हीं सब्जेक्ट्स में जो पत्रकारिता के और है वहाँ झूठ भी थोड़ा लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ पे दिखता है आपका, और आज के दौर में जब हम AI और उसके दौर में जी रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता कि हम किसी चीज को झूठ बोल लें छुपा लें।
1: बिल्कुल सर। सर, बड़े खेल आयोजनों की रिपोर्टिंग के दौरान हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
0: देखिए बड़े आयोजनों में मैं आपको जैसे BCCI का हाल बताऊं कि अगर आप क्रिकेट कवर करना चाहते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट के जानकार हैं, लेकिन क्रिकेट कवर करना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सितंबर में आपको BCCI का एनुअल एक्रेडेशन आता है, उस एनुअल एक्रेडेशन को आपके संस्थान अप्रूवल देता है, आप भरते हैं, उसके बाद जो जो मैचेस होते हैं उसके एक्रेडेशन आपको अलग मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आम पत्रकारिता की तरह कि एक नेता भाषण दे रहे तो आप उनके प्रोग्राम में पहुंच गए, नहीं जा सकते हैं। आजकल कमोबेश क्रिकेट नहीं, सारे ही खेलों में हो गए जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनमें बगैर प्रॉपर एक्रेडेशन के, प्रॉपर आपकी स्क्रूटनी के, प्रॉपर परमिशन के नहीं हो सकता। जब मैं एशियन गेम्स में गया था 2018 में जकार्ता में, तो उससे पहले मेरी इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कराई थी कि मेरे बारे में सब कुछ पता किया था कि कौन है, कितने दिन से पत्रकार है, इनका पासपोर्ट क्या है, इनका वीजा क्या है, इनका क्या है, सारी चीज़ें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि खेल पत्रकारिता अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कर रहे हैं तो आसान नहीं है।
1: सर, खेल पत्रकारिता में निष्पक्षता यानी ऑब्जेक्टिविटी और नैतिकता बनाए रखना कितना ज्यादा जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है। निष्पक्षता तो वही मैंने आपसे कहा ना, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। और नैतिकता, मैं जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी नौकरी शुरू करी थी, आज हिंदुस्तान टाइम्स में हूँ, तो उसमें यही सिखाया जाता था कि एक तो आप जो देखते हैं, मान लीजिए ग्राउंड पे कोई मैच हो रहा है वो आप देख रहे हैं, हॉकी का एक मैच चल रहा है आप किसी खिलाड़ी को देख रहे हैं, दूसरा ये होता है आपकी अपनी नॉलेज क्या है उस गेम के प्रति। अगर कोई ड्रिबलिंग कर रहा है, कोई पेनल्टी शॉट मार रहा है, कोई पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट कर रहा है, तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए। और दूसरा, आप अपने भाषा पे नियंत्रण रखिएगी और अपने रीडर्स को, या जैसे आपके श्रोता पे आप कह रही हैं तो आप उन्हीं शब्दों का चयन कर रही हैं जो आपका श्रोता सुनना चाहता है, जो उसके कानों को अच्छा लगे। उसी तरह हम भी चयन करते हैं कि कितनी आसान सी भाषा में हम उस खेल की, उस मैच के इवेंट को कैसे रिपोर्ट कर सके अपने पाठक के लिए। तो वो जो आसानी होनी चाहिए, वो नैतिकता आपके अंदर जरूर होनी चाहिए।
1: और सर, अनबायसनेस भी होना भी बहुत जरूरी है कि आप
0: बहुत जरूरी है। अगर आप बायस हो गए, होता क्या है कि जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर कर रहे हैं तो एक मन में बायस तो होता है कि यार हमारा इंडिया जीते, है ना, और लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो भी हम लिखते हैं, तो बायसेस तो होते हैं थोड़े बहुत। लेकिन जहाँ पे देश का अगर मैच नहीं है, कहीं भी किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो उसमें बायसेस का वैसे कोई स्थान होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप, जो मैंने वही बात कही ना कि आप जो होगा वही आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे मन में विराट कोहली के लिए बहुत कुछ है, और लेकिन अगर उनकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हार गई और KKR जीत गई तो मैं KKR के लिए लिखूंगा, मैं ये नहीं लिख दूंगा कि वो हार गए, मैं लिखूंगा कि KKR जीत गया।
1: सर, आपके करियर का कोई ऐसा अनुभव जो आज आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहते हो या जो आपको बहुत प्रेरित करता हो?
0: हाँ, मुझे याद है कि मैं 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स कवर कर रहा था दिल्ली में, तो मेरी बॉस ने मेरे को बुला के एक रात पहले बोला कि आई नीड अ

0: पूरी पेज वन स्टोरी जो कि किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। फिर मैं भूल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी बॉस ने मुझसे पूछा कि वेयर इज़ द स्टोरी, आज कहाँ कैसे जाएगी, तो मैंने कहा अभी मैं कोशिश करता हूँ और अनबायस्ड होकर मैं बताऊँ कि मैं निकल गया। और जब मैं गेम्स विलेज के पास पहुंचा था तो वहाँ पे, जहाँ पे गेम्स गवर्निंग ऑफिस था, तो उसके बगल में एक कबाड़ी जो है वो कुछ तौल रहा था। तो मैंने कहा ये कि यहाँ पे क्या करा, मैंने देखा उसी दिन का टिकट था, यानी दोपहर में 2 बजे की ये घटना थी और शाम को वहाँ पर टिकट था। तमाम विचार चल रहे थे तो मैंने उस कबाड़ी से कहा कि यार ये टिकट हमें दे दो। तो उसने कहा आप कौन है, मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ। तो बोला कि 1,000 रुपये लगेगा। तो मैंने उससे करीब एक झोला भर के वो टिकट ले आया था और मैंने अपनी बॉस के टेबल पे रखा। हमने कहा दिस इज़ द स्टोरी, और आप कभी गूगल पे मेरे नाम से अगर वो कबाड़ी वाली स्टोरी सर्च करेंगे तो अजय मसंद और मेरे नाम से हम लोगों ने कंबाइंड लिखी थी। वो मतलब समझिए 2010 की सबसे शानदार हिट स्टोरी थी। और तो ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि उस खबर ने मुझे, मतलब उस रातों रात मुझे हीरो बना दिया था। और दूसरे दिन से जो पुलिस वाले थे और सिक्योरिटी ऑफिशियर्स थे वो मेरे आगे पीछे घूम रहे थे कि इनको कहीं जाने नहीं देना। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ।
1: सर, वाकई में ये किस्सा काफी प्रेरित करने वाला है। और कभी कभी सर ऐसा होता है कि शुरुआत में बहुत सारे युवा असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो सर वो इस फील्ड में आने के लिए अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रख सकते हैं?
0: देखिए, असफलता और सफलता का जो मंत्र है वो किसी भी क्षेत्र में उसी तरह लागू होता है जैसे खेल पत्रकारिता में भी लागू होता है। बस मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी काम को सिंसियरली और ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अगर करते हैं तो उसमें उसका आपको लाभ मिलेगा। आज नहीं मिलेगा रिजल्ट, कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, लेकिन हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बस ये है कि आगे पीछे उसके थोड़े से डिले हो सकता है आपके अचीवमेंट में, लेकिन आपको सतत प्रयास करते रहना चाहिए।
1: जी सर, अब चलते चलते खेल पत्रकारिता में सफल होने के लिए कौन सी 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें आप युवाओं को बताना चाहेंगे?
0: देखिए, सबसे पहली बात कि आप होमवर्क करके जाइए कि आपको उस खेल के बारे में पता होना चाहिए, भले आप खिलाड़ी ना हो लेकिन आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि ग्राउंड पे आप जाइए, उस चीज को देखिए और जो आपका ज्ञान है उसको उसमें इम्प्लीमेंट करके देखिए कि जब वो बॉल लेके भाग रहा था तो अच्छा वो राइट से लेके भाग रहा था तो इसका मतलब राइट विंगर है, लेफ्ट है तो लेफ्ट विंगर है, स्ट्राइकर है तो बीच में चल रहा है, 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ है कि जब आप अपनी रिपोर्ट लिखें तो ईमानदारी से लिखें। खेल का कोई ऐसा पहलू नहीं छूटना चाहिए। पहले उसकी शुरुआत आप करेंगे कि मैच जीते, कौन कौन स्टार थे जिनकी वजह से मैच जीते और उन्होंने किया क्या। तो ये 3 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी कलम को और आप को कोई रोक नहीं सकता और आपको फेमस होने से कोई रोक नहीं सकता।
1: सर, निसंदेह बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज आपने हमारे साथ साझा करी हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे युवा होंगे जो इस फील्ड में आना चाह रहे होंगे, तो वाकई में आपको सुन के वो प्रेरित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातें करने के लिए।
0: थैंक यू।
1: जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस खास बातचीत से यही समझ में आता है कि खेल पत्रकारिता केवल खबरें देने का माध्यम नहीं है, बल्कि खेल भावना, सच्चाई और जिम्मेदारी को समाज तक पहुंचाने का भी एक सशक्त जरिया है। अगर आपके भीतर खेलों के प्रति जुनून है, सीखने की इच्छा है और निष्पक्ष होकर सच को सामने रखने का साहस है, तो ये क्षेत्र आपके लिए एक सुनहरा भविष्य बन सकता है। हमारे साथ अपने अनुभव और महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए वरिष्ठ खेल पत्रकार शरद दीप जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज की चर्चा हमारे युवा श्रोताओं को नई सोच, नई दिशा देने में ज़रूर मददगार साबित होगी। इसी के साथ आइए कार्यक्रम में सुन लेते हैं ये गीत और फिर मिलते हैं आपसे गीत के बाद।

दोस्तों, हमारे प्रेरक सेगमेंट सफलता की राह में आज बात उन युवाओं की जिनका सपना है सरकारी नौकरी हासिल करना। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता आखिर मिलती कैसे है? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे कदम जो आपकी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। पहले ये तय करें कि आपको किस परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि हर परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति और चयन प्रक्रिया अलग होती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा, तभी तैयारी भी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। दूसरा कदम है सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह समझना। कई बार युवा बिना पूरी जानकारी के पढ़ाई शुरू कर देते हैं और पहले पूरा पाठ्यक्रम देखते ही नहीं हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और समझें कि किन किन विषय पर अधिक आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है समय का सही इस्तेमाल। रोज़ाना पढ़ाई का एक निश्चित समय तय करें। कोशिश करें कि हर विषय को पर्याप्त समय मिले, और लंबी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नियमित पढ़ाई। इसके साथ ही करंट अफेयर पर भी रोज़ नज़र डालें, समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालें और विश्वसनीय स्रोतों से ही सामान्य ज्ञान का लगातार अपडेट लेते रहें। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, मॉक टेस्ट और नियमित अभ्यास। जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा और इससे समय प्रबंधन भी बेहतर होगा और आपकी कमजोरियों का भी आपको पता चलता रहेगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी सिर्फ किताबों की पढ़ाई से नहीं, बल्कि सही योजना, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच से हासिल होती है। तो सफलता की राह में आज इतना ही। विश्वास और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपकी मेहनत आज नहीं तो कल ज़रूर रंग लाएगी। आइए दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक और गीत।

जी हाँ दोस्तों, कर हर मैदान फतेह। और मैदान फतेह आप तभी कर पाएंगे जब आप समय का सही उपयोग करेंगे। दोस्तों कहा गया है कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय का सही उपयोग ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, खासकर हम युवाओं के लिए, क्योंकि सही उम्र यही सीखने की होती है और देखने की होती है, उन्हें पूरा करने की होती है। तो याद रखिए कि सफलता केवल बड़े अवसरों से नहीं, बल्कि हर दिन सही समय का उपयोग करने से ही मिलती है। आइए दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों इसी के साथ आज के युवा तरंग में बस इतना ही। उम्मीद है आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अब चलते चलते आपको बता दें हमारे कल के कार्यक्रम का विवरण। कल के कार्यक्रम की चर्चा का विषय है पेड़ पौधे लगाएं जीवन बचाएं। साथ ही सुश्री शिखा बहल की वार्ता सुनेंगे विषय वन महोत्सव पर। कार्यक्रम में होगा लोक संगीत और रोजगार सूचनाएं भी। इसी के साथ अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अनुष्ठा को इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नई उड़ान।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नई दिशा, विकास की नई सोच और भविष्य की नई उम्मीदों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नई उड़ान में। मैं हूं शालिनी सिंह और अगले कुछ मिनटों तक हम साथ मिलकर बात करेंगे उन विषयों की जो आज के समय में हमारे जीवन, समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम में क्या है खास। आज के समसामयिक विषय में चर्चा होगी, जानेंगे शिमला समझौते की वर्षगांठ और विश्व खेल पत्रकारिता दिवस के महत्व पर। इसके बाद आउटडोर ब्रॉडकास्ट में हमारी विशेष श्रृंखला नवदृष्टि के अंतर्गत बात होगी एआई की हरित पाठशाला, खेतों में भविष्य की फसल की। और कार्यक्रम के अंत में होगा प्रगति बुलेटिन, जिसमें सुनेंगे विकास और जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए दोस्तों, जुड़ते हैं आज के समसामयिक विषयों के साथ। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जहां संवाद खत्म होता है वहां दूरियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन जहां बातचीत बनी रहती है वहां

समाधान की उम्मीद भी बनी रहती है। यही बात हमारे परिवार, समाज और देशों तीनों पर लागू होती है। आज 2 जुलाई हमें इस सोच के साथ दो महत्वपूर्ण बातें याद दिलाता है। पहली, वर्ष 1972 का शिमला समझौता, जिसने ये संदेश दिया कि कठिन हालात में भी बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। दूसरी, विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो हमें खेलों के उस सकारात्मक पक्ष की याद दिलाता है जो लोगों और देशों को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, 1971 में युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते का सबसे बड़ा संदेश था कि मतभेदों के साथ जो स्थिति है, बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से इसे सुलझाने की कोशिश की जाए। इतिहास हमें यही सिखाता है कि स्थायी समाधान की शुरुआत अक्सर संवाद से होती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसलिए अच्छे पड़ोसी संबंधों को दिशा में जो अगर बात आगे बढ़ाए तो संवाद हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। साथ ही साथ अगर कूटनीति की बात करें तो देशों के बीच में जो होने वाली बैठकें हैं, कूटनीति सिर्फ उसका ही आधार नहीं है। आसान शब्दों में अगर समझें तो रिश्तों को समझदारी, धैर्य और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने की कला है कूटनीति। मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन बातचीत बंद हो जाना कभी भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। अगर बात खेलों की करें तो खेल हमें केवल जीतना तो नहीं सिखाते बल्कि सम्मान के साथ खेलना सिखाते हैं। मैदान पर खिलाड़ी पूरी मेहनत से मुकाबला करता है लेकिन मुकाबले के बाद हार और जीत कुछ भी हो, खत्म होते ही एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यही खेल भावना है और यही संदेश समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। खेल युवाओं में आत्मविश्वास जगाते हैं, अनुशासन विकसित करते हैं और टीम के साथ आगे बढ़ना सिखाते हैं। यही कारण है कि खेल आज केवल प्रतियोगिता नहीं है बल्कि समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन चुके हैं। आज विश्व खेल पत्रकार दिवस भी है और खेल पत्रकार केवल स्कोर नहीं बताते हैं दोस्तों, ये समझने की बात है। वे खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी भी समाज तक पहुंचाते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि खेल की खबरें, तथ्य, संतुलन और सकारात्मक दृष्टि के साथ लोगों तक पहुंचे। अगर आज की पूरी चर्चा को हम 3 शब्दों में समेटना चाहें तो ये होंगे कि संवाद, सम्मान और सहयोग। ये तीनों बातें किसी भी मजबूत समाज और विकसित राष्ट्र की बुनियाद बनती हैं। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब विकास के साथ विश्वास भी बढ़ेगा, जब प्रतियोगिता के साथ सहयोग भी होगा और जब हर नागरिक अपने व्यवहार में संवाद की संस्कृति को जगह देगा। दोस्तों, आज अपने जीवन में बस एक छोटा सा संकल्प करने की जरूरत है कि जहां भी मतभेद हो वहां संवाद का रास्ता बंद नहीं होने देना है, क्योंकि बातचीत से भरोसा बनता है और भरोसे से बेहतर भविष्य। तो हमारी बातचीत तो होती रहेगी, जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: जी हाँ दोस्तों, कहते सुनते ही आगे बढ़ते रहेंगे तो प्यार से ज़िंदगी का बसर भी हो जाएगा और जो आपस में सामंजस्य है वो भी खूबसूरत बनता रहेगा, बात परिवार की हो, समाज की हो या फिर देश की। चलिए हम ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं हमारे आउटडोर ब्रॉडकास्ट की ओर, जहाँ हमारे साथी शोभित हमारी विशेष श्रृंखला नवदृष्टि के अंतर्गत आज के विषय AI की हरित पाठशाला, खेतों में भविष्य की फसल पर जमीनी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या वो लेकर आए हैं हमारे बीच।
1: समय बदल रहा है और समय के साथ बदल रही है खेती भी। कभी किसान मौसम का अनुमान आसमान देखकर लगाता था, आज वही किसान मोबाइल की स्क्रीन पर मौसम की जानकारी देख रहा है। कभी अनुभव ही सबसे बड़ा सहारा था, आज अनुभव के साथ तकनीक भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। लेकिन क्या ये बदलाव हर किसान तक पहुंच पाया है? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI केवल बड़े किसानों की तकनीक है या छोटे किसान के लिए भी उम्मीद की नई किरण? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे हैं सीधे खेतों के बीच में, किसानों के बीच में और उन विशेषज्ञों के बीच जो भविष्य की खेती को नई दिशा दे रहे हैं। आज हमारी श्रृंखला नवदृष्टि के अंतर्गत हमारा विषय है AI की हरित पाठशाला, खेतों में भविष्य की फसल। तो आइए शुरुआत करते हैं उस किसान से जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका अनुभव।

0: नाम क्या है आपका?
1: प्यारे लाल।
0: कितने सालों से खेती कर रहे हैं?
1: अरे हमका हो गई कम से कम 50 साल।
0: 50 साल से आप खेती कर रहे हैं?
1: हाँ, 50 साल।
0: क्या उम्र है आप?
1: अब हमारे 60 चल रहे।
0: अच्छा, ये अपनी खेती के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कौन कौन सी फसलें उगाते हैं?
1: खेती के बारे में यहाँ हम सब कुछ उगा चुके हैं।
0: अच्छा, एक बात बताइए, 50 सालों का अनुभव है तो आज की

0: खेती पहले से कितनी बदल गई है, क्या लगता है आपको?
1: बहुत बदल गई।
0: कैसे?
1: आज के 50 साल पहले खाने को प्रयोग अत्ता नहीं रहा है, इतना आप है।
0: अच्छा ये बताओ, आप 50 सालों से खेती कर रहे हो, इधर पिछले 5-10 सालों से भी खेती, और अपने आसपास किसानों को तो खेतों को देख ही रहे होंगे खेती करते।
1: खूब हम देखे
0: तो सब नई नई मशीनें जो टेक्नोलॉजी आई है,
1: हाँ,
0: उनके बारे में क्या?
1: ये साहब कुछ नहीं रहा, अब आई है।
0: इससे कुछ फर्क पड़ा है किसानों की आमदनी?
1: फर्क बहुत पड़ा है।
0: अच्छा इस उम्र में अगर आपको कुछ सिखाना चाहे, नई चीज, फोन चलाना या कुछ नई चीज तो सीखना चाहोगे?
1: हाँ बिल्कुल।
0: नाम बताइए दादा अपना।
2: हरि।
0: कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं?
2: 40 साल से।
0: कौन सा गांव लगता है ये? किस चीज की खेती करते हैं?
2: बैंगन सेम की।
0: तो 40 सालों में आपने इस खेती में क्या बदलाव देखा है, क्या क्या चीजें बदली?
2: अब ये मशीन आती है, जैसे फुहारा पड़ता है, पहले पीट से वाला रहे तो उससे बहुत हमको कम लाभ आती रहा है, और अब ये वाले जो मशीन आई फुहारादार से बड़ी मशीन आई है, नीचे डालो जैसे कीड़ा मकोड़ा बहुत है तो वो कुछ झटके में चला जाते हैं।
0: अच्छा ये आपका बेटा भी है?
2: हाँ बेटा है।
0: इसको तो जानकारी होगी?
2: इनको जानकारी है।
0: आपका क्या नाम है भैया?
3: रामजीवन।
0: ये बताओ रामजीवन, कि जैसे खेती आप कर रहे हो, खेत में खड़े हो, तो ऐसा कौन सा मोबाइल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाती है जो आपकी खेती किसानी में आपको फायदा पहुंचाती है?
3: फायदा ये पहुंचाती है कि जिसे हमें कोई दवा डालनी होती है तो फोन से पता चल जाता है।
0: तो फोन में आप कैसे उसको देखते हैं?
3: ऐप में जाते हैं, ऐप में देख लेते हैं।
0: अच्छा ऐप के माध्यम से आपको पता चल जाता है कौन सी दवा डालनी है? फसल की फोटो खींच के भेजते हैं?
3: हाँ, फोटो भेज देते हैं, फोटो देख के फिर उसी तरीके से दवा दे देते हैं।
0: अच्छा ये सब चीजों की सारी जानकारी आपको है?
3: जी जी।
0: तो जाहिर सी बात है ऐसे मौसम का भी आपको पता चल जाता होगा?
3: जी।
4: अनुभव खेती की सबसे पुरानी किताब है, लेकिन हर किताब समय के साथ नए अध्याय भी जोड़ती है। कुछ किसान अभी भी पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं। उनका मानना है खेत की भाषा वही समझ सकता है जिसने बरसों मिट्टी को अपने हाथों से महसूस किया हो। लेकिन इसी गांव में कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने नई तकनीक को अपनाया और धीरे धीरे बदलाव को अपनी आंखों से देखा। तो आइए सुनते हैं।
5: हमारा नाम सचिन तिवारी है।
0: अच्छा ये बताइए कि आप अपनी खेती से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी मोबाइल ऐप से या कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू लेते हैं?
5: बिल्कुल सर, हमको जैसे जब भी जरूरत लगती है, जरूरत के हिसाब से सर, मौसम के बारे में हो गया या किसी दवाई के बारे में हमको जानकारी चाहिए होती है तो उससे हम लोग वो कर लेते हैं।
0: तो आज की खेती पहले की खेती से कितनी बदल गई है, क्या बड़ा बदलाव आपको किस चीज में दिखाई देता है?
5: अब देखा जाए तो अब इस टाइम जो है खेती में हम लोगों को सुविधाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। अगर बसरते आपको अगर जानकारी अगर है तो जो है आप उससे काफी कुछ जो है नया कर सकते हैं।
0: अच्छा ये बताइए, AI का नाम आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका इस्तेमाल आपको खेती में क्या लगता है, फायदेमंद है?
5: बिल्कुल फायदेमंद है। आने वाले टाइम में अगर उचित प्रशिक्षण मतलब किसानों को होगा दिया जाएगा तो वो जो है उसका यूज करके जो है अपनी खेती को बहुत उत्तम बना सकते हैं।
4: आज दुनिया बदल रही है, खेती भी बदल रही है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है किसान की मेहनत। AI खेत में किसान की जगह नहीं ले सकती, लेकिन उसके फैसलों को अधिक सटीक, अधिक तेज और अधिक प्रभावी जरूर बना सकती है, और शायद भविष्य की सबसे सफल खेती वही होगी जहां अनुभव और तकनीक दोनों एक दूसरे के साथी बने।
0: भैया क्या नाम है आपका?
6: राहुल वर्मा।
0: ये बताइए आप क्या करते हैं?
6: मैं किसानी, बाकी अपना पटरी जो काम है दुकान का वो काम कर रहे हैं।
0: और बाकी पढ़ाई आपने क्या किया है?
6: मैंने पढ़ाई BSc AG की है।
0: अच्छा एग्रीकल्चर से आप जो है ग्रेजुएट हैं?
6: जी।
0: अच्छा आपने जैसे ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर में, तो आप लोगों को इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल आपको सिखाई गई है कभी?
6: हाँ जी सर, इस पे मतलब थोड़ा बहुत चर्चा किया है सर लोगों ने कि उसका मतलब प्रयोग करना चाहिए, प्रैक्टिकली जो भी काम कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत तो लाभ लेना चाहिए।
4: विज्ञान हमें केवल जानकारी नहीं देता, वो प्रकृति को समझने की नई दृष्टि भी देता है। मिट्टी की नमी, पौधों का स्वास्थ्य, बीज का चयन, कीटों का समय रहते पता लगाना, इन सब में AI एक सहायक की तरह काम कर सकता है। लेकिन तकनीक सफल तभी होगी जब किसान की भाषा बोलेगी, उसकी जरूरत समझेगी और उसके अनुभव का सम्मान करेगी। इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर गजेंद्र सिंह जी। आप आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं निदेशक रहे हैं और वर्तमान में श्री राम स्वरूप मेमोरियल में कृषि संकाय के निदेशक हैं।
7: सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेती में

0: जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी एआई है उसकी क्या भूमिका है और ये वास्तव में किसानों के लिए उपयोगी किस तरह से साबित हो रहा है?
1: देखिए, एआई जो है, एक तो पहली बात है, निर्णय लेने में मदद करता है।
0: किस प्रकार से सर?
1: मौसम, मिट्टी, फसल व कीड़े के आंकड़े की एनालिसिस माने विश्लेषण करके किसानों को सही समय पर सलाह देता है, जिससे वो किसान क्या करते हैं, उसका उपयोग करके उनके लागत में कमी आती है, उत्पादन बढ़ता है और रिस्क भी कम हो जाती है।
0: क्या एआई मौसम और जलवायु परिवर्तन है ऐसी चुनौतियों से निपटने में किसानों की मदद कर सकता है?
1: बिल्कुल, ये किसानों की मदद कर सकता है। जैसे कि बदलता मौसम, आप जान ही रहे, क्लाइमेट चेंज है, ये एआई जो है पूर्वानुमान देते हैं, जिससे किसान समय पर बुवाई, सिंचाई एवं फसल सुरक्षा जैसे फसल से संबंधित जो भी उसको क्रिया करनी है वो सही समय पर करता है, जिससे क्या होता है कि जो प्राकृतिक आपदा आने वाली है उसके नुकसान को ये कम करने में मदद करता है।
0: जो फसलों में रोग लगते हैं जैसे कीट है या अन्य फंगल इन्फेक्शन है वो आजकल बड़ी समस्या देखने में खेती में आते हैं, तो एआई इस तरफ किस तरह से मदद कर रहा है किसानों की?
1: देखिए क्या है, मोबाइल जो है उससे जो तस्वीर जो लेते हैं, कल कैप्शन लेके और भेजते हैं, तो वो शुरू की अवस्था में जब भेज देंगे तो वो ये एनालिसिस कर लेगा, एआई एनालिसिस करके, विश्लेषण करके आपको कई रोग और कीटों के बारे में पहचान करवा के सही समय पर उसके उपचार, आपको पता पड़ गया कि कीड़ा इतना लग रहा है, ये बीमारी है, तो आप उसका सही समय पर उपचार करके जो है उन कीड़ों की रोकथाम कर सकते हैं। जिसमें क्या है कि जैसे कि कीड़ा लग जाने के बाद में हमारे किसान भाई अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन एआई से आपको पहले ही वो फोरकास्ट कर देगा, आपको बता देगा रोग लगने वाला है, तो आपको उतनी दवाई की मात्रा की जरूरत नहीं होगी, जिससे आप अपना समय और पैसा भी बचा सकते हैं।
0: आपने अपना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: एक बात लगभग हर किसान की आवाज में समान थी, वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन ऐसा बदलाव जो सरल हो, सस्ता हो और भरोसेमंद हो। यहीं से विज्ञान की भूमिका शुरू होती है। तो आइए जानते हैं कि पौधों की दुनिया को गहराई से समझने वाले विशेषज्ञ इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं, और इसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर योगेश कुमार शर्मा, जो कि वनस्पति शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय और चंद्रभान गुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निदेशक के पद पर रह चुके हैं।
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में। आप ये बताइए कि बॉटनी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एआई खेती में ऐसा कौन सा बदलाव ला रहा है जिसे आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं?
3: देखिए, आज के समय में जैसे कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, आबादी निरंतर बढ़ रही है, इसलिए औद्योगिकरण किया जा रहा है, शहरीकरण हो रहा है, निरंतर कृषि के क्षेत्र कम होते चले जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में खेती के लिए कोई आधुनिक तकनीक या एआई जैसे उपकरण की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कि किसान अपने उत्पादन को बढ़ा सके।
0: अच्छा सर, जैसे आपने भी कहा कि जो ये जलवायु परिवर्तन है इसका असर खेती किसानी पर पड़ रहा है, ऐसे में एआई किसानों को किस तरह से वैज्ञानिक आधार पर सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है?
3: जैसा कि मैंने आपको बताया, एआई एक उपकरण है जो क्या करता है, बदलते हुए तापमान का, बदलती हुई जलवायु का, इससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उनको देता है, और उन आंकड़ों के आधार पर किसान या वैज्ञानिक अपनी खेती को बदलती हुई जलवायु के हिसाब से उसके अनुकूल तरीके से कर सकते हैं। यदि तापमान तेज हो रहा है तो उसी तरह की किस्मों का चयन करें जो कि अधिक तापमान में जीवित रह सकती हैं। जल का स्तर कम हो रहा है तो ऐसी किस्मों का चयन करें जिनको कम से कम जल की आवश्यकता है।
0: वनस्पति वैज्ञानिक के रूप में आपको क्या लगता है कि एआई भविष्य में पौधों के रोगों और नई नई किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
3: ये जो एआई है आंकड़ों का विश्लेषण है। कोई भी पौधों में रोग लगता है वो वातावरण पे, जलवायु पे निर्भर करता है। कीटाणु तो हर समय रहते हैं वातावरण में, लेकिन जब उनको उनके अनुकूल तापमान या नमी मिलती है वो सक्रिय होकर पौधों में रोग करते हैं। यदि हमको एआई से मालूम हो जाएगा कि तापमान या नमी वातावरण में कितनी होने जा रही है, के आधार पर हम पहले से या तो रोग प्रतिरोधक किस्मों का इस्तेमाल करेंगे या उस रोग की रोकथाम के उपचार पहले से कर सकते हैं।
0: अगर हम आने वाले 6-7 सालों के बाद खेती की कल्पना करें तो आपको क्या लगता है कि किसान के हाथ में केवल हल होगा या हल के साथ मोबाइल और एआई भी होगा?
3: जब कोई भी आधुनिक तकनीक आती है सबसे पहले उसका बहुत भय होता है।

0: उदाहरण के तौर पर जब कंप्यूटर आए तो लोगों को लगा कि रोजगार खत्म हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर से रोजगार और बढ़े। तो मेरा ये मानना है कि किसान का जो अपना अनुभव है उसके साथ में वो अगर एआई को भी सीखेगा, एआई को अपने प्रयोगात्मक तरीकों में इस्तेमाल करेगा, तो निश्चित रूप से उसका जो लाभ है वो दोगुना हो जाएगा। जो हमारी आज की ज्वलंत समस्या है कि जलवायु निरंतर परिवर्तित होती जा रही है और उस परिवर्तन की वजह से जो भी फसल है, जो खेती है, उसमें बहुत ही नुकसान हो रहा है। असामयिक वर्षा हो जाती है, जल का स्तर निरंतर गिरता चला जा रहा है, वर्षाएं कम होती हैं, तापमान अधिक होता है। तो इन सब के आंकड़े या सूचना जब हमको पहले ही एआई से प्राप्त हो जाएगी, किसान अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके यानी दोनों का संतुलन बना के फसल और खेती की पैदावार को और बेहतर कर सकता है, ऐसा मेरा विचार है।
1: सर, आपने अपना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपने मुझको समय दिया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: मिट्टी की अपनी स्मृतियां होती हैं, बीज की अपनी उम्मीदें और किसान की अपनी दूरदृष्टि। अब इन सब के साथ जुड़ रही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो खेत को मशीन नहीं बल्कि और अधिक समझदार बनाने की दिशा में एक कदम है। आज के सफर में हमने देखा कि बदलाव केवल तकनीक से नहीं आता, बदलाव आता है सीखने की इच्छा से। और जब किसान सीखने को तैयार हो, विज्ञान साथ हो और तकनीक सरल हो, तो भविष्य की फसल केवल खेतों में नहीं बल्कि पूरे समाज में समृद्धि लेकर आती है। तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी शोभित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: दोस्तों, शोभित के साथ हम जुड़े एआई की हरित पाठशाला में और बहुत कुछ जाना और समझा भी। और सीखने की प्रवृत्ति ज़रूरी है विकास के लिए। तो चलिए अब हम विकास के उस बुलेटिन की ओर आपको ले चलते हैं जहां से विकास की रफ्तार और बढ़ेगी आपकी, क्योंकि ये वक्त है विकास यात्रा पर नज़र डालने का। प्रस्तुत है विकसित भारत प्रगति बुलेटिन। नई दिल्ली में आज भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर वार्ता हो रही है। दोनों देशों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक सुरक्षा और निवेश सहयोग की गति देने पर फोकस है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम देश के उभरते एआई और डेटा सेंटर हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। वैश्विक कंपनियों के निवेश से डिजिटल अवसंरचना और रोजगार के नए अवसर की उम्मीद बनी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट और लाइम स्ट्रॉम ने भारत, मलेशिया और सिंगापुर को जोड़ने वाली नई समुद्री ऑप्टिकल केबल परियोजना की घोषणा की है। इसे भारत के क्लाउड और एआई कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। स्कूल शिक्षा के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म को देश के वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में और सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को एकीकृत डिजिटल संसाधन उपलब्ध होंगे। बच्चों के भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एआई आधारित शिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल कौशल और नवाचार आधारित शिक्षा पर लगातार जोर बढ़ रहा है। ग्रामीण रोजगार से जुड़ी नई व्यवस्था के तहत 1 जुलाई से संशोधित मजदूरी दरें लागू हो गई हैं। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में किसान पाठशाला 8.0 अभियान के तहत इस मौसम में लगभग 20 लाख किसानों को आधुनिक खेती, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत में एआई आधारित उत्पाद विकसित करने पर स्टार्टअप और उद्योगों को फोकस पे लगातार बढ़ाने के लिए बात की जा रही है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों के लिए स्वदेशी समाधान विकसित किए जा रहे हैं। तो ये थी आज विकास खबरें। नई उड़ान के सफर में हम अभी आपके साथ और हैं खूबसूरत से गीत के साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, जाना तो हमें है, आपको भी इंतज़ार होगा कहीं और जुड़ने का, सुनने का, लेकिन हम अपने समय के साथ यही कहेंगे कि आपको ये जो जानकारियाँ हम दे रहे हैं आपके काम की, कैसी लग रही हैं, इसका प्रत्युत्तर हमें चाहिए होता है, और वो आप हमें भेजते हैं अपने प्यारे प्यारे खतों के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से। तो कैसे भेजेंगे ये सुनिए।
1: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम, अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान airlucknow@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

जरिए जुड़े रहिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय पर। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त शालिनी को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। ग्राम बहोलीपुर, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही से ज्ञान देवी सूचित करती हैं कि रिया शुक्ला 11 मई 2026 दोपहर 12:30 से ग्राम बहोलीपुर, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही से लापता हैं। रिया शुक्ला की आयु 24 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य, रंग गेहुआ व कद लगभग 5 फीट है। जिस किसी व्यक्ति को इनके विषय में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया संबंधित थाने पर सूचना देने की कृपा करें। ग्राम मुंशी जई कपूरा, थाना व जनपद भदोही से अजीत कुमार राय सूचित करते हैं कि अंजलि राय 27 अप्रैल 2026 शाम 4 बजे से वाराणसी रेलवे स्टेशन से लापता हैं।

0: जली राय की आयु 22 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य, लंबा चेहरा, रंग गोरा व कद लगभग 5 फीट 4 इंच है। इनके बाएं हाथ पर AR का टैटू बना हुआ है। जिस किसी व्यक्ति को इनके विषय में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचना देने की कृपा करें। मोबाइल नंबर है 7007399198। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन ले, 7007399198। ग्राम बरणी पोस्ट भवानीपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही से अभिषेक दुबे सूचित करते हैं कि रिया दुबे ग्राम बरणी पोस्ट भवानीपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही से लापता हैं। रिया दुबे की आयु लगभग 23 वर्ष है, शरीर व चेहरे की बनावट सामान्य, रंग गोरा व कद लगभग 5 फीट है। जिस किसी व्यक्ति को इनके विषय में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया संबंधित थाने पर सूचना देने की कृपा करें। ग्राम गहरपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही से मैनुद्दीन सूचित करते हैं कि राबिया 8 मई 2026 ग्राम गहरपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही से लापता हैं। राबिया की आयु लगभग 58 वर्ष है। जिस किसी व्यक्ति को इनके विषय में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया संबंधित थाने पर सूचना देने की कृपा करें। जिस किसी व्यक्ति को इन खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी हो या मिले तो कृपया इस पते पर सूचना देने की कृपा करें। प्रभारी विलुप्त व्यक्ति
1: 25 करने तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से सरकार रोजगार, बेहतर मजदूरी, ग्राम पंचायत आधारित योजना।
0: अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां मंत्रणां विहितवान् उभाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा औषध कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा संयुक्तराष्ट्र महासभायां अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलंबित प्रस्तावः समर्थितः जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा दक्षिण पश्चिम प्रावृत्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन 2000+ परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः अथ वार्ताः विशदीकृत्य भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा औषध रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां वार्तां साधितवान् द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समय

0: इत्युक्ते पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते। सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सुत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: जापान देशस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति, तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विक पटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं सङ्कल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखांकितं यत् वर्तमानसमये समग्रं विश्वम् आपूर्तिशृङ्खलावरोधैः, व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रान्तरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां, सुशासने, व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। संस्कृत

0: पंचो जय हिंद।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ रेनु बहनी।
1: भैया देखो, हम सबे कोई चाहिए था कि हमरे सबके लगे रोजगार रहे, हम पंचे कुछ ना कुछ काम करत रही, वही के खातिर हमेशा प्रयासो करी थे। लेकिन ये प्रयास खाली हम ही नहीं करी थे, हमारी सरकार भी करत है।
0: बिल्कुल, तबे तो देखो इतनी बढ़िया योजना हम पंचन की तय लाई है, और वो योजना है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, और यही के तहत हम पंचन का पक्का रोजगार मिलत है।
1: और भैया 125 दिन के रोजगार जो है पक्का मिलत है। जैसे रोजगार मिल जाते हैं उसके बाद आपके खाता में पैसों आ जाते हैं भैया।
0: बिल्कुल बहनी, और जब रुपया पैसा रहा था तो देखो कोनो मेर के दिक्कत नहीं होता है। मूल अगर तबहु हम पंच बीमार हो जाए या हमार तबीयत खराब हो जाए तो वहू किताए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इतनी बढ़िया तरह पूरे भारत में चलाई जा रही है कि कुछ कह नहीं है।
1: बिल्कुल भैया, एक तो देखो इलाज कराओ आजकल वैसे बड़ा महंग है, लेकिन जब से ही योजना आ गए है भैया, इसके तहत देखो सबका इलाज मिल रहा है, सबके दवा पानी हो रही है और सब कोई स्वस्थ है भैया।
0: बिल्कुल यही बदे, यही के जानकारी था आज अपने बैठकी में एक वार्ता लायन है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और ग्रामीण भारत, और यही पे जानकारी दे रहे हैं परवेज अहमद सिद्दीकी भैया।
2: कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन जब बीमारी आती है तो सबसे बड़ी चिंता इलाज से अधिक दवाइयों के खर्च की होती है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले गरीब, किसान, मजदूर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए महंगी दवाएं खरीदना

आसान नहीं होता है। कई बार लोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरी दवा नहीं ले पाते, जिससे बीमारी और गंभीर हो जाती है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को विस्तार दिया। इस योजना का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हों, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक अभाव के कारण उपचार से वंचित न रहो। आज देश भर में लगभग 18,000 जन औषधि केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर 2100 से अधिक प्रकार की दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल एवं स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद उपलब्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता सरकारी मानकों के अनुसार जांची जाती है और उनकी कीमत बाजार में मिलने वाली कई ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक कम होती है। भारत दुनिया में जेनरिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। इसके बावजूद लंबे समय तक आम लोगों में धारणा बनी रही कि केवल महंगी ब्रांडेड दवाएं भी प्रभावित होती हैं। भारत दुनिया में जेनरिक दवाओं में सबसे बड़े

व्यक्ति केवल आर्थिक अभाव के कारण उपचार से वंचित न रहो। आज देश भर में लगभग 18,000 जन औषधि केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर 2100 से अधिक प्रकार की दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल एवं स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद उपलब्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता सरकारी मानकों के अनुसार जांची जाती है और उनकी कीमत बाजार में मिलने वाली कई ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक कम होती है। भारत दुनिया में जेनरिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। इसके बावजूद लंबे समय तक आम लोगों में धारणा बनी रही कि केवल महंगी ब्रांडेड दवाएं भी प्रभावित होती हैं। भारत दुनिया में जेनरिक दवाओं में सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। इसके बावजूद लंबे समय तक आम लोगों में यह धारणा बनी रही कि केवल महंगी दवाएं ब्रांडेड दवाएं ही प्रभावी होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया। अब लोग समझ रहे हैं कि यदि दवा का सक्रिय घटक समान है और निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती है तो कम कीमत वाली जेनरिक दवाएं भी उतनी ही प्रभावी हो सकती हैं। यदि हम ग्रामीण भारत की बात करें तो इस योजना का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हमारे देश की अधिकांश आबादी गांव में रहती है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग कृषि और मजदूरी पर निर्भर हैं। उनकी आय सीमित होती है और स्वास्थ्य पर होने वाला अतिरिक्त खर्च पूरे परिवार का बजट बिगाड़ सकता है। ऐसे में जन औषधि केंद्र ग्रामीण परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनकर उभरे हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, थायराइड, अस्थमा और अन्य दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित मरीजों को हर महीने नियमित दवाएं लेनी पड़ती हैं। जब वही दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं, तो परिवार की आर्थिक बजट भी प्रभावित होती है, तो परिवार की आर्थिक बचत भी होती है और मरीज बिना उपचार छोड़े दवाएं नियमित रूप से ले पाता है। इस योजना का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। जब दवाओं पर खर्च कम होता है तो परिवार अपनी आय का उपयोग बच्चों की शिक्षा, बेहतर पोषण, खेती या छोटे व्यवसाय में निवेश करने के लिए भी कर सकता है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से भी मजबूत कर रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का लगातार विस्तार किया गया है। राज्य में हजारों जन औषधि केंद्र संचालित हैं और ग्रामीण क्षेत्रों तक उनकी पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी स्तर पर संचालित जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लाखों मरीज कम कीमत पर दवाएं प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां मधुमेह और रक्तचाप के मरीज का मासिक दवा खर्च पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। इससे न केवल मरीजों को आर्थिक राहत मिली है बल्कि नियमित उपचार की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मरीज नियमित दवा लेते रहें तो गंभीर जटिलताओं और काफी हद तक उन्हें रोका जा सकता है। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। कहीं कहीं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता प्रभावित होती है और कई लोगों को योजना की पूरी जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए जन जागरूकता अभियान और दवाओं के निर्बाध आपूर्ति पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कई ऐसे जनपद हैं जो कृषि प्रधान हैं, जहां अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन जनपदों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों के माध्यम से हजारों मरीज कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त कर रहे हैं। यदि ब्लॉक स्तर की बात करें तो जन औषधि योजना का लाभ जिले के विभिन्न विकास खंडों तक पहुंच रहा है, जहां जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा निजी जन औषधि केंद्र उपलब्ध हैं, वहां लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और दवाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। यदि प्रत्येक विकास खंड के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी क्षमता के साथ जन औषधि केंद्र संचालित हों तो ग्रामीण जनता को और अधिक लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविकाएं, ग्राम पंचायतें और स्वास्थ्य विभाग मिलकर लोगों को जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूक करें। जब लोगों का विश्वास बढ़ेगा तभी योजना का वास्तविक उद्देश्य पूरी तरह सफल होगा। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि स्वास्थ्य

0: सेवा को अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने का एक सशक्त प्रयास है। इसने लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में इस योजना ने यह विश्वास जगाया है कि अच्छी चिकित्सा केवल संपन्न लोगों को अधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी अधिकार है। भारत सरकार की योजना विशेषकर ग्रामीण भारत के लोगों के लिए एक संजीवनी की तरह काम कर रही है। अधिकांश ग्रामीणों के लिए महंगी औषधि, जो समान रूप से उन्हें नियमित तौर पर लेनी होती है, अक्सर वे वहन नहीं कर पाने के कारण बिना डॉक्टर की सलाह के बीच में ही ब्रेक कर देते थे। भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के चलते वे अब आसानी से जेनरिक औषधि अपने बजट के अनुरूप खरीद लेते हैं, जिससे उन्हें पूरा लाभ मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत मिलने वाली औषधियाँ गुणवत्ता से भरपूर हैं, जिससे ग्रामीणों का भरोसा भी बढ़ा है और अब वे स्वयं अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों को इस संबंध में न केवल जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। आवश्यकता है कि विशेषकर ग्रामीण भारत में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, बल्कि कुछ और महत्वपूर्ण औषधियों को भी शामिल किया जाए, जिससे उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इसने स्वास्थ्य सेवा को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जन भागीदारी का अभियान कर दिया है। देश भर में अनेक युवा फार्मासिस्ट एवं सहायता समूह और सामाजिक संस्थाएं जन औषधि केंद्रों का संचालन कर रही हैं। आज भारत में गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और थायराइड की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इन बीमारियों का उपचार कई वर्षों तक चलता है और मरीज को नियमित दवा लेनी पड़ती है। यदि दवा महंगी हो तो कई बार लोग इसे बीच में इलाज छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इस चुनौती का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है। कम कीमत पर नियमित दवा उपलब्ध होने से उपचार निरंतर चलता रहता है और रोग को नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है। सरकार ने इस योजना को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा है। अब कई जन औषधि केंद्रों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। नागरिक अपने निकटतम केंद्र का पता लगा सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कौन सी दवाएं वहां उपलब्ध हैं। इससे योजना अधिक पारदर्शी और जनसुलभ बनी है। आने वाले समय में यदि प्रत्येक जिले में दवाओं की उपलब्धता की डिजिटल निगरानी और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए तो ये योजना और अधिक प्रभावी बन सकेगी।
1: प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और ग्रामीण भारत पर इतनी बढ़िया तना परवेज अहमद सिद्दीकी भैया बताएं, यकरी तायन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और रामजीत भैया देखो, अब इतनी बढ़िया जानकारी रहे है, मन खुश हो गया। कहे कि जब जानकारी बढ़िया मिल जाते अपने मुताबिक तो जो है लागत है गए आगे के जीवन सरल हो गया है।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन जब जीवन सरल होते तो कहानी किस्सा बड़े निक लागत।
1: बिल्कुल,
2: तो कहे ना आज एक किस्सा सुन ली जाए।
1: बिल्कुल, यही वजह हम लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ एक बहुत बढ़िया लाइन है, जही के शीर्षक है उजियार। कहानीकार भैया जौन है वह है अरुण सिंह, और यही का सुन के जो आंख है ना उभरी आई। तो आओ ये कहानी का सुना जाए और गुना जाए।
3: भागी काकी के दिन बहुत गरीबी में बीता, आधी से ज्यादा जिंदगी सियत पूरत कौनो तरह कटा, खाए के ना अटे, खेत बारी हिस्सा हंसिया बाँट बखूर सब जगह लड़त लड़त निकल गया। बटत बटत उनके हिस्सा में दुई कूला खेत आए, एक थी गाय समेत चार परानी के पेट भरा मुहाल। मुला भागी काकी ईमान धर्म नाय छोड़िन, न केहू के आगे हाथ फैलाइन, न कौनो धतकरम किहिन। एक थे पुस्तैनी बकरी रही, वहीं में दक्षिण पह की ओर एक थी कुठरी मिली उनका, कौनो भी जिंदगी काटब कठिन, सुबह एक बदे झेलना और खाए खातिर मकुनी। दुई परदनी से गुजारा चलत रहा, साल दुई साल नैहर जाए या नैहरे से भाई भतीजा आवे तो लूगा साड़ी मिले, मुला काकी के लिए बहुत ही संकोच हो। भागी के जिद रही कि कुछ हो जाए, मुला लड़कन कौनो विध शिक्षित हो जाए, अपने यह उद्देश्य के पूरा करे खातिर जीव लगाए दिन। फटही लुगरी पहनब आधे पेट रहब, मुला लड़कन के पढ़ लें दिन रात यह सोचत रहें। पहाड़स जिंदगी धोवत भागी, जौने महफिल में जाए तो गीत गौनई से छब लाग जाए, हंसत भिसत रहें। मनसेधु अमरनाथ परदेश गए तो लौटबे ना कहस, वहीं रह गया सब कहत हैं कि दूसर कई लहन। गाँव वाले कहें कि कौनो मेहरारू अमरनाथ के जादू से फंसाए लेह बा, सोग्गा बनाए लेह बा, दुनिया लाख शिकायत करे, मुला भागी कबहू कुछ न बोलें, न अच्छा और न

पूरा परदेश कभो कभार केहू आवे तो एकाध चार छह लाइन के चिट्ठी और कुछ सामान भेज दें अमरनाथ, लड़कियन के जूता छाता साबुन तेल चाय पत्ती यही कुल। लेकिन जीवन इतना से कहाँ चले, लागे कि जैसे सरदार गर्दी बा, केहू न आगे न पीछे। हाँ दो चार साल पे जब कबहू अमरनाथ अपना आवें तो जैसे राजा रहें, धब धब ब्रास लेट के धोती, करिया चमकत चमड़ा के जूता, बुर्राक मोछ, दुआरे महफिल सजय, चाह पे चाह बनत रहे, कबहू कलिया मछरी बनय, खूब मजमा लागे। ये भागी काकी जितना हो सके और जय दिन उ रहें उनके सेवागारी करें, टुकुर टुकुर अपने मन सेधुक मुँह निहारें। बस एक आध हफ्ता में उनकर जाय के समय आ जाए, भारी मन से विदा करें, अफून अपने धर्रा पे जिंदगी चल पड़े। धीरे धीरे मन से धूक अवबो जाप बंद हुई है, कबो कबो घोर संकट मर्राए पड़े। जब खाए के बहुत संकट आ जाए तो पड़ोसी खियाँ जाएं, उनकर कुछ टहल कराए दें, रोटी बेलें तो परथन मांग लें, वो कांचरे में बांध लें, घरे लायक वही के रोटी बनाए के लड़कन के खियावें। कार्तिक अगहन में गंजी के समय में गंजी और उखुड़ी के रस पी के सो जाए, लेकिन संतोष रहा है कि बड़का बेटवा संतोष पढ़ के लिख के ठीक निकल गए, छोटकबाऊ अपने भाई के साथे साथे लाग रहा है। कौनो तरह बड़का बेटवा इंटर पास भ रिजल्ट निकला तो भागी काकी के जैसे भाग जाग गए, पूरे गांव में बेटवा अव्वल आए, जितना खुशी मिली उतने उदास हो गए भागी। मने अब दूसर चिंता की लड़कियाँ आगे काव करे कैसे पढ़े लिखे, लेकिन कुछ चौरौधा गहना गांठी बचाए रहीं, मन में आए कि यह कुल बेच बाँच के पढ़ाओ लिखाओ बचपन के। मने एक हठ रहा कि बेटवा पढ़ डारत तो सब काफा कट जात, बेटवा अपनी महतारी के अनुगामी पहाड़स धीरज धारी, सब दुख दर्द समझे बोले न कुछ। वह खूब पढ़स, एक दिन भागी काकी सीधा बहू का बाँध के बेटवा के इलाहाबाद पढ़ाई भेज दीन, बेटवा वहाँ पढ़ाई में अव्वल निकलत चला गया, बड़ा इम्तहान पास कैल हिस सजलौका हो चला रहा। काकी चूल्हा के लगे ईंधन धरे जात रहीन कि चिट्ठी रसा जोर से बुलायन, बाटू हो संतोष का अम्मा। भागी के जीव धक्क से हो गए, लपक के दुआरे गईं तो चिट्ठी रसा एठे चिट्ठी लिहे इंतजार करत रहन। काव है बाबा, संतोष के नाव से चिट्ठी आए, लागत है कौनों बड़की नौकरी पास के हैं, लागत बा कि तुहार तपस्या पूरी होगी बा। उ यह कह के चिट्ठी पकड़ाए देहन, भागी के जैसे देह कांपई लाग, एक झुरझुरी अस उठी, पढ़े लिखे का तो उनके आवत ना रहा। उ चिट्ठी दोनों हाथे से रोप लिहिन और दौड़त राम रतन खियाँ पहुँच गईं। राम रतन चिट्ठी पढ़ेन तो उनकर मुँह खिली गया, भौजी संतोष बड़का इम्तहान पास कर लेहन, अब साहेब बनिए। इस सुनते भागी के आँख से पानी ढुरुक पड़ा, एक थे सीसी से बनी डबरी चौखटे पर लुहूर लुहूर बरत बा, भित्तर बहरे अजोर फैलत बा, जैसे जैसे सूरज बूढ़त बाटे और अन्हियार गहिरात जात बा, वैसे वैसे डबरी के अजोर बढ़त जाता है। वह दिन भागी काकी बहुत देर तक वह अजोर निहारत रहीं, लागत रहा जैसे अन्हियार कटत जात होए। गांव जवार महल्ला मच गया कि अमरनाथ के बेटवा साहेब बन गया। एक दिन राम रतन बिरजराज से ही बातीप लड़ी लेहन, लेकिन अमरनाथ कहन काऊ जौन उनकर लड़के साहेब बन गए, किहिन तो कुल भौजी। ये बात भागी काकी तक पहुंची तो राम रतन के बुलाइन, हे भैया तू काहे केहू से लड़त है, जाय दे जिन तू तू मैं करा, हाथी घूमे गाँव गाँव जेकर हाथी वही के नाव, बस यह मान ले संतोष करा। राम रतन काकी के बात के कबहू उजू नाय केहन, आज बड़के हाकिम के बड़के लान में लोहे के झलुआ पर झूलत झूलत भागी काकी अपने बीते दिने में गुताई गईं, ना जाने कितना पीछे चली गईं। अवह एक पुरान गीत गुनगुनावई लागिन, मोहिया के रसरी पिरितिया के पलना, आशा भरी मैया झुलावई अपन ललना, जौनी दीना बोलिहें लाल तोतरी बानी, दतुली से अंगुरी में करिहें निशानी, बिहस कर मनवा मुदित कर, हमरे मुहाँ पे धई दहें मुँह अपना, आशा भरी मैया झुलावें आपन ललना, जौनी दीना आई हैं लाल के जवानी, घुंघटा के ओटवा से देखी हैं किसानी, सदिया रच

0: ऐबे चौक पूर्व ऐबे गईहें गीत सखी नाची ऐबे सारा अंगना आशा भरी मैया झुलावें आपन ललना। जौनी दिन आईहें मोरे लाल के गवनवा चोरी चोरी चुपके चुपके चहियें मिलनवा। धीरे धीरे लात धरिए हमसे छुपके बात करिहें देखत रहा मुँह ढाँप लेबे अपना आशा भरी मैया झुलावे। जौनी दीना बनिहें लाल सीमा के सिपाही विधवा क दुधवान करिहें लजाई कैके विजय अहें हमरो चरण छुईहें। वही दिन देख के अघहें दोनों नैना आशा भरी मैया झुलावे अपन। गावत गावत काकी का आँख भीज गए। तब तक मझिल का पोता आए और काकी झकझोरस दादी चलिए नाश्ता कर लीजिए। काकी अतीत से वर्तमान में लौटिन अचरा से कोर पूछिन और धीरे से झलुआ से उतरिन। बड़की कोठी के बड़का हरियर लान भीतर बाहर लड़कियन बच्चन का हंसी झरत बा। कितना सब बदल गया उन्हें कुल याद आवे लाग न नींद भर सोए न पेट भर खाए। घर के उदास चूल्हा गंजी और रस फटही लुगरी दूसरे घरे के टहल सब साक्षात जैसे दिखाए लाग। तब तक झक सफेद गाड़ी पोर्च में लाग गए। साहब के जाए के टाइम हो गए। अब साहब का अर्दली गाड़ी के दरवाजा खोलत बा। साहेब माइक गोट धरत बोलन माई दवाई समय से खाए लिहू हम संझक जल्दी लौटब तब चलब डॉक्टर के यहाँ। हाथे में एक फाइल दबाए बैठ के चल दहन साहेब अपने अपसे। ऊ बड़का हाकिम के वो नाय रहा उन्हें वह बड़का बिटवा रहा संतोष जौने के जू परान दे के और आपन कुल सऊक सिंगार भूल के पढ़ाइन। काकी के दोनों बिटवा बड़के अफसर बन गए। भागी काकी के आखिन में पानी भरी आए। छुटका फौज में कौनो बड़ा अफसर बा सीमा पर तैनात है रोज उसे फोने बतियाथिन। भागी काकी दूर तक गाड़ी निहारत निहारत अपने मने में बुदबुदाइन शिक्षा और संघर्ष कभो विफल नाय होत मने के दीन ईमान और धीरज अकारथ नाय जात। उनके घरे देर भले हुए अंधेर नाय होत।
1: लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ जैके शीर्षक रहे उजियार बहुत बढ़िया रहा और यही की ताँ अरुण सिंह भैया कर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रामजीत भैया
1: हाँ रेनु बहनी
2: अब देखो इस समय पर बरखा हो लाग है मानसून आएगा वा भैया और ऐसे मैया जो है बहुत से लोग अब तैयारी कर चुके रहे हैं कि हम पंचे पौधरोपण करबे गढ़ाड़ा खोदे रहे हैं और जो कोई नाई खोदे है वह इस समय पर यहाँ अब वृक्षारोपण के बड़ा मुफीद समय चल रहा है भाई।
1: बिल्कुल बहनी और यह समय तो देखो जौने खंती आम एक बाग में चला जाओ तो आम तो गिरवे करा था पका पका आम जब आदमी खा था ना तो यकदा ही जरूर सोचा था कि अब की हम अपने घर के पिछवाड़े जौन खाली जमीन है वहीं पर आम के पेड़ जरूर लगाओ। तो भैया सिर्फ सोचे नहीं है बल्कि कई लिए और पिछवाड़े पेड़ अपने लगाए लिए काहे फलों मिली छाहों मिली और अगर लकड़ी वकड़ी जरूरत रही तो वह काम काज पूरी हुई तो कौनो मेर का दिक्कत ना हुई।
2: बिल्कुल और समय भी बहुत बढ़िया है इस समय पर लगाई हो तो पौध जो है जल्दी पक रहे थे भैया।
1: बिल्कुल मूल एक बात कहे चाहे
2: हाँ,
1: बहनी
2: अब तुम्हें कह लियो
1: हाँ कि जैसे हम कौनो पौधा लगाई थे कौनो पौधा कर थे तो अगर हम उन्नत पौधा लगाई हम अपन बागवानी उन्नत करी तो वही का जो फायदा रहा था वो बढ़िया तना मिला था।
2: बिल्कुल भैया बढ़िया तना मिला था लेकिन इके खातिर जानकारी भी हो बहुत जरूरी होती
1: तो है
2: और जानकारी देखो भाई हम अपने कार्यक्रम में हमेशा लेके आए थे तो आज ऐसी एक जानकारी भेंटवार्ता के रूप में हम लेके आए हैं फलदार पौधों की उन्नत बागवानी। वार्ताकार हैं डॉक्टर दुष्यंत मिश्र भैया और इनसे देखो बातचीत कर रहे हैं अपने डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया तो और दोनों जन की बतकही सुनी जाए और गुनी जाए।
1: बिल्कुल
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों खेती के साथ साथ जहाँ नए बाग लगाना चाहते हैं यानी फलदार पौधों की उन्नत बागवानी लगाना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर दुष्यंत मिश्रा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां नए फलदार पौध लगाना चाहते हैं बागवान भाई बहन तो क्या सलाह है?
4: सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं देखिए सलाह के तौर पर यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आजकल मार्केट में देखते होंगे कि विदेशी फल या बाहर से आए हुए फल हमारे मार्केट में भर गए हैं इसलिए सबसे अच्छा होगा कि हम लोग

0: उन्नत बागवानी को बढ़ावा दें, जिसमें कि हमें अच्छी फसलों का चुनाव और उनकी अच्छी प्रजातियों का चुनाव करना है। और ये काम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भारत की या उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, भूमियाँ हैं, हर प्रकार के फलों की बागवानी के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। इसलिए हमें उन्नत किस्मों के फलों की बागवानी को बढ़ावा देना होगा।
1: जहाँ नए बाग लगाने हैं डॉक्टर साहब, नए फलदार पौध की उन्नत बागवानी करनी है, तो स्थान का चुनाव भी महत्वपूर्ण।
0: जी जी हाँ, स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस पे हमारी सारी मेहनत जिस स्थान पे हम करेंगे उस स्थान का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले देखिए, वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए आपकी, जल ठहराव नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये देखिए, वहाँ पे कांटेक्ट रास्ता अच्छा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं,
1: ताकि बाजार।
0: जी हाँ, बाजार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस स्थान पे आप चुनाव कर रहे हैं उसकी फेंसिंग यानी कि तारबंदी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस समय जो हम आवारा पशुओं से पशुओं को बागवानी को नुकसान देख रहे हैं, लोग बागवान लोग लगाते हैं लेकिन उनको नुकसान हो जाता है। जिस भी स्थान का चुनाव करें वो प्रोटेक्टेड हो, आपकी फेंसिंग हो, चाहे लिविंग फेंसिंग हो चाहे आर्टिफिशियल फेंसिंग हो, फेंसिंग से प्रोटेक्टेड।
1: यानी सजीव बाड़ भी लगा सकते हैं।
0: जी हाँ, सजीव बाड़ के रूप में आप, जैसे हमारे बहुत सारे विकल्प हैं, करौंदे की बागवानी लगा सकते हैं, किनारे बिल्कुल किनारे करौंदा लगा सकते हैं, या जो बेर होता है जिसको हम बेर कहते हैं, जंगली बेर झरबेरी, उसके किनारे किनारे बाड़ लगा सकते हैं। फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं ये और बहुत तेजी से एक बाड़ बना लेते हैं, उसके बाद उसको हम शेप देके कटाई छटाई करके मेंटेन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कौन कौन से फलदार पौधों का चुनाव करें जहां उन्नत बागवानी करनी है, और उनकी कौन कौन सी खास प्रजातियां हैं जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छी रहेंगी?
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपका प्रश्न है। जहां तक फलों की और उनकी प्रजातियों की बात करते हैं, तो हम उन्नत बागवानी की बात कर रहे हैं इस समय, तो इसलिए हमें पुरानी परंपरागत प्रजातियों से थोड़ा सा अलग बात करना पड़ेगा। जैसे कि हम आम की बात करें, आम में दशहरी, लंगड़ा, चौसा बहुत हो चुका है, इनके एरिया बहुत हो चुकी है, 80-90% एरिया इन्हीं किस्मों के अंतर्गत है। तो यदि अब हमें उन्नत बागवानी की बात करनी है तो कुछ नवीनतम किस्में ऐसी हैं जिनमें पुरानी प्रजातियों में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर किया जा चुका है। जैसे पुरानी समस्या प्रजातियों में क्या होता था, पेड़ बहुत बड़े हो जाते थे, उनमें अनियमित फलन की समस्या होती थी, एक साल फल रहे हैं एक साल नहीं फल रहे हैं। तो अब हमारे पास जो उन्नत किस्में हैं, जैसे कि हमारे केंद्रीय पुष्प बागवानी संस्थान से निकली है अंबिका, अरुणिका, और एक अभी नवीनतम निकली अवध अभया।
1: अवध अभया
0: जी हाँ। तो इन प्रजातियों की खासियत यह है कि बौने आकार की प्रजातियां हैं, ठीक है, प्रतिवर्ष इसमें फलन आती है और फलों की हार्वेस्टिंग थोड़ा सीजन में लास्ट में होती है, लेट हार्वेस्टिंग प्रजातियां हैं। और जो अवध अभया जिसका हमने अभी नाम लिया, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी, जिसको हम कहते हैं कि मौसम में जो अनियमितताएं आती हैं उनको झेल लेती है। इसका जो डंठल होता है बहुत ही मजबूत होता है, फल अपने आप नहीं गिरता है, जब तक इसको आप तोड़ोगे नहीं इसका फल नहीं गिरेगा।
1: और सघन बागवानी के लिए अच्छी
0: भी? जी हाँ, सघन बागवानी के लिए भी उपयुक्त है। जैसे कि इन पौधों की बढ़वार बहुत अधिक नहीं होती है, बढ़वार बहुत अधिक इसलिए भी नहीं होती क्योंकि प्रतिवर्ष फलन कर रहा है, प्रतिवर्ष फलन कर रहा है, इसकी सारी एनर्जी फलों में जा रही है, पौधे की वृद्धि में एनर्जी नहीं जा रही है, इसलिए इनका आकार भी छोटा रहता है। तो सघन बागवानी के हम लोग मध्यम सघनता की बागवानी को हमारा संस्थान अनुमोदित करता है। तो मध्यम सघनता की बागवानी में पौधे से पौधा 5 मीटर और पंक्ति से पंक्ति 5 मीटर, जो कि परंपरागत विधियों में 10×10 मीटर हुआ करता था।
1: तो
0: इस तरह से हम लोग करके 1 हेक्टेयर में 400 पौधों को लगा सकते हैं।
1: यानी अगर एकड़ की बात करें तो लगभग 1600
0: 160 जी हाँ जी हाँ।
1: अमरूद की बागवानी जहाँ करनी है?
0: जी हाँ, अमरूद की बागवानी भी बहुत अच्छा है, बहुत कम समय में अमरूद लाभ देना शुरू कर देता है। तो अमरूद की बागवानी के लिए भी, जैसे पुरानी जो किस्म है अमरूद में इलाहाबाद सफेदा, उसमें कोई दो राय नहीं, आज भी बहुत अच्छी किस्म है अमरूद की, जो इस्टेब्लिश्ड वैरायटी इलाहाबाद सफेदा वो आज भी बहुत अच्छी वैरायटी है, उसमें हम कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एक साथ कई नई प्रजातियाँ आई हैं, जैसे कि हमारे संस्थान निकला ललित, श्वेता, धवल, लालिमा, ये सब प्रजातियां हैं, और एक नवीनतम आई है भूषण करके प्रजाति आई है हमारे यहाँ
1: आपके संस्थान की।
0: जी हमारे संस्थान से निकाली है। इसके अलावा जो एक VNR कंपनी है उसकी भी प्रजाति बहुत इस समय मार्केट में छाई हुई है
1: जी।
0: तो वो भी अमरूद की बहुत, हमारे पास अमरूद में बहुत अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन ये कि जो हमारी स्वदेशी प्रजातियां हैं इनमें अमरूद की जो मिठास और जो स्वाद एक महक होती है ये रहती है, बाकी जो दूसरी प्रजातियां आ गई बहुत बड़े आकार की हैं उनमें वो महक नहीं रहती जो अमरूद की रहती है। लेकिन अमरूद में दोनों विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उसी अमरूद की डिमांड है जिसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, मिठास कम होती है। समस्या है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो वो लोग उसी प्रजाति को प्रीफर करते हैं जिसमें मिठास कम हो, तो इसलिए उस प्रजाति का भी अच्छा मार्केट है। बाकी हम मैक्सिमम जो स्वदेशी लोग हैं ये लोग तो इलाहाबाद सफेदा जैसी प्रजाति या श्वेता जैसी वैरायटी को अभी भी बहुत लाइक करते हैं।
1: बेल और जामुन में डॉक्टर साहब?
0: जी हाँ, ये सब बहुत ही प्यारी फसलें हैं बेल और जामुन। जैसे कि बेल तो औषधीय फल है, जामुन भी महा औषधीय फल है, इवन आम अमरूद भी औषधीय फल ही है, हमारे सारे फल औषधीय फल हैं। तो बेल की यदि हम बात करें तो बेल में CISH B1, CISH B2 और CISH B3, ये 3 प्रजातियां निकली हमारे संस्थान द्वारा। इसके अलावा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से भी NB5, NB7, NB8 निकली प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। NB सीरीज भी बहुत अच्छी है, CISH सीरीज

0: बहुत अच्छी है। लेकिन इन सभी प्रजातियों में यदि हम किसी एक वैरायटी की बात करें, यदि मुझे अपना बाग लगाना हो तो मैं CISH B1 प्रजाति को प्राथमिकता दूंगा।
1: क्या खासियत है?
0: खासियत यह है CISH B1 प्रजाति की कि ये एक फैमिली साइज की प्रजाति है, यानी कि एक मध्यम आकार का जो फल होता है लगभग 800 ग्राम से 1 किलो का होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता है। फैमिली साइज का बेल का मतलब ये हुआ कि एक बेल को ले गए, हमने घर में तोड़ा, इसका शरबत बनाया और पी लिया, इसको फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें।
1: और बाजार में इसकी डिमांड भी
0: जी
1: अच्छी है?
0: बाजार में इसकी डिमांड इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें फलों में यूनिफॉर्मिटी होती है, सारे फल थोड़ा सा शिवलिंग जैसे एलोंगेटेड टाइप के होते हैं और बेल को शिवलिंग शिव जी से भी जोड़ा जाता है, तो देखने में शिवलिंग का इसमें रूप आता है। और उसका जो शेल होता है पेपरी शेल होता है, यानी कि जब फल पूरी तरह से पक जाता है तो हल्का सा हम हाथ से दबाएंगे तो क्रैक हो जाता है,
1: जी।
0: बाकी बेल जिसे होता है उसको पटकते हैं तब तोड़ते हैं, ऐसा नहीं, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो क्रश हो जाता है। इसके अंदर गूदा अच्छा होता है, मिठास अच्छी होती है, गोंद का जो शेक है कम होते हैं, तो पूरी तरह से बहुत ही प्यारी प्रजाति है ये CISH B1।
1: आजकल जामुन की बागवानी की काफी अच्छी संभावना है।
0: जी हाँ, जामुन, जामुन की तो बात ही अलग है। आम अगर 50 और 80 रुपए किलो मिलता है तो जामुन 250 रुपए किलो मिल रहा है मार्केट में, मैंने देखा है। जो चीज कम होती है उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अधिक होती है।
1: और औषधि महत्व का?
0: औषधि महत्व तो है ही है जामुन का। तो जामुन की जहां तक हम बात करें तो हमारे संस्थान ने भी जामुन की बहुत अच्छी किस्में निकाली हुई हैं। जैसे जामुन में एक जामवंत किस्म है हमारे संस्थान ने निकाला है, और इस
1: गुठली रहित?
0: नहीं, गुठली रहित दूसरी प्रजाति है। एक तो जामवंत है जिसमें फलों का आकार बड़ा होता है, और दूसरी ये बीज रहित जामुन है, वो भी है हमारे यहाँ। तो गुठली रहित उसको बस कहते हैं, उसमें बीज होता है लेकिन इतना मुलायम होता है, मुलायम होता है और खाने में उसमें कोई असुविधा नहीं होती है आपको, उसको आप खा लेंगे तो बीज के जो औषधीय गुण हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और जामुन के गुण तो आपको मिल ही रहे हैं। जामुन में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जामुन में जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इसका कहीं बहुत अच्छा रोपण नहीं है, तो हमारे संस्थान द्वारा जो प्रजातियां तैयार की गई हैं नर्सरी में इसके पौधे अच्छी संख्या में उपलब्ध हैं, और जामुन के पौधों को लगाएंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि जामुन में अन्य फलों की तुलना में आपको अच्छी आमदनी होती है। और यदि आप कोई और भी बाग लगा रहे हैं, आपने आम या अमरूद का भी बाग लगाया है, तो उसके बाउंड्री की तरफ आप जामुन के पौधे अवश्य लगाइए। कोई जरूरी नहीं कि आप आम का बाग लगा रहे हैं तो बाउंड्री पर भी आम ही लगाइए, आप बाउंड्री पर जामुन के पौधे भी लगा सकते हैं, तो ये बड़ा पौधा भी होगा और आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी देगा विंड से।
1: जहाँ आंवला नींबू वर्गी बागवानी और भूले बिसरे फल लगाना है वहाँ?
0: नहीं नहीं ये भी बहुत अच्छी बात है। भूले बिसरे फलों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले करौंदा ही आता है, जिसकी मैंने पहले भी बात कर लिया है। करौंदे से आप अपनी बाड़ को बना सकते हैं। और अन्य फलों की बात करें, आंवला, आंवला भी बहुत ही औषधीय फल है, लेकिन है कि चूंकि आंवले को ताजे फल के रूप में नहीं खाया जाता है तो आंवले को ही लगाना चाहिए जहां पे प्रसंस्करण उद्योग का आपके पीछे बायबैक सपोर्ट हो,
1: जी
0: वहां पे आपको आंवले को प्रमोट करना है। वैसे शौकिया तौर पे अपने घरों में अपने किचन गार्डन में आंवले के एक दो पेड़ आपको अवश्य लगाने चाहिए, एक नहीं दो पेड़ अवश्य लगाने चाहिए,
1: और अलग अलग
0: अलग अलग प्रजातियों के। जी हाँ, आंवले में ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है, अक्सर किसानों के प्रश्न आते हैं कि एक पेड़ लगाया है या दो पेड़ लगाए हैं लेकिन उसमें फल नहीं आता है।
1: एक ही प्रजाति?
0: जी हाँ, यदि एक ही प्रजाति के हैं तो उसमें पुष्पन होगा किंतु फलन नहीं आएगा। आंवले में फलन लेने के लिए दो पौधे आपके होने चाहिए, दोनों अलग अलग प्रजातियों के होने चाहिए, तो पुष्पन भी भरपूर होगा और फलन भी भरपूर आएगा, तो आंवले में ध्यान देना होगा आप लोगों को।
1: डॉक्टर साहब, जहां पौधरोपण करना है तो सबसे उपयुक्त समय क्या है और पौध सामग्री कहाँ मिलेगी?
0: जी, उपयुक्त समय तो देखिए अब चल रहा है, 15 जुलाई से 15 अगस्त सबसे अच्छा समय माना जाता है पौधरोपण के लिए, ठीक है। लेकिन पौधरोपण के पहले हमें समय से तैयारी कर लेनी होती है। कायदे से तरीका तो यह है कि हम लोग मई के महीने में या जून के महीने में ही जहाँ आपको पौधे लगाना है वहाँ पे गड्ढे खोद के तैयार कर लें। अब मान लीजिए कि हमारा जुलाई आ गया है और अभी किसी बागवान भाई को पौधे लगाने हैं तो अभी भी कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी उत्तर भारत की भूमियों में जमीन में कोई कंकड़ पत्थर या ऐसा समस्या नहीं है, तो वो अभी भी यदि एक गड्ढा खोद लेते हैं और उस गड्ढे को 15-20 दिन भी खुला रहेगा तो उसके बाद उस गड्ढे को उपजाऊ मिट्टी और गोबर की सड़ी खाद मिला के भर के वहाँ पर पौधरोपण कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है। जिन्होंने पहले से तैयारी किया है बहुत अच्छी बात है, उनकी भूमियों का शोधन हो चुका है, सूर्य की तेज किरणों से शोधन हो जाता है। यदि नहीं किया तो भी कोई समस्या नहीं, अब से कर सकते हैं, गड्ढे को खोदें प्रॉपर दूरियों पर और उसमें गोबर की सड़ी खाद मिला के भर दें। और 15 जुलाई से 15 अगस्त का समय हमारे पास, किसी मान्यता प्राप्त पौधशाला से ही पौधे लाएं, चाहे वो ICER की हो चाहे राज्य सरकार की पौधशाला हो, उसके बाद तब निजी क्षेत्र की पौधशालाओं को प्राथमिकता दें। निजी क्षेत्र की उन्हीं पौधशालाओं से पौधे लें जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, अन्यथा आप सरकारी पौधशालाओं से ही पौधे लें। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बाग लगाना एक लंबे समय का निवेश है, आप जो भी पौधा लगा रहे हैं 15, 20 या 50 साल, 80 साल के लिए लगा रहे हैं, इसलिए जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी,
1: अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8218769849, 8218769849, 8286978849, 8276
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं

0: बागवान भाइयों बहनों का फलदार पौधों की उन्नत बागवानी के बारे में डॉक्टर साहब?
1: देखिए बागवान भाइयों से मैं हमेशा ये अनुरोध करता हूँ कि यदि आपका बाग लगा हुआ है तो आप अपने बाग में नियमित भ्रमण करें, भले ही आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए जाएं, लेकिन आप अपने बाग में एक बार भ्रमण अवश्य करें। जैसे कि हम लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिस डेली जाते हैं, उसी प्रकार से आप उसको अपना कार्यक्षेत्र समझिए और अपने बाग में नियमित भ्रमण करिए। उससे बाग में यदि कोई समस्या होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप उसका तुरंत समाधान कर लेंगे।
0: डॉक्टर दुष्यंत मिश्रा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और फलदार पौधों की उन्नत बागवानी कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेणु बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो फलदार पौधों की उन्नत बागवानी पे कितना बढ़िया तरह डॉक्टर दुष्यंत मिश्र भैया बताएं, अब उतने बढ़िया उनसे सवाल पूछें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो दोनों जने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बात भजन फलदार पौध होते हैं, मूल आपन सब्जी पाती में समय समय पर जौन कार्य होते हैं, जैसा सामयिक कार्य हम पंच कहित है, वही का हम पंच का करहीन पड़त है, और वही माँ कऊ जैसे सुरक्षा कार्य होते हैं, अगर हम वही का न करें तो जौन आपन फसल होते हैं
3: प्रभावित हो जाता है।
2: हाँ, तो यह बदे आज के जौन बैठकी का विषय है वो है सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य, और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार राय भैया, उनसे बतकही कहीं है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो अब यह जानकारी का सुना जाए और समझा जाए।
0: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जायद की सब्जियां खेत में हैं और खरीफ की सब्जियों की तैयारी में हैं किसान भाई बहन, तो ऐसे में सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य कौन कौन सा करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार राय साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जायद की सब्जियां खेत में हैं और खरीफ की सब्जियों की बुआई और रोपाई कर रहे हैं किसान भाई बहन, तो ऐसे में हानिकारक कीट बीमारियों से जो नुकसान होता है उसके लिए फसल सुरक्षा कैसे करें?
4: सबसे पहले किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। बचाव बेहतर है इलाज से, इसलिए मैं चाहूंगा किसान भाइयों से बहनों से कि इसकी शुरुआत बीज उपचार, मृदा उपचार और पौध जड़ उपचार से शुरू करें।
0: यानी जहां नर्सरी डालने जा रहे हैं या सीधी बुआई करने जा रहे हैं तो वहां बीज शोधन और भूमि शोधन जरूर करें।
4: जी ये अत्यंत आवश्यक है, जिससे भविष्य की बीमारियों से बहुत हद तक बचाव किया जा सकता है और कम लागत में, और छत भी बहुत कम हो जाती है। इसके लिए डॉक्टर साहब मैं बोलूंगा कि अगर हम ऑर्गेनिक उपचार में जाएं तो उसमें ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास का मृदा उपचार के लिए 2 किलो मात्रा, लगभग 1 क्विंटल अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद में इसको मिला दें बखेर के, और छायादार स्थान पर कहीं भी किसी मढ़े में या पेड़ के नीचे इसको जूट के बोरे से ढक कर रख दें और इस पर समय समय पर सुबह शाम पानी के छींटे मारते रहें जिससे नमी बना रहे, कम से कम 1 दिन और अधिक से अधिक 5 से 6 दिन तक इसे अगर रखें, और फिर खेत की अंतिम जुताई के समय संध्या के समय खेत में मिलाकर और अगले दिन रोपाई या बुआई करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कई तरह के मृदा जनित जितने भी कवक संबंधित बीमारियां हैं उनमें काफी हद तक प्रतिरोध मिलता है या वो नहीं आते।
0: और जहां भूमिगत कीटों की समस्या है वहां ब्यूवेरिया बेसियाना?
4: जी अगर भूमिगत कीटों या व्हाइट ग्रब की समस्या है या दीमक की समस्या है तो वहां पर बवेरिया बेसियाना भी मिला सकते हैं, और कहीं अगर इसका ज्यादा प्रभाव है, ज्यादा दबाव है, कीट ज्यादा हैं, तो कुछ रासायनिक इलाज भी कर सकते हैं।
0: जैसे
4: मृदा जनित कीटों की रोकथाम के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोपाइरीफास सामान्यतया हर जगह मिलता है 20% EC, इसका 1 लीटर मात्रा 100 से 150 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, या रेत में मिलाकर हाथ में ग्लव्स पहनकर रेत में मिलाएं, पूरे खेत में फैलाएं, लेकिन ये अंतिम जुताई के समय तैयारी से पहले कर दें तो ये काफी हद तक नियंत्रित रखता है।
0: सुरक्षा कवच की बात आप कर रहे हैं तो भूमि शोधन हो गया, बीज शोधन भी तो महत्वपूर्ण है।
4: जी डॉक्टर साहब बीज शोधन भी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कई बार लोग बीज शोधन में जो बीज हम बाजार से खरीदते हैं वह शोधित बीज ही होते हैं, और चूंकि सब्जी बीज मात्रा में बहुत कम होते हैं तो शोधन से किसी तरह के जमाव में होने वाली परेशानी को क्लेम कर सकता है दुकानदार कि नहीं साहब ये शोधन से हुआ है। अगर घर का बीज है तो शोधन करें, अन्यथा शोधित बीज है तो जड़ शोधन पर जाएं, उसके लिए मैं रिकमेंड
0: जड़ उपचार,
4: पौध जड़ उपचार या नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ एक बीमारी बड़ी कॉमन है, जब भी आती है तो नर्सरी भूमि का उससे पहले जैसा हमने बोला

0: भूमि का उपचार, और फिर इसमें 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का घोल बना लें, उससे नर्सरी की ड्रिंचिंग करते रहें हर 4-5 दिन पर, तो काफी हद तक इन बीमारियों से निदान रहता है और बचाव रहता है।
1: डॉक्टर साहब, जैविक बीज शोधन की बात करें तो ट्राइकोडर्मा से भी बीज का शोधन कर ले तो?
0: जी, ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं और स्यूडोमोनास से भी कर सकते हैं। बीज शोधन के लिए 1 माचिस की डिब्बी मात्रा ट्राइकोडर्मा हो या स्यूडोमोनास, यह 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त तो होता है। और यदि मात्रा अधिक भी हो जाए तो यह जैविक पदार्थ है, तो इससे उत्पादन या जमाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेहतर ही होता है।
1: जहाँ नर्सरी तैयार है और रोपाई करने जा रहे हैं सब्जियों के किसान भाई बहन, तो वहाँ पौध जड़ उपचार कैसे करें?
0: यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम पौध उखाड़ते हैं तो बहुत सारी जड़ें टूट जाती हैं। जो कटे हुए या टूटे हुए भाग हैं, वहां से किसी भी तरह के फफूंद का प्रवेश आसानी से हो जाता है। इससे रोकथाम के लिए अगर हम ऑर्गेनिक में जाते हैं तो ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास, यह 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के में घोल बनाकर
1: या
0: इससे
1: माचिस
0: कर
1: की
0: सकते
1: डिबिया
0: हैं।
1: 1 लीटर पानी?
0: हाँ, माचिस की डिबिया, बल्कि उसमें 2 डिब्बी डाल दें और 1 लीटर पानी के लिए, और इसमें 10 से 15 मिनट कम से कम गट्ठर को, जड़ वाले भाग को रखें। अन्यथा इसमें दूसरे और भी चीजें कर सकते हैं,
1: जैसे
0: जैसे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का घोल है, या दूसरे उत्पाद की बात अगर हम करते हैं तो जैसे एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल या अन्य बाजार में फफूंदनाशक उपलब्ध हैं, उनका भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में बनाकर जड़ उपचार कर सकते हैं। जड़ उपचार की करें तो बवेरिया बैसियाना ऑर्गेनिक उत्पाद हो गया, ये माचिस की डिब्बी से लेके और इसे उपचारित कर सकते हैं जड़। अन्यथा क्लोरोफायरीफास सामान्य बाजार में उपलब्ध है, इससे भी जड़ों का उपचार कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ सब्जियाँ खेत में हैं तो वहाँ कई तरह के हानिकारक कीट हैं, जैसे रस चूसक कीट भी हैं, कुछ फली और तना छेदक कीट हैं, कुछ काटने चबाने वाले कीट हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं।
0: हाँ, मुख्य रूप से कृषि महत्व में 2 कृषि के लिए महत्वपूर्ण है रस चूसक। रस चूसक में अगर हम बात करें तो इसको भी 2 भाग में बांट सकते हैं, माइट, मकड़ी। दूसरा होता है सफेद मक्खी या तेला, जिसकी बात करें।
1: जैसिड है,
0: हाँ,
1: माहू भी है।
0: जी माहू भी है। इसके पहचान क्या है, खेत में आप जाएं और हाथ से पौधा हिलाएं, कुछ उड़ता हुआ दिखता है तो रस चूसक कीट है, जो भी उड़ता है यह रस चूसता है। तो रस चूसक कीट जहां भी दिखाई पड़े, इसके लिए इमिडा क्लोरोप्रिड 19.8% का 80 से 100 ml प्रति एकड़ या 0.75 से लेके 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका खेत में छिड़काव करें, और साथ में कोई नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट या सिलिकॉन बेस स्प्रेडर, यह प्रति टंकी 5 ml मिला लें, इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं,
1: यानी दवा का प्रभाव अच्छा होगा।
0: दवा का प्रभाव अच्छा होगा। अगर कहीं पत्ती नीचे की तरफ मुड़ रही है तो यह पहचान होती है, उल्टी नाय अगर बन रही है तो यह मकड़ी की पहचान है, खेत
1: जी,
0: में
1: यानी
0: मकड़ी
1: माइट की।
0: माइट की समस्या है। तो माइट की अगर समस्या है तो अबमेक्टिन एक दवा आती है, वह 1.9% EC का आप ले लीजिए और इसको 0.75 ml प्रति लीटर से,
1: यानी 0.25 ml।
0: 0.25 ml प्रति लीटर या 160 से 250 ml प्रति एकड़ की दर से, यह फसल की उम्र, पानी की मात्रा, 150 लीटर पानी लग रहा है तो 160 ml या 150 ml दवा ले लीजिए, 200 लीटर लग रहा है तो 200 ml ले लीजिए, 250 लीटर पानी लगता है तो उस हिसाब से इसको 250 ml ले सकते हैं। यह मकड़ी के लिए निदान है। यहां पर भी ध्यान रखें कि सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट के साथ जरूर उपयोग करें,
1: यानी कुछ न कुछ स्प्रेडर जरूर मिला दें।
0: जरूर मिला दें। और दूसरा, डॉक्टर साहब, प्रश्न का दूसरा भाग छूट गया था, काटने चबाने वाले कीट जो फली छेदक या तना छेदक, अगर उनका प्रकोप है, इल्लियों का प्रकोप है, तो इसके लिए बाजार में बहुत ही अच्छे उत्पाद हमारे पास हैं। इमेमेक्टिन प्लस नोअल्यूरॉन कम्बिनेशन की दवा है जो काफी हद तक नियंत्रण करती है और इसके दुष्प्रभाव भी बड़े कम रहते हैं, और ये लगभग सभी तरह के काटने चबाने वाले कीटों का अच्छा नियंत्रण करती है और
1: खास
0: लंबे
1: करके
0: समय
1: सब्जियों में।
0: सब्जियों में, सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका 200 ml प्रति एकड़ की दर से अगर उपयोग करें तो ये सब्जियों में भी, इवन मक्का वगैरह भी लगता है इस सीजन में, वहां भी काटने चबाने वाले कीट हैं, उन पर यह बड़ा प्रभावी रहता है। लेकिन का एक ही दवा का बार बार उपयोग नहीं करना है, ये सावधानी भी रखनी है। तो मैं एक दो और दवाएं बता दूं, प्रोफेनो प्लस साइपर बाजार में आसानी से उपलब्ध है, एक छिड़काव इसका कर दें, दूसरा छिड़काव इमामेक्टिन

0: और प्लस नौ वाली उड़ान का कर दें, इस तरह से अदल
1: अदल
0: बदल
1: बदल
0: कर,
1: के।
0: अदल बदल कर छिड़काव करें तो इसका प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94509-32236 94509-32236 94509-32236।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य के बारे में डॉक्टर साहब?
0: खेत में प्रतिदिन जाएं और कोई भी बीमारी या कीट दिखते ही तुरंत निदान या उपचार की व्यवस्था करें, और अगर खेती अभी खरीफ की शुरुआत होने जा रही है तो कुछ सावधानियां रखें। खेत में जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए या मेड़ों पर बुआई करें खरीफ की फसलों में, और संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें वह अत्यंत आवश्यक है। निराई गुड़ाई सही वायु संचार के लिए बहुत जरूरी है, उसका ध्यान रखें। और इस समय एक बड़ी समस्या होती है खरपतवार की, तो अगर किसी भी सब्जी में खरपतवार के नियंत्रण करने के लिए कोई भी सकरी पत्ती का खरपतवार हो, इसके लिए मैं एक दवा बताना चाहूँगा, प्रोपेक यूजा फॉप 10% ईसी का 300 से 350 ml प्रति एकड़ की दर से 10 दिन से बुआई के 10 से लेके 25 दिन के बीच में कभी भी छिड़काव करें
1: सारी सब्जियों में,
0: सभी सब्जियों में, और यह फसल पर कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ता और सभी सकरी पत्ती के खरपतवारों का एक साथ नियंत्रण करता है अगर आप खेती कर रहे हैं निश्चिंत होके। और इसका प्रयोग सब्जियों में, सभी दलहन में, सभी तिलहन में, सभी फल में, सभी फूल में, हर जगह कर सकते हैं सिवाय धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। ज्यादा बीमारियां नहीं आती इस समय, लेकिन मुख्य रूप से डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दो मुख्य समस्याएं आती हैं। डाउनी मिल्ड्यू में पत्ती पर बीच में पीली पीली बिंदी दिखेगी और फिर वो सूख के भूरे रंग की हो जाएगी, ये फसल के उत्पादन पर दुष्प्रभाव डालता है। और पाउडरी मिल्ड्यू में सफेद फफूद चूड़ी जैसा, पाउडर जैसा दिखता है, चूना जैसा दिखता है। तो जब भी इनमें से कुछ भी दिखता है तो इसके लिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है एजॉक्सीस्ट्रोबिन 4.8% प्लस क्लोरोथेलोनिल 40%, ये SC में आता है, 3 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाएं और सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट 5 ml पर टंकी मिलाएं, इसका छिड़काव करें, शानदार रिजल्ट रहेगा और बेहतरीन निदान है ये।
1: डॉक्टर अरुण कुमार राय साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य इस समय क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेनू बहनी,
3: हाँ रामजीत भैया,
2: देखो कितनी बढ़िया तना सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य पर डॉक्टर अरुण कुमार राय भैया बताएं, अब इतने बढ़िया उनसे सवाल पूछें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो दोनों जने के बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहनी एक बात कही, अपने खेती पाती में जौन चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो देखभाल तो जरूरी है, मूल मौसम अगर बढ़िया है तो फिर खेती पाती करे जो आनंद है वो और बढ़ जाता है।
3: बिल्कुल,
2: तो यह समय देखो धानों खेत तैयार है और जो मौसम के हाल अपने पंचन का बताए दिन जाए, तो भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार अगले 5 दिनों के जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिनांक 6/7/2026 से 6/7/2026 तक संभाग में अनेक स्थान पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और कहूं कहूं पर भारी वर्षों के संभावना है और झोंकेदार हवा चले के संभावना है।
3: अच्छा,
2: तो अब जो कल के कार्यक्रम है वो बताए दें जाए बहनी।
3: बिल्कुल भैया, तो कल देखो अपने लोकायतन कार्यक्रम में हुई वार्ता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गांवों से गांवों में बदलाव, वार्ता का संतोष कुमार मिश्र भैया हुई हैं, खेती किसानी भैया हुई किसान डायरी जो कि कृषि समाचार पर आधारित हुई, आलेख एवं वाचन अभिषेक कुमार सिंह भैया के हुई हैं, संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय जी के हुई।
2: और अब बहनी अपने पंच भाई का बता दीजिए मंडी केर भाव।
3: तो हमरे लगे 4 मंडी के बाजार भाव है, तो सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, गोंडा, अयोध्या की बात करी जाए तो लखनऊ में यहाँ गेहूं दड़ा रहा है आज 2590 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में यहाँ 2500 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा 2593, अयोध्या 2560 रुपया।

0: प्रति क्विंटल, और चावल मोटा वाला लखनऊ मंडी में रहा 3,560 रुपया, कानपुर 3,525 रुपया, गोंडा 3,125 रुपया और अयोध्या में यहाँ 3,100 रुपया। चना छोटा वाला लखनऊ मंडी में रहा 6,650 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर 6,370 रुपया, गोंडा 6,750 रुपया और अयोध्या में यहाँ रहे 6,500 रुपया। मटर सफ़ेद वाली लखनऊ मंडी में रही 4,470 रुपया, कानपुर 4,570 रुपया, गोंडा 4,100 रुपया और अयोध्या में यह 4,385 रुपया।
1: यही के साथ है गुड़पारी रहा 4,700, कानपुर में 4,400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। आलू सफ़ेद लखनऊ मंडी में 920 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर 810, गोंडा 980 और अयोध्या 870 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। और अब समय हो चला है अपनी बैठकी से, तो पंचन से लीन जाए आज्ञा।
2: जय हिंद।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गाँवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है, वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन

0: ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
2: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी राम जी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बनेगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
3: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोअर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
4: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप

0: ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: प्रदेश सरकार ने लगातार सातवें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
2: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गाँव के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले 2 दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
5: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

0: नमस्कार श्रोताओं, खेल जगत के आज के अंक में मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज 2 जुलाई है और प्रतिवर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ये 1924 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना का प्रतीक है। यह दिन खेल पत्रकारों और प्रसारकों के समर्पण और कड़ी मेहनत को सम्मानित करने का है, जो दुनिया भर में प्रशंसकों को खिलाड़ियों और खेलों से जोड़ते हैं। ये दिन उच्च रिपोर्टिंग के स्तर को बढ़ावा देने का है और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अनंत मिश्र जी, जिनका खेल पत्रकारिता में काफी लंबा अनुभव है। अनंत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: अनंत जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका इतना लंबा अनुभव है, आपने समय को और पत्रकारिता को बदलते हुए देखा है, सबसे पहले तो ये जो आज का दिन है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, इसकी क्या जरूरत है, आखिर इसको मनाने की क्या आवश्यकता पड़ी?
1: जो खेल पत्रकारिता दिवस है कि आप किसी भी एक दिन को आप अपनी पत्रकारिता के या अपने काम के लिए एक दिन समर्पित करते हैं या निर्धारित करते हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे संगठन है जो खेल पत्रकारिता से जुड़े हैं या जो हमारी इंटरनेशनल स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन है, एसोसिएशन है, उन लोगों ने 2 जुलाई का दिन एक निर्धारित किया कि हम उस दिन अपनी पूरी बिरादरी के साथ जो खेल पत्रकारिता है उसका एक दिन मनाएंगे, जो हमारी खेल पत्रकारिता दिवस के नाम से कहलाया जाएगा।

0: अनंत जी, ये बताइए, जो खेल पत्रकारिता है, ये दूसरी आम पत्रकारिता से किस प्रकार से अलग है?
1: मैं खेल ही पत्रकारिता नहीं मानता हूँ। पत्रकारिता में जितनी भी विधाएं होती हैं, जो बीट्स होती हैं, है ना, चाहे चिकित्सा की हो या बिजली की हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशन हो, को जितनी भी है वो खेल भी है। ये सब अपनी अपनी पत्रकारिता में सब अलग अलग विधाएं हैं और सबके विशेषज्ञ होने चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन खेल पत्रकारिता पूरी तरह से तकनीकी है। मेरा मतलब यह है कि जब तक खेल पत्रकारिता में अगर उस खेल का जानकार नहीं होगा, तब तक वो उसकी अच्छी पत्रकारिता या रिपोर्टिंग उसकी नहीं कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: कल्चरल की रिपोर्टिंग वही कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत उसकी
0: संस्कृति
1: नॉलेज हो,
0: समझ होगी।
1: जो सुर ताल नृत्य कथक ये दुनिया भर की चीज़ें वो जानता हो, तभी वो एक अच्छी रिपोर्ट। उसी तरह खेल है, अगर खेल के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर आप एक रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप हार जीत लिख सकते हैं, उससे आगे आपकी रिपोर्ट बढ़ेगी नहीं जाके।
0: मतलब
1: तो ये
0: बारीकियों को बताने के लिए
1: बारीकियां हैं
0: नॉलेज
1: और
0: के
1: पूरी
0: बिना।
1: तरह से तकनीकी है,
0: बिल्कुल
1: और यही उसे एक अलग करता है।
0: अनंत जी, रेडियो आपने सुना होगा,
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: रेडियो पर खेल की कमेंट्री या रिपोर्टिंग का एक अपना अलग
1: जी
0: इतिहास रहा
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल,
0: तो प्रिंट और टीवी से अलग,

0: खेल के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर आप एक रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप हार जीत लिख सकते हैं, उससे आगे आपकी रिपोर्ट बढ़ेगी नहीं जाके।
1: मतलब तो बारीकियों को बताने
0: बारीकियां
1: के लिए
0: है और पूरी तरह से तकनीकी है
1: बिल्कुल,
0: और यही उसे एक अलग करता है।
1: अनिल जी, रेडियो आपने सुना होगा
0: जी, बिल्कुल,
1: तो रेडियो पर खेल की कमेंट्री या रिपोर्टिंग का एक अपना अलग इतिहास
0: जी,
1: रहा
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल,
1: तो प्रिंट और टीवी से अलग रेडियो पर खेल पत्रकारिता के अब तक के सफर को आप अपनी नजर से अगर देखें तो कैसे देखें?
0: देखिए, जैसे हर समय चीजें बदलती गई, बहुत शुरुआत में जो खेल होते थे हमारे पास सिर्फ एक माध्यम ही होता था, रेडियो।
1: बिल्कुल,
0: रेडियो पे एक समाचार आते थे जिनके जरिए वो किसी खास इवेंट के, किसी बड़े इवेंट की जो चीज़ें आती थी। अगर आप पहले 28 का ओलंपिक ले लें जहाँ से हम गोल्ड मेडल जीत के आए थे जाके, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था, तब तक अखबार भी हमारे पास नहीं आते थे। चार दिन बाद उसकी खबर हमें छप के मिलती थी, लेकिन वो जो रेडियो संदेश जो होते थे या जो भी उस समय साधन होंगे उनसे सुनाए, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से कोई रेडियो स्टेशन भी नहीं था भारत में और ना कोई अपना केंद्र था जहाँ से ये चीज़ें प्रसारित करती हैं, लेकिन माध्यम यही था। आप अभी भी देखें तो 1928 ओलंपिक की अभी भी रिकॉर्डिंग आपकी कमेंट्री की मिलेगी जिसको आप सुनते हैं,
1: और रेडियो पे कमेंट्री का सुनने का मजा
0: बिल्कुल
1: भी
0: वो देखिए, आज आप अपने देख लिए बहुत से ऐसे कमेंट्रेटर रहे हैं जो उस मैच की या उस खेल की जब रिपोर्टिंग करते थे तो आप आंख बंद कर लें और आपको समझ में आता था, बिल्कुल लगता था सब आंखों के सामने आ रहा था। मुझे 77-78 वेस्टइंडीज टूर की बात होगी जाके, और हम लोग हमारे पान की दुकान थी एक, वहां पे वो कमेंट्री एक रेडियो बड़ा सा होता था जो वॉल वाले रेडियो है, उस पे वो कमेंट्री जब कमेंट्री लगाते थे तो फिर पूरी भीड़ वहां पे जमा हो जाती थी, और सुशील दोषी और जसदेव सिंह जब उस समय के थे, जब इन लोगों की किसी भी चीज़ की कमेंट्री आती थी तो हम लोग आंख बंद कर लेते, तो बिल्कुल ऐसा ही लगता था कि जैसे सब सामने हो रहा, सामने गेंद हो रही और सामने गवास्कर मार रहे हैं, बैटिंग बढ़िया कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें एकदम लाइव और दिखती थी आंख बंद करके कि हाँ हम वही मैदान में बैठे हैं। रेडियो पे एक और चीज़ भी होती है कि जो एक्सपर्ट है, जो कमेंट्री कर रहा है, उसके सामने ये होता है कि हमारे सामने कुछ विजुअल नहीं है, हम सिर्फ शब्दों से सीन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो एक कला उन्हीं कमेंट्रेटर में होती थी और ये रेडियो में ही होती थी कि वो वहाँ का सीन, वहाँ का दृश्य वो एकदम तैयार कर देते थे और वो चीज़ें सजीव कर देते थे।
1: अच्छा अनंत जी, ये बताइए, जैसे अखबार में हमें एक फाइनल रिपोर्ट दिखती है,
0: जी जी जी,
1: लेकिन पर्दे के पीछे की मेहनत अलग होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो एक खेल पत्रकार का मैच वाले दिन का शेड्यूल कैसा रहता है?
0: देखिए, शुरू में यही होता है कि जैसे हमें पता है वो एक दिन का नहीं होता है, वो 4 या 5 दिन का होता है, और पहले का मान लीजिए जैसे लखनऊ में कोई मैच होना है, 3 महीने पहले हमें पता लग जाता है कि लखनऊ में मैच होना है, उसके बाद हम लोग का एक्रीडेशन हो जाता है, हम मैच कवर करने गए, 3-4 दिन 2 दिन पहले टीम आ जाती है, और फिर उसके लिए लोकल कनेक्ट बनाने के लिए हम हफ्ते भर से माहौल तैयार करते हैं, तो हमारा वो हफ्ते भर का शेड्यूल होता है, और उस शेड्यूल में जो हम रिपोर्ट होती है हमारी अलग अलग रिपोर्ट होती है कि कैसे करेंगे, आज क्या देंगे, कल क्या देंगे, हम एक दिन ग्राउंड का देंगे, एक दिन खिलाड़ी का देंगे, एक दिन टीम के आने का देंगे, एक दिन उसका प्रैक्टिस सेशन देंगे, ये। लेकिन जिस दिन मैच होता है उस दिन ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज नहीं, पहले की मैं बात बता रहा हूँ, अब तो जब से कुछ वेबसाइट वगैरह आ गई हैं और इंटरनेट आ गया तब से खेल पत्रकारिता आसान हो गई है, लेकिन एक शुरू का दौर था जब आपके पास कोई साधन नहीं था, सारे रिकॉर्ड आपको रखने पड़ते थे। हम लोग एक डायरी बनाते थे, डायरी में सारे रिकॉर्ड लिखे होते हैं कि जैसे यहाँ पे मैच आ रहा, उस टीम में जो जो खिलाड़ी खेल रहे उनका क्या रिकॉर्ड है, कितने मैच खेले, कितने रन बनाए, क्या जो भी उससे रिलेटेड उस ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या है, अपोजिट टीम है उसका क्या रिकॉर्ड है। फिर जब मैच होता था तो मैच में जो हम लोग खबर लिखते हैं तो उसमें फिर उन चीज़ों का रिकॉर्ड देते हैं, उन चीज़ों की पैडिंग करते हैं।
1: मेरा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, 1980 से 2000
0: जी जी,
1: ये है इंटरनेट से पहले का समय,
0: जी जी जी,
1: 2000 से 2020 तक का समय,
0: ठीक है,
1: ये है इंटरनेट का समय,
0: ठीक,
1: और 2020 के बाद का जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय,
0: जी जी जी।
1: तो इन 3 कालखंडों में अगर हम बात करें तो खेल पत्रकारिता को आप किस तरीके से आप बदलते हुए देख?
0: देखिए, बदलाव तो मैंने जैसे आपसे बात कर रहा था कि पहले बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, हमारे पास कुछ साधन नहीं होते थे, हमारे पास फोन नहीं होता था, हम पत्रकारिता करते थे, हमें जहाँ रिपोर्ट भेजनी होती थी पहले वो तार जाता था, फिर बाद में हमें थोड़ी फैक्स की सुविधाएं मिली, फिर मेल के थ्रू भेजने लगे जाके, है ना, अब व्हाट्सएप, अब साधन बहुत हैं, तो इस तरह चीज़ें आसान हुई। सारे रिकॉर्ड जैसे हम लोग को बैठना पड़ता था वहाँ जाके, एक एक चीज़ देखनी, बॉल टू बॉल देखना पड़ता था, आज अगर मीडिया सेंटर में टेलीविज़न नहीं है तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आप वो दौर सोचिए जब टेलीविज़न नहीं होता था और मीडिया सेंटर में बैठ के आदमी मैच कवर कर रहा था जाके, ना तब एक एक चीज़ और एक एक बॉल पर आपको ध्यान लगाना है, वो कैसे आउट हुआ ये आपको देखना है, आपका ध्यान नहीं। आज तो टीवी लगा ना, आपने देखा और टीवी उसने 10 बार रिप्ले आपको दिखा था, आपको

0: लग गया, आप मौज करिए, कुछ करिए, बस वहाँ चीजें आ रही, आप लिखते जा रहे हैं। हर चीज की, हर खिलाड़ी के बारे में आपको नॉलेज रखनी होती थी, आपको एक चलता फिरता एक इंसाइक्लोपीडिया होना पड़ता था जाके कि हम कोई चीज कर रहे हैं, किसी के बारे में लिख रहे हैं, उसका आगे पीछे दे रहे हैं, तभी लोगों को इंटरेस्ट होता और तभी एक अच्छी आप कॉपी लिख सकते थे। और आज का दौर तो बहुत आसान है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और करूँगा, आपने जैसे AI की बात आपने की और जो इंटरनेट की पत्रकारिता की, अगर आप आज विशेषज्ञ नहीं हैं और कुछ अलग चीज परोस नहीं रह जाके, तो आपकी रिपोर्टिंग को कोई लाइक नहीं करेगा और उसका कोई फायदा भी नहीं है।
1: अलग चीज से क्या मतलब है?
0: अलग चीज ये कि अभी आप मैच देख रहे हैं कोई, आपने हर चीज टीवी पे आपके साथ चल रही है, उसके बाद जो कमेंट्रेटर है वो भी सारे एक्सपर्ट कमेंट्रेटर बैठे हैं, जो इंटरनेशनल खुद क्रिकेटर हैं, वो चीजें भी बता रहे हैं जाके, और दूसरे दिन आप रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं जाके, उसने आपने साधारण कॉपी लिख दी, तो वो तो कह रहा है यार क्या फायदा इसको पढ़ने का या देखने का, ये तो हम कल टीवी पे ही देख चुके हैं, इस पे तो आकाश चोपड़ा, चेतन पुजारा, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान ये सब बता ही रहते जाके, और ये रिपोर्टर इसको तो कुछ पता नहीं है, उनसे बड़ा एक्सपर्ट थोड़ी ना जो हमें बता देगा जाके। फिर वहां पे आपकी, आपका हुनर काम देता है कि आप उस कॉपी को कितना बेहतर ढंग से लिख सकते हैं और उनमें वो क्या चीज डाल सकते हैं जो एकदम नहीं हो। सुबह जब वो पाठक आपका अखबार पढ़े, या अगर आप कोई न्यूज स्टोरी हो या विजुअल स्टोरी कर रहे हैं जाके, उस स्टोरी में क्या नयापन हो जो जिसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाके, तो ये आज की बड़ी चुनौती है। और आप अगर नया नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं और आप सिर्फ खेल की
1: पत्रकारिता, मतलब आर्टिकल पढ़ते समय हमें अगर कुछ पिछले मैच से नया नहीं मिल रहा है,
0: जी बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल
1: उसको पढ़ेगा नहीं।
0: हाँ, एक जैसी चीज है तो आप तो वो पढ़ चुके, आपने देखा अच्छा ये आपने पलट दिया।
1: अभी सोशल मीडिया और AI का दौर चल रहा है, सभी के हाथ में मोबाइल है, आजकल ऐसा कोई नहीं है जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन ना हो। ऐसे में खेल पत्रकारिता कितनी चुनौतीपूर्ण हो गई है। लोग जब खेल मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपको अखबारों में ऐसा क्या अलग देना पड़ता है? अभी आपने बताया,
0: जी जी जी,
1: लेकिन उसको थोड़ा सा और इलेबरेट करिए।
0: अगर कोई मैच हो रहा है, ठीक है ना, हमें सब दिखा रहे हैं, लेकिन उस मैच को कोई टीम जीत रही है या हार रही है, वो टर्निंग पॉइंट क्या है, वो हमें पकड़ना होगा। ठीक है, हम वो नयापन दे रहे हैं जाके, उसमें हो सकता किसी के लिए कुछ और हो, किसी के लिए कुछ और हो, हमारा क्या है, हमने अपना दिया जाके, और जो लोगों से उस चीज को कनेक्ट कर रहा जाके, कॉपी में फील होना चाहिए, जो आप ये रिपोर्ट जो भी बना रहे हैं उसमें आपका एक फील होना चाहिए कि लोग समझे कि हाँ इस आदमी ने इन्वॉल्व होकर यह कॉपी लिखी और ये नई चीज मुझे, ये एक चीज बता रहा है। क्रिकेट में बहुत सी चीजें होती हैं जो कॉमन होती है, और क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें हर आदमी को क्रिकेट की नॉलेज है। इसके अलावा और भी खेल है ना, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, जूडो है, कबड्डी है, हॉकी है, ये सारे
1: और
0: खेल
1: हैं। आर्टिकल में हेडलाइन का भी एक बहुत बड़ा रोल है।
0: बिल्कुल, अगर वो कैची नहीं है, आकर्षित अगर नहीं कर रही है, तो कोई नहीं पढ़ेगा जाके। और खबर में हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि अगर आपने जो हेडिंग लिख दी, हेडिंग से ही पूरी खबर समझ में आ जाए कि वाकई ये खबर है,
1: पूरे आर्टिकल का निचोड़ उसकी हेडिंग में,
0: हेडिंग में हो जाए क्या, हेडिंग होती है और उसके बाद एक जो 6 लाइन 7 लाइन का एक इंट्रो होता है जहाँ से खबर शुरू होती है, बस वो कितना बढ़िया है और उसी में चीजें हैं और वहीं से आपका पता लग सकता है इस कॉपी में क्या होगा।
1: अच्छा अनंत जी, जैसे लाइव मैच के दौरान जब अचानक कोई विवाद हो जाता है,
0: जी
1: जैसे स्लेजिंग, अंपायर का कोई गलत फैसला है या दर्शकों का हंगामा, तो एक पत्रकार के तौर पर बिना पक्षपात किए तुरंत सही खबर देना कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
0: नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो चुनौतीपूर्ण, क्योंकि वो तो हमें दिख रहा है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सामने घट रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई नजरिया इसमें खराब नहीं है, इसका इंटेंशन खराब नहीं है, तो कई बार चीजें दबानी भी पड़ती हैं। और कई बार ऐसी चीजें जो आपको बहुत छोटी होते और लगता बहुत बड़ी चीज है जाके, तो हमें वो खबरें देनी भी पड़ती हैं, और इसमें तुरंत हो ही जाता है सब। अखबार में थोड़ा ये होता है कि हम जो दे रहे हैं जाके वो सुबह मिलेगा, तो थोड़ा टाइम होता है जाके, और लेकिन आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, न्यूज़ ब्रेकिंग का जमाना है, और जैसे चुनौतियां आप अभी कह रहे थे बात, तो अगर आप आजकल जितना भी प्रिंट मीडिया भी है ना, उसकी भी साथ में एक डिजिटल मीडिया, डिजिटल चीजें चल रही हैं, ठीक है ना, तो रियल टाइम रिपोर्टिंग RTR एक होती है कि जैसे ही कोई चीज घटी उसको तुरंत आपको देना है मोबाइल हाथ में। कॉपी हमारी अलग जाएगी, हमारा दिमाग कॉपी में भी लगा, लेकिन उसके अलावा मेरा यहाँ पे भी लगा जहाँ हमें ओवर टू ओवर बताना है कि इस ओवर में इतने रन हो गए, ये हो गए, या इस समय ये गोल हो गया, इसने गोल कर दिया, इस साइड से गोल कर दे, मुझे वो भी अपडेट करना है। उसके बाद आपका एडिटर है जो भी है वहां, उसने भी आपसे एक और कह दिया कि आप रिपोर्टिंग करिएगा, उसके बाद एक 33 सेकंड की आप क्लिप भी बनाते रहिएगा।
1: इसी सब के बीच में मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे सोशल मीडिया के दौर में
0: जी
1: आजकल खबरें बहुत जल्दी बाहर आ जाती
0: जी जी जी,
1: और वो कितनी विश्वसनीय है या नहीं ये हमें नहीं पता, तो इस समय में इन्फॉर्मेशन को विश्वसनीय बनाकर सबके सामने परोसना आपके लिए कितना
0: यही देखिए ये चुनौती, ये तो आप जो रिपोर्टर हैं, जिस मीडिया हाउस से जुड़े हैं, उसकी प्रतिष्ठा

0: से जुड़ी चीज़ें होती हैं और वो कितना गंभीर है ये भी उसी से होता है। और जो सोशल मीडिया में कुछ भी खबर आप बिना 3-4 बार क्रॉस किए अगर आप चलाते हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई या हमें RTR रियल टाइम रिपोर्टिंग देना है या विजुअल हमें देना है, हम जो आंखों से देख रहे हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं जाके, हमें वही चलाना है तुरंत। हमें आपने कह दिया या कोई वीडियो भेज दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा, तब नहीं, हम जब तक हम उसको 10 बार क्रॉस चेक नहीं करेंगे और ये नहीं मानेंगे कि हाँ ये सही चीज़ है, तब तक हम जारी नहीं करेंगे।
1: अनंत जी ये बताइए, आज के जो युवा हैं जो खेल पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश यही है कि अगर आप कर रहे हैं तो बड़े गंभीर होकर करें। अगर आपके खेल में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि खेल में अच्छी पत्रकारिता करनी है, तो पहले खूब पढ़िए, आप उन चीज़ों की आप समझ रखिए, उसके बाद खेल पत्रकारिता करिए और एक विशेषज्ञ के तौर पे उस पत्रकारिता को करें।
1: मतलब जब तक आप सीरियस ना
0: हाँ हो, जब तक सीरियस नहीं करें, और भविष्य बहुत उज्जवल है। सिर्फ प्रिंट ही नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक है, वीडियो है, अपने यूट्यूब चैनल खुद के हैं, खुद की रील्स हैं। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे एक्सपर्ट हैं और आपको चीज़ों की नॉलेज है केंद्र, तो ये क्षेत्र बहुत बड़ा है।
1: क्या वर्तमान में कोई ऐसे कोर्स चल रहे हैं जो इस तरीके?
0: जी जी बिल्कुल, देखिए कोर्स कोई खेल पत्रकारिता का नहीं चल रहा है। किसी को भी एक पत्रकारिता नहीं बता सकते कि ये पत्रकारिता है, लेकिन उन क्षेत्र विशेष का भी होना। अगर पत्रकारिता चला रहे हैं तो उनसे भी ये पूछें कि आप काहे के पत्रकार बनना चाहते हैं। आप साइंस के रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर के रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स के बनना चाहते हैं या कल्चरल के बनना चाहते हैं, तो उनके अलग अलग बीट्स के हिसाब से उनके लोग होने चाहिए और उनको अलग अलग उस क्षेत्र की पत्रकारिता के बारे में बताना चाहिए। आप बताएं सब, लेकिन अगर खेल का है तो खेल के ही एक्सपर्ट उसको पढ़ाएं, साइंस के ही एक्सपर्ट उसको पढ़ाएं जो साइंस का रिपोर्टर बनना चाहता है जाके, तो एक मेरे ख्याल से एक अच्छा होगा कि विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस तरह कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने आप।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी, आपने खेल पत्रकारिता के काफ़ी सारे पहलुओं पर बात की है। हमारे श्रोताओं को निश्चित ही इस बातचीत से काफ़ी फायदा हुआ होगा। अनंत जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं अनुमति दें, अगले अंक में हम पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम खेल जगत। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान को। फिल्म का नाम है मैं, मेरी पत्नी और वो।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अलका सिंह की वार्ता, वर्तमान परिदृश्य में शिमला समझौता।
1: श्रोताओं, भारत आज विश्व के मानचित्र पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति, विज्ञान और तकनीकी में उल्लेखनीय उपलब्धियां और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट आस्था ने हमारे देश को वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट पहचान दी है। इस परिदृश्य में यह भी चर्चा करेंगे कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी आंतरिक प्रगति से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों से भी तय होती है। इसी संदर्भ में हमें स्मरण करना चाहिए शिमला समझौते का। वर्ष 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह समझौता केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि शांति और स्थिरता की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। इस समझौते का मूल भाव था कि दोनों देश अपने विवादों का समाधान आपसी वार्ता और द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से करेंगे। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि भविष्य में सभी विवादों का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से किया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार करते हुए भारत और पाकिस्तान ने यह संकल्प लिया कि वे आपसी विश्वास और सहयोग को प्राथमिकता देंगे। शिमला समझौते के अंतर्गत युद्ध के बाद बनी सीज फायर लाइन को नया नाम देकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बनाया गया। दोनों देशों ने यह वचन दिया कि इस रेखा को एक तरफा रूप से नहीं बदला जाएगा और इसका सम्मान दोनों राष्ट्रों द्वारा किया जाएगा। भारत में युद्ध में विजित की गई लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पाकिस्तान को लौटा दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत का उद्देश्य केवल शांति और स्थिरता स्थापित करना है, न कि भूमि पर स्थायी कब्जा करना। इसीलिए भारत ने युद्ध में विजित की गई 13,000 वर्ग किलोमीटर जो भूमि थी वह पाकिस्तान को लौटा दी। शिमला समझौते का एक और महत्वपूर्ण

0: उन पक्ष या यूं कहें बिंदु यह था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। यह कदम दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण था। साथ ही दोनों देशों ने यह संकल्प लिया कि वो एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और भविष्य में संघर्ष के बजाय सहयोग यानी आपसी तालमेल को बढ़ावा देंगे, आपसी सहयोग की प्राथमिकता रहेगी। इस प्रकार शिमला समझौता केवल तत्कालीन परिस्थितियों का समाधान नहीं था बल्कि भविष्य के लिए एक रणनीति, एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह समझौता हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध से अधिक स्थायी है शांति जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, संघर्ष से अधिक प्रभावशाली है, शक्तिशाली है सहयोग। आज भी भारत की विदेश नीति में द्विपक्षीय और संवाद की जो नींव दिखाई देती है उसका एक बड़ा आधार शिमला समझौता की भावना में निहित है। स्मरण रहे कि भारत की विदेश नीति आज पड़ोसी प्रथम और वैश्विक सहयोग की भावना से ओतप्रोत है। भारत ने हमेशा संवाद और आपसी सहयोग को प्राथमिकता दी है। शिमला समझौता इस नीति का ऐतिहासिक उदाहरण है। यह भी ध्यान देने योग्य है जो शिमला समझौता के प्रमुख बिंदु थे वे तत्कालीन परिस्थितियों को संभालने के साथ साथ भविष्य के लिए एक सोची समझी रणनीति, एक मार्गदर्शन देने वाला सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह समझौता हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध से अधिक शक्तिशाली है मानवीय मूल्यों पर आधारित शांति का मार्ग और संघर्ष से अधिक स्थायी है आपसी तालमेल। जब हम वर्तमान परिदृश्य की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत अपनी आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक धरोहर के बल पर विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस प्रगति को स्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण रखें, और शिमला समझौता की भावना हमें इसी बात की प्रेरणा देती है। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग की भावना से किया गया था। इसका उद्देश्य था कि दोनों देश अपने विवादों को, अपनी उलझनों को, परेशानियों को, चुनौतियों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाएंगे और सीमा पर एक स्थिरता बनाए रखेंगे। इस समझौते का सबसे बड़ा संदेश था द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण समाधान। स्पष्ट रहे कि भारत और पाकिस्तान अपने विवादों को केवल आपसी वार्ता से सुलझाएंगे, ऐसा इस समझौते की स्वीकार करने वाले पक्षों का दृष्टिकोण था और यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक आदर्श भी बना। पर यह संकेत मिलते रहे कि पड़ोसी राष्ट्र अपने स्वयं के मुद्दे सुलझाने के लिए तीसरे मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। शिमला समझौते ने हमें यह भी दिखाया है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव है, और इस परिदृश्य में शिमला समझौता और भी प्रासंगिक हो जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अलका सिंह की वार्ता वर्तमान परिदृश्य में शिमला समझौता, और इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों

0: बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ चुनिंदा गजलें। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कतील शिफई का ये खूबसूरत सा कलाम, आवाज़ है जगजीत सिंह की।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ चुनिंदा गजलें। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं पंडित विनोद शर्मा का ये खूबसूरत सा कलाम। आवाज़ है जगजीत सिंह की।

0: इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई कुछ चुनिंदा गजलें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए

0: लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है दुल्हन एक रात की।

कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है अनपढ़।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में

0: ने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक

0: माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी।

0: सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तनवी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announced energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री

0: while Switzerland will take on Algeria in Vancouver tomorrow morning. Earlier, Belgium advanced to the round of 16, beating Senegal 3-2 this morning. Co-hosts US also progressed to the round of 16, beating Bosnia and Herzegovina 2-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हममंसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निज़ाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज़, मस्नूई ज़हानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाए तकाइची ने अपने खिताब में कहा कि तआवुन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज़ पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आज़ाद और शफाफ तवानाई की तजारत करने, तवानाई के जामे ज़खीरे का ऐलान करने और तआवुन को फ़रोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाइची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज, अदविया और मस्नूई जहानत के शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हम मनसब

0: सनाए तकाइशी के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस बाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आजाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज़ और इक्तिसादी तहफ्फुज़ समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अख्तदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हममनसब सनाए तकाइची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरतहाल के माबेन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनद के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उनसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सार्फिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के माल

0: राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा, जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2-3 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मैट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अलाक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है आपके पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपके पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त इकबाल का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की सबसे पहली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है ग्राम पहाड़ीपुर जनपद रायबरेली से, और फरमाइश भेजने वाले हैं रामराज, राजू, भानू, नानू और रामशंकर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दांव पेंच से ये गीत।

कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें भेजी है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार ने, जनपद खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। आप सभी ने फरमाइश की है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म चांद का टुकड़ा से ये गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से, और ये फरमाइश भेजी है अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रणिता, सिद्धांत, प्रिंस और एकांश की ओर से, और ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम से ये गीत।

कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, और ये फरमाइश भेजी है बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष पंवार ने। और आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म घराना से ये गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश ग्राम नथाना पंजाब से हरजंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता गीता और जिगराज ने भेजी है और आप सभी ने फरमाइश की है फिल्म चुपके चुपके से इस गीत की।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें भेजी है शेख जियाउर रहमान ने अबू धाबी यूएई से, और आपने फरमाइश की है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फ़िल्म राजपूत से इस गाने की।

इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजार से ये खूबसूरत सा नगमा, जिसकी धुन बनाई है खयाम ने, बोल हैं बशर नवाज के और आवाज़ है भूपेंद्र सिंह की।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मौसम से। गुलजार के लिखे इस गीत को आवाज़ दी है भूपेंद्र सिंह ने और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है आंधी।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की युगल आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है किनारा।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं गुलजार की लिखी लिखा ये गीत। धुन बनाई है खयाम ने, आवाज़ दी है भूपेंद्र सिंह ने, और फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आईसीसी विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: शबनम, ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
1: लेकिन बहुत हसीन है अम्मी,
0: इसकी मंजिल तुम्हारी मौत हो सकती है।
1: खुदा करे ऐसी मौत जिससे जिंदगी मिले सर आंखों पर।
0: मगर तुम्हें इस रास्ते पर जाने कौन देगा?
1: मुझे इस रास्ते पर जाने से रोकेगा कौन?
0: मैं रोकूंगी, मैं, अमीना बाई।
1: अमीना बाई, तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं रोक सकता।
2: अमीन बेहुदा नालायक बदमाश, इस दिन के लिए मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान।
1: डालो,

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 2:45 होने वाले हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। अगली सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

इस समय रात्रि के 2:45 होने वाले हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। अगली सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।